है तुमसे ही काम अरे हो तुमसे ही जुल्फों की शाम अरे तुम

गले लिए तेरा प्यार को, अरे है कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार को, बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान, अब न कहना के जाती हूँ मैं गली गली लिए तेरा प्यार को, अरे है कहाँ कहाँ।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या कर

0: रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है. सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन. इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन. आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे. आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा. एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को

0: कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं जो MP 36 से आपका स्वागत करती हूँ।

0: आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं मौन के ऊपर। 100 सवालों का एक जवाब होता है, वो होता है मौन। ऐसे हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों पर आप अपने शब्दों की शक्ति का जो है उसको आप व्यर्थ ही खर्च करते हैं, जो वास्तव में आपकी शक्ति के लिए पाते हैं। कभी कभी आपके सबसे शक्तिशाली शब्द आपका मौन ही है, अर्थात मौन कभी कभी वाचालता की प्रतिध्वनि बन जाती है। 100 सवालों का एक जवाब मौन होता है, परंतु 1000 सवालों से घिरे व्यक्ति का एक जवाब मौत है, जो सभी सवालों से मुक्त ही नहीं कर देती, बल्कि सवाल कर रही दुनिया को मौन कर देती है। जिसके मन में नित्य सवाल ही सवाल उमड़ते उमड़ते हैं, वह अति दुर्बल मन का होगा। मन की दुर्बलता शरीर की दुर्बलता का कारण बनती है और शरीर की दुर्बलता अकाली मौत का कारण बनती है। जो व्यक्ति सवालों में घिरा रहता है, वह जरूर अकर्मण्य है, क्योंकि कर्मण्यता प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करती है। कर्मण्यता दिखाती है कि वह संतुष्ट है, संपन्न है और बेफिक्र है। जैसे कि देखते हैं कि प्रश्न के उत्तर जो होते हैं वो भी कि उसकी भी कीमत 2 वर्षों का मन है। संत तिरुपा के बारे में कहा जाता है कि उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यह सुनकर मालूम पुत्र नाम का एक दार्शनिक उसके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आया। तिरुपा ने उसके सारे प्रश्न सुने और कहा कि सारे प्रश्नों के उत्तर देने को मैं तैयार हूँ, परंतु इसकी कीमत पहले अदा करनी होगी। मालूम ने सोचा कि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई दे नहीं पाया और यह व्यक्ति कीमत लेकर यदि उत्तर दे सकता है तो कीमत अदा करने में कोई नुकसान नहीं है, अतः उसने कीमत देना स्वीकार किया। संत ने कहा कि कीमत है 2 वर्ष का समय जो तुम्हें मेरे साथ रहकर बिताना होगा और इस दौरान तुम चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, चाहे कैसी भी कष्टदायक परिस्थिति क्यों न हो। मौलिक ने यह बात भी स्वीकार कर ली। वह 2 साल तक संत के पास रुका रहा। इन 2 सालों में उसके चरित्र में, संस्कार में और उसकी सोच में काफी परिवर्तन आया। उसे अब सुख मिलने लगा और वह यह भूल ही गया कि कितना समय गुजर गया और उसके क्या प्रश्न थे। परंतु एक दिन संत ने उससे कहा कि आज 2 साल पूरे हो गए, तुम अपने प्रश्न पूछो। मालूम ने कहा कि मुझे सारे उत्तर अनुभव हो गए, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा मालूम ने क्या किया। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया,

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं जोशी फिर से आपको स्वागत करती हूँ और हम चर्चा अपनी जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सत्यता जो होती है, सत्यता शोर नहीं मचाती, सत्य के अन्वेषकों के लिए मौन सर्वाधिक मददगार है। मौन से उन अति सूक्ष्म आवाजों व तरंगों का वो सुना जा सकता है, वो उसको पकड़ा जा सकता है जो निरंतर आत्मा को गहन गहराई से उच्चारित या संप्रेषित हो रही है। अंदर आत्मा की आवाज मौन में अस्पष्ट सुनाई देती है। आत्मा का स्वरूप शांति व शक्ति का है और शांति में टिक कर ही सत्यता की शक्ति का अनुभव व प्रयोग किया जा सकता है। सत्य की खोज में लगा पुरुषार्थी पहले स्वयं के स्वरूप का ही अनुभव कर ले, अन्यथा कस्तूरी मृग की तरह वो भटकता ही रहेगा। सत्यता व मौन में करीबी रिश्ता है, क्योंकि सत्यता शोर नहीं मचाती, लेकिन जब इसे बोलना पड़े तो यह सर चढ़कर बोलती है। सत्यता अद्वैत है, निर्विकल्प है। हाँ, संशय जो है इनके बीच संशय और भेदभाव रहित भी है। सत्यता का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु, अर्थात माया अविद्या या हरेक का आवरण हटते ही मन बुद्धि सत्यता से जो है अलौकिक तो हो सकते है, परंतु ऐसे अलौकिक मन बुद्धि पुनः अज्ञानता के अंधकार में नहीं डूब सकते। किसी की दैहिक मृत्यु होने पर परिजन राम नाम सत्य है का उद्घोष करते हैं, अर्थात यह स्वीकार करते हैं कि एक ईश्वर का जो नाम है राम का नाम, वही सत्य और वह स्मरण की ही आत्मा की गति सदगति कर सकती है। यह गति अर्थात मुक्ति यानी कि मोक्ष

एवं सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति ही आत्मा का असली मुकाम है और इस सत्य को जीवन जीते हुए यदि मनुष्य जो है मनुष्य आत्मा समझ ले तो उसके कर्म विकर्म ना बने, वह सदकर्मों की खेती करता हुआ पुण्यों की पूंजी जो है वो साथ ले जाए। क्या पर हम देखते हैं कि सत्यवादी जो होता है अस्पष्टवादी होता है। यदि कभी मौन व्रत धारण किया हो तो अंदर से कभी यह नहीं बोलते रहना चाहिए कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। मौन एक सहज स्थिति हो न कि आयोजित हट। मौन का भाव अंदर से बना रहे, अन्यथा बलपूर्वक रखे गए मौन से आत्मा की सहज स्वरूप एवं हट स्वरूप में झगड़ा होता रहता है। यदि मन को सत्य में निवास कराया जाए तो मौन रखना नहीं पड़ता बल्कि मौन स्वतः आ जाता है, क्योंकि मन को विकल्पों की खुराक मिलनी बंद हो जाती है। सत्य में निवास करने से विकल्प नहीं उठते, सत्य में निवास करने से हम फिजूल के कितने ही रिश्ते संबंध वह संबंधों का जो ताना सिमटने लगता है और जो बस अच्छे मित्र संबंधी ही संबंध बनाए रखते हैं। सत्यवादी अस्पष्टवादी होता है और वह वाद विवादों में कभी नहीं उलझता। क्या अगर हम देखते हैं कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंहखाला, ये कहावत है एक चुप और सौ सुख। अर्थात चुप रहने वाला बहुत से विवाद फसाद आदि से बचा रहता है और सुख का अनुभव करता रहता है। यह भी कहावत है कि एक चुप सौ को हरावे। अर्थात यदि एक सच्चे इंसान के पीछे सौ झूठे पड़ जाए, सच्चे को झूठा साबित करने के लिए दलीलें दे हो और जो होता है हो हल्ला मचाए, तो सच्चे का मौन उन सबको शांत करने के लिए काफी है। यदि सच्चा व्यक्ति अपनी सफाई तर्क व समझाने प्रस्तुत करे तो झूठे उस पर भारी पड़ते हैं। सच्चे का साथ समय देता है, परंतु सत्य का सही समय आने पर ही प्रत्यक्ष होती है और तब तक सच्चे को गलत बातों को सहन करना पड़ता है। कहावत है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। महान जो मनुष्यों के बोल उनके गुजर जाने के बाद भी दोहराए जाते हैं, उनका स्मरण किया जाता है, परंतु झूठे मनुष्य के बोल तो विसार दिए जाते हैं कि झूठे वक्ता के धुआंधार भाषण पर एक बार तालियां तो बच जाती है, परंतु श्रोताओं के द्वारा उन बातों को याद नहीं रखा जाता, अतः उनका लाभ भी नहीं लिया जाता। इसके विपरीत मंच से श्रोताओं को मौन दृष्टि देते हुए उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना व प्रेम के प्रकंपन देना उन्हें विस्मरणीय शांति की अनुभूति कराता है। ऐसे वक्ता की सुनी चुने शब्द ही श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इसकी।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। हम मौन के ऊपर हम बातें कर रहे थे, देखते हैं हम कि गर्भ में पिछले जन्म का मौन अभ्यास का काम आता है। मृत्यु एक सत्य है, आत्मा का मृदा या मिट्टी से बनी देह को त्यागना ही मृत्यु है। मृत्यु आत्मा का नौ जीवन में जाना है, परंतु अज्ञानी इससे भयभीत होते हैं। मृत्यु के उपरांत आत्मा मौन यात्रा पर निकलती है। यदि जीवित रहते उसने समय समय पर मौन धारण कर आत्मा और लोकन किया होता है तो मृत्यु उपरांत गर्भधारण तक की उसकी यात्रा मौन व शांति से पूरी होती है, अन्यथा आत्मा को घोर यातना का अनुभव होता है। आत्मा जब गर्भ में लगभग 3 माह के भ्रूण में प्रवेश करती है तो उसे 6 माह मौन में पूरे करने होते हैं और पिछले जन्म का मौन अभ्यास उसके काम आता है। इस दौरान उसके मन में पिछले जन्म की बातें घूमती रहती है। गर्भस्थ शिशु और उसकी माता 6 माह शरीर से जुड़ी रहकर मौन वार्ता करती रहती है। दोनों को एक दूसरे की हलचल, संकल्पों व भावनाओं का आभास होता रहता है। नवजात शिशु अपनी बात रोककर, मुस्कुराकर या मौन में रहकर अभिव्यक्त करता है, परंतु माता को सब समझ में आ जाता है। पालने में लेटा शिशु जब रोता है तो माँ काम छोड़कर आती है और कोई गीत या लोरी गुनगुनाकर उसे दुलारती है। शिशु को लोरी का अर्थ नहीं पता होता, उसे तो माँ के वात्सल्य भावना चुप कराती है। रात्रि विश्राम करती माता की मौन उपस्थिति शिशु को वैसे ही बेफिक्र बनाती है जैसे कि शिव की याद एक पुरुषार्थी को बेफिक्र बादशाह बनाती है। एक तरफ हम देखते हैं यहाँ पर कि संगीत में शोर को मौन में और मौन को शांति में बदल देने की शक्ति है। मारीलीना दिया ब्रिज अंग्रेजी में फ्रांसीसी फिल्मों की प्रख्यात पार्श्व गायिका थी। वह एक बार वह अपना जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने में पेरिस गई तो पेरिस में उसने देखा एक बड़े हॉल में मंच पर उसका स्वागत किया गया और संक्षिप्त भूमिका के बाद मारीलीना ने गाना शुरू किया। तभी हॉल की में सामने की लाइन में बैठी एक महिला की गोद की बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। श्रोताओं व आयोजकों की बड़ी झुंझलाहट हुई और स्वयं मारीलीना ने भी गाना रोक दिया। बच्चे की माँ ने उसे चुप कराने का असफल प्रयास किया और फिर शर्मिंदगी के साथ उठकर हॉल के बाहर जाने लगी। तभी माइक पर मारीलीना की मधुर आवाज गूंजी, बहन बाहर मत जाइए, बच्चे को रोने दीजिए। वह महिला वापस आकर बैठ गई। बच्चे के शोर में मारीलीना ने एक भावपूर्ण मीठी लोरी गाई जिसे सुनकर बच्चा चुप हो गया और जल्दी ही सो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि गहन मौन छाते ही मारीलीना ने फिर गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो संगीत में वह शक्ति है जो शोर को मौन में और मौन को शांति में बदल दे।
यदि आपके मन में किसी घटना से उथल पुथल मची हो तो आप एकांत में संगीत सुनिए, मन मौन होकर शांति में टिक जाएगा। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर जो ज्ञानमय गीत बजाए जाते हैं वह मन को मौन में और फिर शांति में लाकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराते हैं। इससे फिर सुख व शांति की सागर शिव की याद में इतना आसान हो जाता है। यदि एक बार मन को मौन की देव पड़ गई तो जीवन में अलौकिकता व सहजता छा जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से आपसे आकर मिलते हैं, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो आज हम मौन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे परम धाम जो है आत्माओं व परमात्मा का मूल निवास स्थान है, जहाँ अखंड मौन का वातावरण होता है। वहाँ आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा शिव का साथ मिलता है, जिससे आत्माओं की जन्म पुनर्जन्म से आई थकान दूर होती है। जिस प्रकार एक सर्जन शरीर को अचेत करके ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार परम धाम में शिव का सानिध्य ही उपचार है। परंतु इससे वो सतयोगी प्रालब्ध नहीं बनती जो संगम युग पर साकार में ईश्वरीय सानिध्य से बनती है। साकार में जब पुरुषार्थी आत्मिक स्थिति में मौन धारण कर शिव से योग युक्त होता है, तो वह निरोगी व पावन होता है। महाविनाश के बाद प्रकृति व बचे हुए जीव जंतु मौन व शांत हो जाते हैं, क्योंकि मौन उपचारात्मक होता है। गंभीर बीमारी के बाद मरीज जितना मौन व शांति में रहता है, उतना ही शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे पाता है। यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि क्षमा प्रीति से हृदय में मौन व शांति का वास होता है। मौन और शांति में काफी समानता है, परंतु दोनों में अलग अलग। मौन में रहते हुए व्यक्ति अंदर से अशांत हो सकता है, और अशांत वातावरण में रहते हुए

भी व्यक्ति शांति के अनुभव में रह सकता है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति है मौन। मौन में रहते हुए शांति का अनुभव करना, इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अशांत वातावरण में रहते हुए भी मौन व शांति दोनों अखंडित रख सकता है। आज मनुष्यों को छोटी छोटी बातों पर चिकना चिल्लाना और अशांति फैलाना घर घर में देखने में आ रहा है। जो बच्चे ऐसे माहौल में पले बड़े हुए हों और ऐसे उपद्रवी संस्कार से ग्रसित हों, वह अपने जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं? हाँ, ऐसे बच्चे या बालिक जब ब्रह्मा कुमारियों के संपर्क में आते हैं तो उनके लिए अशांति की जो जन्मजात संस्कार को छोड़ना आसान हो जाता है। यदि शांति चाहिए तो मतभेद, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, नाराजगी आदि के संकल्पों से मौन अर्थात दूर रहना होना पड़ेगा और क्षमा प्रीति को विकसित करना होगा। जिस हृदय से क्षमा प्रीति का वास है, हाँ, जिस हृदय में जो होता है क्षमा प्रीति का वास है, उसमें मौन व शांति का वास सहजता से होगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। हाँ, नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए

0: जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अफवाह और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में हमने ये जाना कि हम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, रिलेशनशिप्स को एक नए नजरिए से देखा और फिर कई रोल्स जो हम हर रोज अदा करते हैं उनको कैसे हम हर बार चेंज कर सकते हैं वो हमारे अपने हाथ में है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में और बात करते हैं रिसोर्सेज की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। हमने तीन पड़ाव तो तय कर लिए इस पूरी श्रृंखला में और एक नई नजर से जो है हम पूरे न सिर्फ स्व को बल्कि अब जब अपने आप को मैनेज करते हुए हमने अपने रिलेशनशिप्स में और बाहर देखा तो काफी सारे बदलाव दिखते हैं। आपने बात की थी कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है रिसोर्सेस यानी संसाधन, पर वो रिसोर्सेस क्या है?
1: बिकॉज ईच वन ऑफ अस, हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। जो हम कई बार अपने आप को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और हम कहते हैं इनके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, व्हाटएवर, एक्चुअली हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। अंतर किस में आ रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करते हैं, एंड दैट विल ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट इन माय लाइफ। कि मेरे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, लेकिन आपका उसको यूज करने का तरीका और मेरा उसको यूज करने का तरीका वो डिफरेंट हो जाएगा। अब हर एक के पास जो रिसोर्सेज हैं सेल्फ के, वो तीन लेवल पर होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। थ्री रिसोर्सेज जो हम सबके पास हैं। सो लेट्स से फिजिकल रिसोर्सेज। आज फिजिकल वेलबींग की जितनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, मतलब शायद पहले इतनी नहीं, तो देन डजंट दैट मीन आई एम नॉट यूजिंग द फिजिकल एनर्जी इन द राइट वे। आज ये शरीर मेरे थिंकिंग पैटर्न की वजह से अगर इसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां, कभी जॉइंट पेन है, किसी को डायबिटीज है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज माय फिजिकल रिसोर्स बट देन आई एम नॉट एबल टू यूज इट इन द राइट वे बिकॉज इट इज इल। सो फिर अगर कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है, व्हीकल ठीक नहीं है, तो जीवन की यात्रा में कुछ कुछ तो रुकावट आएगी। सो माय थिंकिंग पैटर्न इज क्रिएटिंग द इलनेस एंड माय चेंज ऑफ थिंकिंग पैटर्न विल हेल्प इन द क्योर ऑफ द इलनेस। वो बहुत बड़ी मदद करता है।
0: वेरी ट्रू।
1: हमारे यहाँ आई वुड लाइक टू शेयर, एट द ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स में एक प्रोजेक्ट चल रहा है इन कोऑर्डिनेशन विद DRDO एंड द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। के जो हार्ट की आर्टरी डिजीज की जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है उसको मेडिटेशन, मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो आप लेते रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन और राइट लाइफस्टाइल से किस तरह से हम वो आर्टरी की ब्लॉकेजेस को ओपन कर सकते हैं। सो एंड द एक्सपेरिमेंट शोज वंडरफुल रिजल्ट्स। इट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड ओवर द बॉडी। कि राइट थिंकिंग से हम जो बीमारी जिसको हमने समझ लिया था कि ये बीमारी तो चलनी ही है, वो बीमारी पर हम ओवर पावर कर लेते हैं एंड फिर हमारा ये फिजिकल रिसोर्स, मतलब ऐसे भाई बहने वहां आ रहे हैं जो पहले चार कदम भी ठीक से नहीं चल पाते थे, दे वुड गेट ब्रेथलेस, वो दो फ्लोर तीन फ्लोर सीढ़ियां आज चल के जाते हैं। तो फिजिकल रिसोर्स है ना,
0: तो फिजिकल रिसोर्स का हमने सही इस्तेमाल फिर किया, उसका एटलीस्ट उसको हमने सेव तो किया, और व्हाई नॉट, वी वांट टू सेव,
1: ऑफकोर्स, एंड दैट्स व्हाई वी सेड फिजिकल कॉस्ट्यूम सबको मिला है, रिसोर्स सबको मिला है, लेकिन कौन उसको किस तरह से यूज करता है वो फिर हर एक के अपने अपने तरीके।
0: एक बार अगर हमने अपने आप को फिजिकल रिसोर्स को हमने सेव कर लिया, अब उसका सही इस्तेमाल जो है वो कुछ और अलग होगा, मतलब हाउ डू आई यूज या इसका मैनेजमेंट कैसे हो
1: ऑफ द बॉडी। बॉडी का तो ध्यान हम रख ही रहे हैं, सही बात।

0: on objects. Kyunki hum ek ek vibration jo dete hain, wo hamara environment create karte hai. Mandir mein jao, environment different hai. You know, any holy place aap jao, environment different hai. Theater mein jao, restaurant mein jao, shopping mall mein jao, environment different hai. Log more or less wahi hai.
1: And we started talking, there's a different kind of energy.
0: Energy.
1: There's a different kind of chemistry we feel.
0: Yeah, so who's creating that energy? Because more or less log to wahi hai na. Ek suppose simple example hai, aap koi ek housing complex dekh lo. Usi housing complex mein ek clubhouse bhi hai aur usi housing complex mein ek mandir bhi hai. To wahi society ke log jaate honge na, dono jagah par.
1: We go with a different thought process. Oh yes, with different thoughts.
0: So, jis thoughts ke saath hum us sthan mein jaate hain, to wo jo holy place hai, wahan ka jo sthan hai jahan hum jaate hain, wo sthan ki vibration kaisi hoti hai. To wo vibration kisne create ki? Maine create ki. Iska matlab I have the power to create it. Now, I can use that power to create it
1: anywhere. Yes.
0: Isliye kehte hain ghar ko mandir bana lo.
1: Because I create it.
0: देखो ना, आप देखो आपकी सोसाइटी बनी जहाँ आप रह रहे हो, जैसे जैसे आपके अपार्टमेंट्स बने वैसे ही एक वहाँ यू नो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है वो भी बना, लेकिन वो वाइब्रेशन कैसे क्रिएट हुआ?
1: सुकून हाँ.
0: जब एक एक उस स्थान पर गया विद वेरी प्योर थॉट्स, यू नो विद वेरी क्लीन फोकस्ड थॉट्स, तो उस स्थान का वाइब्रेशन बना. कंस्ट्रक्ट तो वो भी ऐसे ही हुआ था ना, जैसे पूरी बिल्डिंग हो रही थी, जैसे इस सोसाइटी का एक एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, लेकिन वो एक एक फ्लैट की वाइब्रेशन देखो जाके अब एंड उस मंदिर की वाइब्रेशन देखो.
1: ऑफ कोर्स फ्लैट की वाइब्रेशन से झगड़ा
0: अलग अलग होगा ना. अगेन सी, एवरी फ्लैट विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन. आप लोगों के घर में जाओ, एवरी हाउस विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन बेस्ड ऑन पीपल स्टेइंग इन दैट हाउस. तो व्हेन आई अंडरस्टैंड कि ये मेरी क्रिएशन है, ये एनवायरमेंट मैंने क्रिएट किया है, नाउ आई कैन क्रिएट दैट एनवायरमेंट एवरीवेयर.
1: And I can create a good environment.
0: Yeah.
1: I don't have to depend on things, you know. मुझे वो धूप नहीं जलाना, मुझे वो कुछ नहीं करना, मुझे अरोमा नहीं करने की जरूरत. I can do it.
0: Because, see, वो सारे अगेन वो चीजें जो हम सारे कर रहे हैं, those are external aids which I use to be able to create good thoughts, which is okay. I mean, but as long as just remember that you are the creator. आप create कर रहे हैं thoughts, आपके अंदर power है, कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप जो थॉट क्रिएट करना चाहो. लेकिन अगर हम उस
1: कई जगह पे हम बहुत ऑप्रेसिव फील करते हैं, ऐसा लगता है कि घुटन हो रही है, दिमाग जो है ना वो उसमें, तो वो अगेन यू नो एंड यस हमारे थॉट्स वो क्रिएट होने लगते हैं फिर.
0: बिकॉज वातावरण का, आप मंदिर में जाएंगे तो अपने थॉट्स देखो, इट वर्क्स एज अ साइकिल. पहले हम उस स्थान के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और स्थान भी, स्थान के वाइब्रेशन हम पे भी इन्फ्लुएंस करता है. सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो हमने मंदिर का वाइब्रेशन बनाया और फिर मंदिर के वाइब्रेशन में जब हम जाते हैं तो हमें शांति अनुभव होती है. सेम थिंग एट होम. हम ही पहले अपसेट रहकर, नाराज होकर, यू नो ये सब आपस में झगड़ा करके हम घर का वातावरण बनाते हैं टेंशन का. फिर हम ही जब शाम को ऑफिस से घर आते हैं तो कहते हैं घर आते ही वातावरण कैसा है. लेकिन ये हमने ही क्रिएट किया है. और अगर हम उसको साथ कंफर्टेबल नहीं है और हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कौन करेगा? हम ही कर सकते.
1: कभी भी कर सकते.
0: कभी भी कर सकते हैं. यस, एक्सटर्नल एड्स, आज बहुत सारे एक्सटर्नल एड्स प्रमोट किए जा रहे हैं कि आप ये करो तो आपके घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, विच इज ऑल ओके. But who is the master finally?
1: ये अब ये सारे एड से हम ही, हमारे thought process ही change होगा basically.
0: Absolutely. Thinking faculty जो मेरी है, जब मुझे realize हो जाएगा मैं master हूँ एंड आई क्रिएट दिस, इट्स अ न्यू.
1: एक्चुअली मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, ये थॉट आते ही कि आई एम क्रिएटिंग इट, आई कैन क्रिएट इट, एक्चुअली आई कैन फिनिश दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड आई क्रिएट अ न्यू पैटर्न.
0: सो नाउ, लेकिन सारा दिन में अपने घर में, अपने ऑफिस में, ऑफिस का आपका एनवायरमेंट कैसा है? कई ऑफिस में जाओ इट्स अ वेरी लाइट एनवायरमेंट, कई ऑफिस में जाओ इट्स अ वेरी हैवी एनवायरमेंट. व्हाई? एनर्जी फ्लो ऑफ द पीपल. सो जबकि हमें ही उस घर में रहना है, हमें ही उस ऑफिस में काम करना है, तो वो एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. तो इज इन दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वहां क्या एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं. लेकिन हम कितना इजिली बैठे बैठे जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, फिर एनवायरमेंट कैसे बिल्डअप होगा? That becomes a very fundamental responsibility. Aajkal bahut research ho rahi hai ke effect of mind on food. Kyunki jabki man ki sthiti, man ke

0: वाइब्रेशंस का इफेक्ट हर चीज पर हो रहा है, एनवायरमेंट पर हो रहा है, भोजन पर हो रहा है, पानी पर हो रहा है। हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि जापान के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इमोटो, उन्होंने रिसर्च ये की है इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन वाटर ना, और ऑफ कोर्स वो ऑन गोइंग रिसर्च बहुत अभी भी चल रही है। क्या पानी के सैंपल्स उन्होंने लिए एंड अलग अलग सैंपल्स को विद पावर ऑफ माइंड अपने अलग अलग वाइब्रेशंस दिए हैं, एंड फिर वो जैसे किसी को दिया आई लव यू, आई थैंक यू, किसी को आई हेट यू, तो फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी, किसी के लिए पॉजिटिविटी, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड, किसी के लिए लव, एंड फिर वो पानी के सैंपल्स को जब देखा गया तो द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल वो अलग प्रकार का था। तो जिस पानी के सैंपल्स को पॉजिटिव एनर्जी मिली है, बहुत पावरफुल, वो स्ट्रक्चर बहुत फाइन डिफाइंड है, बहुत शार्प और डिफाइंड है, और लेकिन जिनको दूसरे प्रकार की एनर्जी मिली है वो स्ट्रक्चर ही ठीक से नहीं बना है, क्रिस्टल ही शेप नहीं हुआ,
1: क्रिएट ही नहीं हो पाता,
0: वो क्रिस्टल कोलैप्स हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनता।
1: बिकॉज हेट्रेड कैन बी सो डैमेजिंग। ओह यस,
0: नाउ वंस आई अंडरस्टैंड,
1: ओह माय गॉड, हाउ मच एट टाइम्स यू नो, जब हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है या हमें नफरत हो रही होती है, हम हमारे जो वो वाइब्रेशन है वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो डैमेज कर सकते हैं।
0: अब इसका सेकेंड पार्ट जो हमें समझ में आएगा, बॉडी इज मेड सो मच ऑफ वाटर,
1: और वो मुझसे होके तो जा रही है तो मुझे कितना डैमेज कर रही है।
0: तो ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन आती है। वी कुड एक्चुअली आस्क द होल फैमिली जो हमारे साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर जाकर ये वेबसाइट देख सकते हैं डॉक्टर इमोटो की, क्योंकि उसमें फोटोग्राफ्स दी हुई हैं क्रिस्टल्स की, बहुत सारी फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, उनकी बुक्स भी हैं वाटर, हीलिंग विद वाटर के, तो उसपे ये क्रिस्टल्स की फोटोग्राफ्स दी हैं। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखने से हमें पावर ऑफ माइंड ऑन वाटर जो उन्होंने यू नो प्रूव किया है, वी नीड टू सी दैट, बिकॉज वाटर इज समथिंग व्हिच इज एवरीवेयर,
1: सो मच
0: इन द बॉडी। तो अगर हमें वो यू नो समझ में आता है कि वो क्रिस्टल्स ठीक से फॉर्म नहीं होते हैं तो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, कितने थॉट्स चल रहे हैं सारा दिन, हेट्रेड के, नफरत के, हर्ट के, पेन के, तो उसका शरीर पे असर ऑटोमेटिकली पड़ता
1: है। पता है हमें बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कई बार कि हम कितनी बार सदस्य वाणी कहते हैं उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ वो कहीं ना कहीं मुझसे
0: वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे सोचने से उसको कुछ नहीं होने वाला है।
1: और सबसे बड़ी बात,
0: सबसे पहले मुझे होने वाला, सी बिकॉज द अदर पर्सन वो उनकी पावर पर डिपेंड करता है कि वो आपकी वाइब्रेशन को कितना इन्फ्लुएंस करने, लेट्स से कि आप मुझे बार बार नेगेटिव भेज रहे हैं, बट समवेयर मेरे पास भी तो एक पावर है कि हाउ मच आई एम गोइंग टू लेट यू ओवर पावर मी। लेकिन जब आप भेज रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले मिल रहा है, और इसलिए जब हम कहते हैं जब हम नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं या पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे को मिले या नहीं मिले पता नहीं, लेकिन मुझे definitely milta hai. So this is something which we have to experiment with, ke, and that's why at the Brahma Kumaris ek bahut important cheez hai jis par hum bahut emphasis dalte hain, and that is जब आप भोजन बना रहे हैं तो आपके मन की स्थिति क्या है। हमने बहुत बचपन से ये सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न, वो भी तो फिर ट्रू हुआ ना। अन्न अगर सात्विक है तो मन सात्विक होगा, ये कहा जाता था, लेकिन मन सात्विक होगा तब तो सात्विक अन्न बनेगा।
1: क्योंकि अन्न सात्विक कैसे बन जाएगा, अन्न अपने आप थोड़ा सात्विक हो जाएगा।
0: अभी तक हमें कहा जाता था कि सात्विक अन्न मतलब वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन फूड तो है, लेकिन वेजिटेरियन फूड को किस स्थिति में बनाया गया। अगर आप अपसेट हैं, गुस्से में हैं, और उससे आप वो वेजिटेरियन फूड तो बना रहे हैं, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन एनर्जी कुक करने के टाइम कौन सी जा रही है। तो अगर वो भोजन जो मेरे सामने आए अगर उसके अंदर वाइब्रेशंस गुस्से की, चिंता की है, कैन आई कॉल दैट सात्विक फूड इज अ क्वेश्चन आई हैव टू थिंक अगेन। फूड इज मेड सो मच ऑफ वाटर,
1: सो मच ऑफ,
0: हर सब्जी हर फल इसका बेसिक इंग्रेडिएंट तो पानी है कितना सारा, और वो क्रिस्टल हमने देखा कि कैसे फॉर्म होता है, तो फूड की क्या स्टेट होगी, हम किस स्थिति में बना रहे हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें, भोजन बनाते समय बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग भोजन बनाते हैं, कि आपको अगर किसी बात की चिंता है, टेंशन है, सिट विद योर सेल्फ 2 मिनट्स, सॉर्ट इट आउट विद योर सेल्फ, गो बैक टू योर कुकिंग। ऐसे ही यू नो, ऐसे ही
1: गुस्से में,
0: दर्द में भोजन नहीं।

0: बनाना, क्योंकि आप सिर्फ भोजन नहीं परोसेंगे, फिर साथ साथ वाइब्रेशन भी ट्रांसमिट होगी. सो इट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल. आजकल स्पोर्ट्स में भी पावर ऑफ द माइंड को बहुत यूज किया जा रहा है, कि अगर माइंड उसको क्रिएट कर ले, उस पिक्चर को विजुअलाइज कर ले आप, यू नो, एंड इफ यू हैव इट हियर ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड, दैट वाज व्हाट योर रिजल्ट विल बी. जो हम पहले से कह रहे थे कि थॉट विल लीड टू डेस्टिनी, तो स्पोर्ट्स में या हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं. हमें अपना गोल अचीव करना है, क्रिएट अ थॉट, विजुअलाइज इट हियर, एंड डू नॉट लेट अ सिंगल थॉट ऑफ डाउट कम बीच में.
1: डाउट एंड फियर,
0: वो इनसिक्योरिटी,
1: यू नो, कि व्हाट इफ इट विल नॉट हैपन, व्हाट इफ इट विल नॉट हैपन.
0: तो हमारा माइंड जो एनर्जी क्रिएट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, वो होने वाला है. वी नीड टू नो दैट. तो हमें कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी चाहिए?
1: इट्स लाइक इट्स गोइंग टू हैपन.
0: अगर हम ही थॉट ये क्रिएट करेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, तो फिर. अब कई बार भाई बहने कहते हैं, मैंने पॉजिटिव सोचा लेकिन वो नहीं हुआ. देन आई नीड टू बी वेरी क्लियर, क्या सच में मैंने 100% सिर्फ पॉजिटिव सोचा? कहीं भी उसमें फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये भी तो थॉट्स है. सी, इट्स नॉट दैट ये थॉट वर्क करेगी और ये थॉट वर्क नहीं करेगी. हर थॉट वर्क करेगी. तो पहले मैंने थॉट क्रिएट किया कि आई वॉन्ट टू गेट दिस डन. नेक्स्ट थॉट क्रिएट किया, नॉट टू श्योर, तो वो वाला थॉट भी तो वर्क करेगा. एंड देन समवेयर वो रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा मुझे चाहिए. तो ये रिसोर्स है, इसको हम राइट डायरेक्शन में अगर चैनलाइज करें. अब सारा दिन में जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसमें जो मेजोरिटी वेस्ट थॉट्स है, वो है पास्ट और फ्यूचर को लेकर. पास्ट भी एक, यू नो, इट जस्ट होल्ड्स मी बैक. साइकाइट्रिस्ट जो है, मनोवैज्ञानिक, वो बताते ऑन एन एवरेज 80% ऑफ द टाइम वी आर इन द पास्ट, 80%, एंड 15% समय वी आर इन द फ्यूचर, वेरी लिटल. उसमें कहीं नेगेटिव भी होती है, तो इसलिए पॉजिटिव की परसेंटेज. तो पास्ट और फ्यूचर को हमें कहीं ना कहीं हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है. क्योंकि बोथ ऑफ देम, पास्ट एंड फ्यूचर, आर नॉट इन माई कंट्रोल, एंड मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ दोनों के बारे में सोचने के लिए. तो समवेयर पास्ट की जो भी बातें हैं, आई विल हैव टू लेट गो. ये लेट गो हमने बहुत बार बोला है, बहुत सारे भाई बहने कहते हैं, हाँ समझ में आ गया लेट गो, लेकिन कैसे करना है लेट गो, कैसे करना होता है?
1: एक्चुअली मैं बताऊं कि जब कोई सिचुएशन आ जाती है ना, चैलेंज आता है, हमने लेट गो किया हुआ है, हमें याद नहीं है, पास्ट याद नहीं है सपोज, लेकिन कोई सिचुएशन आ जाती है जिसका कनेक्ट, या वो सिचुएशन इसलिए आई है कि और मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे मुश्किल आ रही है, तो मैं पास्ट में कहीं रिलेट करने लग जाता हूँ कि ये इस वजह से हुआ, एंड देन द होल
0: आई गो बैक टू दैट
1: थिंग कम्स बैक. इट मींस वो सॉल्व नहीं हुआ,
0: आई डिडंट लेट इट गो. सो समवेयर पास्ट को, पास्ट मतलब कोई ग्रज पकड़ी हुई है, किसी के अगेंस्ट कोई बात पकड़ी हुई है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ कितनी वैल्यूबल एनर्जी वेस्ट हो रही है. एंड फ्यूचर के लिए भी एक फेथ कि जो होना है वो मेरे साथ अच्छा ही होना है, क्योंकि जो थॉट मैं क्रिएट करूंगी वो ही होने वाला है. सो व्हाई नॉट क्रिएट द थॉट दैट एवरीथिंग दैट विल हैपन विद मी विल ओनली हैपन द बेस्ट फॉर मी, क्योंकि वैसे भी वही होने वाला है. सो व्हाई नॉट, व्हाई क्रिएट दोज पेनफुल थॉट्स?
1: एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ट.
0: एवरीथिंग विल
1: बी व्हेन चैलेंजेस एंड सिचुएशंस आर नॉट गोइंग टू टेक ओवर.
0: तो फिर सब चीज कैसे हो जाएगी?
1: जस्ट एक्चुअली पूरा लर्न किया है हमने लेसन की सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है.
0: और जब हम प्रेजेंट में होंगे, ना पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, प्रेजेंट में होंगे, क्रिएटिव होंगे, वरी नहीं होगी, फियर नहीं होगा, तो अच्छा नहीं होगा. और अगर वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य
1: अच्छा ही होगा. बार बार हमने ये बातें सुनी हुई थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं जिंदगी, एक्चुअली हुआ ये है आई थिंक कार्यक्रम के दौरान, कि अभी तक स्पिरिचुअलिटी में ये सारी बातें, ये जो हम अंडरलाइंड बातें करते हैं, ये हमने सुनी थी, अपने बड़ों से सुनी थी, कभी कहीं पाठ हो रहा होता था, कहीं सत्संग होता था, हम ये सब सुनते थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में कैसे यूज होंगे. आज ये सारी बातें मेरे अपने जीवन के अनुभव से निकल के आ रही.
0: वेरी मच, एब्सोल्यूटली.
1: सो दैट वे दैट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव,
0: बिकॉज देन आई अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअलिटी इज प्रैक्टिकल, क्योंकि इट हैज टू बी फॉर माई लाइफ. प्रैक्टिकल मतलब मेरे जीवन से एप्लीकेबल होनी चाहिए. कोई चीज सारी दुनिया के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन जब तक वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं, देन इट्स नॉट यूजफुल टू मी. एब्सोल्यूटली.
1: वेरी ट्रू. तो आज जिस तरह से मेंटल रिसोर्सेज के बारे में आपने कहा कि सही तरह से उसे मैनेज करना, सबसे बड़ी बात तो है कि उसकी एनर्जी, उसकी ताकत को समझना. पहले मैंने स्व की ताकत को समझा, अब अपने जो थॉट प्रोसेस है उसकी ताकत को समझ के फिर मैंने किस तरह से उस रिसोर्स को यूज करना है, कहां कहां कैसे कैसे यूज कर सकती हूं. ये बहुत ही पावरफुल टूल है मेरे पास. जैसे ये शरीर मेरा पावरफुल टूल है, वैसे ही मेंटल फैकल्टी मेरी
0: बहुत ज्यादा,
1: तो उसका सही इस्तेमाल करना भी मेरे अपने हाथ में है. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. बिल्कुल हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करें हम इसे, इस पूरे शरीर को, इसकी पूरी जो फैकल्टीज हैं उसे एक फिजिकल रिसोर्स के बारे के रूप में देखें, और फिर उस रिसोर्स का सही मैनेज कैसे करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस रिसोर्स को कहीं डिप्लीट कर रही हैं, कहीं कमजोर कर रही हैं, कहीं बीमार कर रही हैं. दूसरी तरफ मेरी अपनी मेंटल फैकल्टीज, मेरा अपना थॉट प्रोसेस कितना बड़ा रिसोर्स है, किस तरह से मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं अपने इन्हीं थॉट्स को पावरफुल बनाकर उनका सही इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन में. हर बार की तरह हमारे सामने ऑप्शंस हैं, चूज हमें करना है. वी हैव अ चॉइस, हमारे सामने है चॉइस, हम कितना उसे यूज करते हैं ये हम पर निर्भर करता है. कोई सवाल, कोई मुश्किल आपको इस पूरी यात्रा पर चलते हुए आ रही है, आपका हम स्वागत करेंगे. आप हमसे फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-444-666, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में अभी कुछ बातें करना और बाकी है, आपसे मुलाकात करेंगे. विदा लेते हैं. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है,

0: अहो ऐकलंस
1: का आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
2: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में स्वागत है आप सबका. नमस्कार. इन दिनों जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो जुड़ा है हमारी जिंदगी से और वो है डिप्रेशन. क्या ये एक बीमारी है? क्या हम और आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? कैसे हमें पता चल सकता है कि हम डिप्रेशन में हैं? या फिर किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपनों से डील कर रहे हैं जो डिप्रेशन में हो? यही सारे मुद्दे हैं जिन पर हम अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं. कई बातें सामने आए हैं, कई आगे आने वाली कड़ियों में सामने आएंगी. आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो ये कि जब अचीवर्स या वो लोग जो बहुत एम्बिशियस होते हैं अपनी एम्बिशन को नहीं पा पाते, नहीं पहुंच पाते उस मुकाम तक, तब जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो फिर क्या करना चाहिए. और ऐसी कई और बातें हैं जो बातचीत के दौरान निकल कर आती हैं. तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला शुरू करते हैं. हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. आपका हार्दिक स्वागत.
3: नमस्कार.
2: और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में बता दें कि 7 किताबें आ चुकी हैं इनकी जो कि जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, पॉजिटिव जो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट कैसे होने चाहिए. 30 साल से ये जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ. और सबसे बड़ी बात यह है कि साइकोथेरेपी के क्षेत्र में इतना कुछ आप अचीव कर चुके हैं. तो आपका बहुत बहुत स्वागत. बहुत अच्छी आप बातें हमारे साथ करते आए हैं. और हमारे साथ हर बार की तरह ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी है, आपका भी स्वागत करते हैं.
4: ओम शांति.
2: ओम शांति. डॉक्टर साहब, आज जो मुद्दा हमने लिया है, इतने ईमेल्स आए हैं, इतने कॉल्स आए हैं हमारे पास, पूरे जो हम डिप्रेशन की बात करते आ रहे हैं वो हम कॉल्स लेंगे, वो ईमेल्स भी पढ़ेंगे. लेकिन जो पहली बात हम करना चाहते हैं कि अचीवर्स जो होते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अचीव करते आए हैं, तब वो जब वहां पहुंचना चाहते हैं और नहीं पहुंच पाते, तब उस डिप्रेशन से या वो जो एक शॉक लगता है कि अरे मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे नहीं मिला, वो एक मेजर शॉक है, उसे कैसे फेस करना है ताकि वो डीप डिप्रेशन में ना जा पाए.
3: बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आप बता रहे हैं. मैं आपको प्रैक्टिकल सिंपल सॉल्यूशन भी बताता हूँ. पर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, परंतु ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि बहुत बड़ा एम रखिए. अपना गोल है वो बहुत बड़ा रखिए. ऐसा भी लगे कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरा गोल है, वह रखिए जरूर. परंतु आज आप जहां भी हैं वहां पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाइड फील करिए. और कॉन्ट्राडिक्टिंग भी लग रहा है, परंतु पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? कि आपको बहुत बड़ी चीज अचीव करनी है तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, टाइम को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा. यह सब इंग्रेडिएंट्स है. वो कब होंगे? इफ यू आर सेटिस्फाइड. अगर आज मैं असंतुष्ट हूं, समझो मैंने सोचा मुझे 100 किताबें लिखनी है, इट मे बी एन इम्पॉसिबल गोल. अगर मैं वो सोचता ही रहूं तो कुछ भी 10 पेज भी नहीं लिख पाऊंगा. परंतु अगर आज पहले मेरी 7 किताबें भी पब्लिश हुई, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, लेट मी डू हार्ड वर्क, आई
2: कैन वर्क स्टिल देयर.
3: या दैट गोल इज देयर. इफ आई एम सेटिस्फाइड आई माइट बी एबल टू वर्क 18 आवर्स अ डे. कुछ अच्छा स्टडी कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, और मे बी मेरी 100 पर नहीं पहुंचा, 50, 60, 70 पर तो पहुंच जाऊंगा. तो ये बैलेंस मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी.
2: बहुत आपने आज सुंदर बात ये कही कि गोल्स कई बार, क्योंकि कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या, एक और बात जो आती है कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ वो गोल अचीव करना, क्या मुझ में वो काबिलियत है कि मैं वो गोल तो रख लेता हूँ कि मैंने एक सपना तो देख लिया कि मैं यहाँ

0: पुल हम कितना भी हाई रख सकते हैं, दैट्स लाइक स्काई इज अ लिमिट जैसे हम बात करते हैं, लेकिन आज के वक्त में मैं सैटिस्फाइड रह के जहां पे भी मैं हूं यहीं से मैं अपनी वो जर्नी शुरू करूं वहां तक पहुंचने की, तो उसमें मेरा इंटरनल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत मायने रखेगी। यहां ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि ये पूरे सफर में भी रहे,
1: क्योंकि सफर करते हुए ऑब्स्टिकल्स आएंगे और हो भी सकता है कई बार बीच में ऐसे लगे कि उधर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, बट लाइक वी शेयर्ड इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। तो हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि एक लक्ष्य रख लें, बहुत ऊंचा लक्ष्य रख लें, लेकिन उसमें फर्मली बिलीव करें। यू नो मोस्टली ये हो जाता है कि लक्ष्य रख लेते हैं और पीछे ये थॉट लगती है कि ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, कई बार आसपास के सभी लोग कहते हैं कि ये असंभव है, आप ये नहीं कर पाओगे, तब डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो अपनी थॉट्स ही हमें उधर तक पहुंचने में जैसे एक रुकावट बन जाती है। जो चीज हम सोचेंगे फुल कन्विक्शन के साथ, उसमें फुल बिलीव करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं होगा। इम्पॉसिबल कैन हैपन बिकॉज सिचुएशंस, पीपल, एवरीबडी, वो बनती ऐसे जाएंगे कि आपकी थॉट ही जैसे सत्य होती जाएगी, प्रैक्टिकल आपके लिए होती जाएगी, प्रोवाइडेड इट इज 100% कन्विक्शन। एक भी नेगेटिव थॉट बीच में नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये होना है, ये हुआ ही पड़ा, ये मुझे करना है।
0: ये पर अचीव कर पाना कि एक भी थॉट नेगेटिव ना आए, इट्स लाइक अगेन अ बिग अचीवमेंट।
1: नो, बट देन फिर अगर वो नेगेटिव थॉट आ रहा है, देन आई हैवंट सिलेक्टेड माय गोल प्रॉपरली। यू सी, गोल मतलब वो चीज विच आई फर्मली बिलीव कि मैं अचीव कर सकती हूँ। तो अगर मैं ही रखूं कि मुझे 5 साल में ये बनना है और मैं ही उस 5 साल के दौरान सोचूं कि ये तो बहुत मुश्किल है, देन आई हैव नॉट सिलेक्टेड द राइट गोल। तो इसलिए गोल बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच के आप गोल को बनाइए, लेकिन फिर उसके ऊपर 100% कन्विक्शन कि इस पे चाहे कुछ पे हो जाए, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, आई एम गोइंग टू अचीव दिस। तो वी सी के इम्पॉसिबल हैपन, ऑब्स्टिकल्स जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरी अपनी नेगेटिविटी, सी इट इज आर थॉट विच अट्रैक्ट्स, जो क्वालिटी ऑफ थॉट होगी वैसी सिचुएशन, वैसे ही लोग अट्रैक्ट मेरी तरफ होते जाएंगे। सो नेगेटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव थॉट, फर्म बिलीफ एंड लिविंग इन द प्रेजेंट। कई बार हम वो बना के बस उसी में खोए रहते हैं, मुझे ये करना ही है, ये करना ही है, तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है
0: और आज को भूल जाता है।
1: एंड इट्स ऑल्सो वी लूज आर आइडेंटिटी इन दैट। इट्स नॉट कि मैं ये हूं, मुझे वो बनना है, नहीं, मैं वो हूं। यू नो, जैसे एक डॉक्टर बनने का एम्बिशन रखा, तो वो अपनी आइडेंटिटी ही उसमें समा देते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं। तो कई बार अगर बाय चांस नहीं बन पाते तो अपनी आइडेंटिटी ही फिर खत्म हुई दिखाई देती है, तब वो डिप्रेशन। अगर ये हो कि मैं एक यू नो इंडिविजुअल एंटिटी हूं, ये मैंने अपना रोल चूज किया है, अगर सिचुएशन डिड नॉट परमिट और मैंने वो रोल नहीं प्ले कर पाए, देन देर आर सो मेनी अदर रोल्स। लेकिन इफ आई डिड नॉट मेक इट अ रोल, आई मेड इट दिस इज आई, देन वो फिर बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे।
2: अच्छी बात इसमें शिवानी बेन ने बताई हुआ है, कहीं एक्सपर्ट्स है जो बहुत ही फेमस हुए, हाई अचीवर्स, उन्होंने भी कहा है कि 1-2 मास पहले भी हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज को मैं अचीव कर पाऊंगा, लेकिन हम क्योंकि उसके पीछे लगे रहे, एफर्ट्स करते रहे, तो सचमुच अचानक ऐसी क्षण आई कि जब एक क्वांटम जंप हो गई और हम उस स्टेज को अटेन कर पाए। और बात यह भी है कि भी अगर हम कोशिश करते रहे ना तो वो होता है।
0: लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब, जो जितने भी आ रहे हैं हमारे पास मेल्स आए हैं, उसमें बात यही है, स्पेशली 10th, 12th एंड सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज का इतना ज्यादा है लोगों के साथ प्रॉब्लम कि वो वही करना चाहते हैं, उसको अचीव कर लेना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते, तो लगे रहते हैं जितने भी चांसेस आते हैं उसके बाद देयर इज अ मेजर डिप्रेशन, कुछ और नहीं कर पाते, कुछ और करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, कुछ और नहीं करना चाहते और सब कुछ जितना पोटेंशियल था वो भी नहीं अचीव कर पाते। अगर मैंने वो गोल रखा है और मैं कांस्टेंट पॉजिटिव थॉट के साथ, मुझमें आपने कहा कि हर एक में कैपेबिलिटी है, तो मैं करता भी जा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नहीं अचीव कर पा रही,
2: तब ये सोचना है। जैसे अभी ऐसी स्टेज हो गई, जैसे सिविल सर्विस की बात है कि स्टेज हो ही गई, तो तब हमें यह सोचना है कि भी मेरी कैपेसिटी तो बढ़ी, इतनी जो पढ़ाई की उसके लिए जो प्रिपेरेशन किया उससे आपकी बुद्धि का विकास हुआ है ना, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ी और अब आप और पैसा

0: क्षेत्र आपको बदली करना पड़ेगा, मे बी यू विल डू एमबीए और यू विल डू समथिंग एल्स, और आपने क्या वहां वो काम में आएगा।
1: लेकिन उसमें पीयर प्रेशर इतना हो चुका होता है, यू नो लाइक सारा पूरा समाज हमारे साथ जो हमारे अपने हैं उनका भी इतनी हमसे उम्मीदें बन चुकी होती हैं, हम शायद उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, क्योंकि वो उनका जो डाउन, उनको जो डिप्रेशन होता है, क्योंकि मैं हम देखा ये गया है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, पूरा का पूरा घर डिप्रेस हो जाता है। सो वो ये मास डिप्रेशन का क्या किया जाए?
0: जैसे शिवानी बहन ने कहा वो ठीक है कि मैं वो रोल हूँ ऐसे नहीं, मैं स्कूल में अचीव कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हो गया ही नहीं, आई एम पुटिंग एफर्ट, लाइक मैं डॉक्टर नहीं हुआ, मैं और कुछ बन सकता हूँ। बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वन बिल गेट्स को लीजिए, ही वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड, कहते उसकी माँ उसको साइकोथेरेपिस्ट के पास बहुत समय तक ले गई, माँ थक गई परंतु बच्चा नहीं सुधरा, परंतु जब उसने अपनी कंपनी शुरू की तो देन ही हैड अ किलर इंस्टिंक्ट कि मुझे नंबर वन होना है, और सचमुच हो गया।
1: नहीं, बिगड़े हुए बच्चे तो सुधर जाए और बहुत अचीव कर जाए वो तो एक बहुत बड़ी बात लगती है, जो अचीवर्स होते हैं प्रॉब्लम वहां आती है कि जो फर्स्ट से लेकर टेंथ तक टॉपर रहे हैं वो जब टेंथ में परफॉर्म नहीं कर पाते या जितनी उम्मीद थी वहां तो नहीं कर पाती, तभी तो सुसाइड के केसेस होते हैं, या वो उस पूरे डिप्रेशन को वो कैसे हैंडल करे, फेलियर का हैंडलिंग जो है ना।
2: लेकिन सुसाइड का जो केस है इट इज मोर ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू फेस अदर पीपल, आई फील।
1: हाँ, दैट्स व्हाट इट इज, नॉट इवन एट टाइम्स यू आल्सो,
2: बट इट्स मोर के लोग क्या कहेंगे, या उस टाइम स्टूडेंट में तो ये कहेंगे कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, इट्स मोर दैट फियर, वो फियर हमें सुसाइड की तरफ शायद, अगर बच्चे को, क्योंकि बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, फेल तो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये इंटरनल अश्योरेंस है कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यू नो दैट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, जहां मुझे पता है कि मुझे रिजेक्शन मिलेगा, आई डोंट वांट टू फेस दैट रिजेक्शन।
1: इफ वी लुक बैक, पिछले साल के ही रिजल्ट्स में एक ऐसी बच्ची थी जिसका रीचेक जब किया गया तो उसके 95% आए, और उससे पहले ही वो सुसाइड कमिट कर चुकी थी क्योंकि उसकी परसेंटेज 80s में थी। तो ये इतनी बड़ी एक विडंबना है,
2: लेकिन वो रीचेक करके 95 हुआ, लेकिन अगर नहीं भी 95 होता तो भी क्या
1: था।
0: हाँ, मैं आपको एक बार बताता हूँ, आई एम बीन शेयरिंग दिस प्रैक्टिकली, मतलब उसको पॉजिटिवली लेना इस बात को, जैसे कहते हैं कि जो लोग भी ए ग्रेडर्स है ना, इवन इन मेडिसिन वी नो कि जो फर्स्ट हमारे पास जब एमबीबीएस करते गोल्ड मेडल्स जिनको आए थे, इनफैक्ट नो दे वर्क अंडर बी ग्रेड वालों के,
1: दे हैव टू
0: बी ग्रेड वाले शायद प्रोफेसर बन जाते हैं और उनके अंडर में वो काम करते हैं। कैसे सी ग्रेड वाले हैं ना, वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं और उसके ओनर्स बनते हैं, और कहते हैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ले रहा हूँ, कहते डी ग्रेड वाले हैं तो ना पॉलिटिशियन बनते हैं और सारे नेशन को रूल करते हैं। अल्टीमेटली नो इट्स नॉट द ग्रेड विच यू गेट, नो हाउ यू डेवलप अदर एस्पेक्ट्स क्वालिटीज इन योर लाइफ एंड यू कैन अचीव बेटर।
1: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो जो एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, कि एकेडमिक अचीवमेंट्स, हाँ, बट कई बार भारत में तो हम ये देखा गया है कि उसको हम इतना फोकस बना के हम जब चल रहे हैं, खासकर स्कूल तक जो लेवल तक है, और जो एकेडमिकली अचीवर्स हैं वो कल्चरली भी अचीव कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो डिबेट्स में भी अच्छा कर रहे होते हैं, बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी होते हैं, लेकिन जहां उनको फेलियर आ जाता है, एनी टाइम कमिंग सेकेंड बिकम्स डिफिकल्ट, यू नो वो डिप्रेशन, क्योंकि काउंसलर से अगर आप बात करें तो दैट इज अ मेजर क्वेश्चन, यू नो लाइक एक तो वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा नहीं अचीव कर पा रहे, एक वो जो ज्यादा अच्छे अचीवर्स हैं, उनके लिए सेकंड आना एक मेजर प्रॉब्लम है,
0: किंतु वो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट में नहीं ले,
1: तो उसको कैसे कर सकते हैं?
2: आई थिंक दे नीड टू टॉक टू देमसेल्फ्स,
1: यस
2: अगेन, बिकॉज आई नो समबडी हु वाज गोइंग थ्रू दिस थिंग एंड शी वाज कमिंग फर्स्ट थ्रू आउट, एंड वो बार बार फर्स्ट आने की एक एडिक्शन सी जैसी हो गई थी कि अब फर्स्ट ही आना है, और वो फर्स्ट आने के लिए वो इतना ज्यादा मतलब एफर्ट करती थी, लेकिन एफर्ट करने के दौरान टेंशन भी बहुत हो जाती थी, तो वो जो प्रेशर से जाती थी उस एग्जाम्स के दौरान, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल हर इज इट वर्थ इट कमिंग फर्स्ट लाइक दिस, मतलब अगर आप फर्स्ट आ भी जाते हैं इसके बाद, यू रियली हैवंट एंजॉयड योर ईयर, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर कॉलेज लाइफ, टॉक टू योर सेल्फ, क्या होगा अगर आप सेकेंड आएंगे तो,
1: वॉट इज हम कॉन्स्टेंट जुगाड़ में भी रहते हैं कि दूसरे के कितने नंबर आए हैं, क्या मेरा आधा परसेंट भी उससे ज्यादा है, क्या वो उसका कम है कि नहीं है, यू नो लाइक इतना ज्यादा कंटिन्यूस इस प्रोसेस में, और जहां उनका आधा परसेंट भी कम हुआ मेजर होता है लाइफ स्टेट, मेजर डिप्रेशन में चली जाती है इतनी छोटी उम्र में। सो
0: दे शुड टेक इट एज द चैलेंज,
1: हाँ,
0: जिससे सेकेंड आया तो फर्स्ट वाले ने मेरे से ज्यादा एफर्ट

0: होगी। आप बोल रहे थे भी मुझे मेरा एग्जाम्पल याद आया, आई वॉज इन फैक्ट कहेंगे कि डल स्टूडेंट टिल सेवन स्टैंडर्ड, इवन टीचर्स डांटते थे, कह रहे तेरा भाई पढ़ता है तू नहीं पढ़ रहा है। ऑटोमेटिकली एट्थ में ही आया कि बहुत पढ़ना चाहिए, अनलेस आई स्टडी आई डोंट हैव फ्यूचर, और फिर बहुत पढ़ने लगा। तो मे बी टेंथ में सेकेंड आई, इलेवंथ में फर्स्ट रैंक आई। तो जब मेरी फर्स्ट टाइम हो तो जिसकी फर्स्ट हमेशा आती थी ही वॉज थ्रू आउट फर्स्ट आई रिप्लेस दिन, तो वो सेकेंड हो गया। तो देन ही वेंट इन टू डिप्रेशन।
1: यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग,
0: सो नो देयर ही नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बंदे ने बहुत मेहनत की है, तब ये मेरे आगे निकल गया थोड़ा। तो लेट मी टेक इट एज अ चैलेंज, चलो एक साल तो ये आ गया, बी नेक्स्ट ईयर आई विल पुट मोर एफर्ट देन हिम एंड आई विल बिकम फर्स्ट।
2: नो बट इट्स ऑल्सो दैट लाइक ही सेड ही वॉज समबडी एल्स वॉज फर्स्ट, फिर ये फर्स्ट आ गए, बट दैट डजेंट मीन कि इस व्यक्ति की परफॉर्मेंस खराब हो गई, इट जस्ट मीन समबडी एल्स केम एंड परफॉर्म द लिटिल बेटर। तो हम अपने आप को डिमीन क्यों करना शुरू कर देते हैं ना कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, एंड इट्स जस्ट दैट समबडी वर्कड अ लिटिल हार्डर। आई थिंक द प्रोसेस शुड बी कि आप उस ईयर के दौरान आप अपना बेस्ट एफर्ट करें, लेकिन वेन द रिजल्ट कम्स देन देर शुड बी एक्सेप्टेंस, बिकॉज उस टाइम टर्मोइल नहीं होना चाहिए। Everything that we want to do, we do it during the year, and usme bhi with enjoyment, you know, internal enjoyment.
1: कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम जो हम ये स्टूडेंट्स को ये बताया जा सके। इनफैक्ट राइट नाउ आई हैव अ मेल, मैं इस पर जरूर बात करना चाहती हूँ। ये विनय हैं जो दिल्ली में ही पढ़ते हैं, एंड दिस इज वॉट हिज प्रॉब्लम इज ऑल्सो कि 12th तक ही हैज बीन एन अचीवर, हर क्लास में मैं फर्स्ट आता रहा, और IIT का एग्जाम मैंने दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें भी फर्स्ट 100 में था, एंड आई वाज एन अचीवर। अब फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते, अभी उन्होंने IIT ज्वाइन किया है, कि अभी आई फील दैट आई डोंट डू एनीथिंग, दैट्स व्हाट ही सेज, कि मुझे लगता है कि सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आई वॉन्ट टू रिनाउंस द वर्ल्ड, यू नो, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊं ये बात, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सडनली मुझे लग रहा है कि कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैंने इतना कुछ तो अचीव कर लिया, क्या हुआ ये क्या है ये एक्चुअली ये विनय की नहीं, ये कई टॉपर्स की मैंने देखा है कि इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स के साथ ये एक वर्कशॉप हुआ था, तब भी ये बात हुई थी, टॉपर्स के साथ ये भी आज के दौर में प्रॉब्लम आ रही है, दे सडनली फील यू नो इतना अचीव करते करते एक इतनी छोटी उम्र में ही, अब कितने 16-17 साल के होंगे, कि एक ऐसी वक्त आता है कि वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ये क्या है, दिस इज अगेन अ डिप्रेशन।
0: या इट इज डेफिनेटली डिप्रेशन, और भी स्टडी करना चाहिएगा सचमुच हमें उसे एनालिसिस करना हो तो, लेकिन फिर जो सिम्टम्स है उसके आधार से यही लग रहा है। अभी ऐसे केस में कॉज क्या है, कि भी ऑल ऑफ अ सडन कुछ मैं ऐसा सोचने लगा कि भी मैं नहीं कर सकूंगा, मैंने एफर्ट की, बट नो एट अ स्टेज पर्सन गिव्स अप,
1: नहीं देख के अभी अचीविंग, अभी IIT में भी फर्स्ट 100 भी आया, हाँ, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मैं अब छोड़ देना चाहता हूँ सब कुछ।
0: स्टिल इफ इज अचीविंग देन वन रीजन कैन बी दैट एंडोजिनस डिप्रेशन, इफ इट इज हैपन ऑल ऑफ अ सडन देन दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और बात ये भी संभव है कि भाई वो जो कॉम्पिटिशन उसको फेस नहीं कर पा रहे, कैपेसिटी है लेकिन कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पा रहे,
1: या फिर कहीं कभी ऐसा भी होता है कि ऊंचाई पे पहुंच के तो मैं अकेला हूँ, मेरे लेवल का तो कोई है ही नहीं, यू नो कई बार ऐसा भी होता है कि
0: इस स्टेज पे नहीं होगा, ये और हायर स्टेज पे हो सकता है, नहीं जैसे किसको नोबेल प्राइज मिल जाए तब कई बार ये स्टेज आती है कि सब कुछ पाना था पा लिया, नाउ देयर इज नथिंग, नो आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड
1: एंड आई फील अलोन, यू नो लाइक टॉप पे आप अकेले होते, ये एक बिलीफ एक और लेके चलते हैं हम कि हम जब चोटी पर होंगे तो हम अकेले होंगे, सो डज इट रियली हैपन।
2: आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज समवेयर आप मटेरियलिस्टिकली चाहे एजुकेशन चाहे प्रोफेशनली आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन आप ये सब कुछ चाहते थे कि ये आपको खुशी दे, ये आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन दे, आपको बहुत सारी डिग्रीज मिल गई, बहुत सारा धन या सब कुछ मिल गया, लेकिन वो नहीं मिला जिसको आप ढूंढ रहे थे, तब कहीं ना कहीं लगने लगता है इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ पा लिया लेकिन वो नहीं मिला जो ढूंढ रहे थे, तो इस सब को छोड़ दो अब उसको ढूंढना शुरू कर दो, यू नो यू जस्ट टेक द एक्सट्रीम पाथ, कि पहले आप सिर्फ भौतिकता की तरफ ही भाग रहे थे, अब आप सोचते हो इससे वो मिल नहीं रहा, अब इसको छोड़ दो, अब आप संन्यास या जैसे आपने कहा यू नो रेनाउंस द वर्ल्ड, बट इट्स नीदर ऑफ द टू, इट्स सपोज टू बी बोथ, दैट इज द बैलेंस, कि आप खुशी संतुष्टता से भी भरपूर होते जाएं और भौतिक जो आपको प्राप्तियां चाहिए उसको भी करते जाएं, जब आप वो करते जाएंगे आई थिंक ये स्टेज कभी नहीं आएगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस। ये क्या हो रहा है, मे बी यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस,

0: तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे सपोज हम यहां से बॉम्बे जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं द जर्नी इज एब्सोल्युटली मिजरेबल, यू नो आप बिल्कुल जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप डेस्टिनेशन पहुंच के भी खुश नहीं होंगे, कहेंगे यू नो दैट होल जर्नी टेक्स इट्स टोल ऑन यू, सो यू डोंट एंजॉय वेयर यू हैव रीच्ड. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू एंजॉय थ्रू द प्रोसेस, एंड वो तभी होगा अगर आप हल्के रहकर पढ़ रहे हैं. यू नो समटाइम्स विद स्टूडेंट्स दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, कि वो इतना टाइटनेस टू be first, इतनी एंग्जाइटी, वो सब कुछ डिस्चार्ज कर रहा है उनको अंदर से.
1: वही कि वो मुझे पहुंचना, मुझे वो एडिक्शन ना,
0: बिल्कुल
1: फर्स्ट आने की एडिक्शन,
0: वो फर्स्ट आना भी वो खुशी नहीं देगा जो उसे देनी थी, क्योंकि आपने पूरा साल एंजॉय नहीं किया, तो वो प्राप्ति भी बहुत ज्यादा सुख नहीं मिल सकती. एंजॉय, आई थिंक वी नीड टू लर्न टू एंजॉय लाइफ, एंजॉय इन द सेंस इंटरनली बींग वेरी हैप्पी एंड एक्सेप्टिंग. एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी मतलब एक कला है जो हमें सीख लेनी चाहिए, और वो संपूर्ण विश्वास के साथ कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल सही हो रहा है, बिकॉज इट एक्चुअली हैपन्स लाइक दैट. अगर हम डिटैच्ड होकर देखें हमारे साथ जो कुछ हर स्टेप पे हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट एंड बेनिफिशियल, जिसके लिए हम कहते हैं ड्रामा, ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है दिस इज एक्यूरेट परफेक्ट एंड बेनिफिशियल. इसमें कुछ भी चेंज होने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है. एंड व्हेन आई लुक एट इट लाइक दैट आई रियलाइज एवरी सीन, इससे अच्छा सीन
1: और नहीं हो सकता, और नहीं
0: हो सकता था.
1: तो विनय को आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे शिवानी ने तो यही कहा कि जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो जर्नी है, जो जर्नी हमने ली है उसे दोनों तरफ का बैलेंस बना के, कि एक स्पिरिचुअलिटी का एक आस्पेक्ट तो है ही, कि एक हम इंटरनलाइज कर लें कि भाई मैं खुशी मेरे अंदर ही है, उसे ही अचीव करूं, और जरूरी नहीं है हर कदम पे ही फर्स्ट आना है, हर बार फर्स्ट आना है. आपने कहा कि वो सेकंड टाइप की ये हो सकती है, यू नो सेकंड टाइप का डिप्रेशन हो सकता है जिसमें केमिकल चेंजेस की हमने बात की थी, एंडोजेनस जो है, तो उसमें इनको क्या सलाह देंगे?
2: एंडोजेनस डिप्रेशन में तो मेडिसिन की जरूरत है. एक बार एक्सपर्ट है वो कोई प्रोफेशनल उसको जज कर पाएगा. अपने आप भी भले कोशिश करे और ये ट्राई करे कि भी कहां पर मेरे विचारों में गलती है. नहीं, वास्तव में यह प्रॉब्लम विचारों से, अगर स्टिल इफ इज द अचीवर, वहां कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो फिर तो उसको एंजॉय करना सीखे. इफ ही फील्स कि शायद मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो इनसिक्योरिटी के थॉट्स भी हो सकते हैं.
1: इतना बड़ा अचीवर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा, ये भी एक मिथ है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है. आई एम रियली थैंकफुल ही मेल्ड इट टू अस, अदरवाइज वी ऑलवेज फील वी आर वेरी इंटेलिजेंट कि हमें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है. या एक और बात की, अगर हमें ड्रग्स लेते हैं तो वो हैबिट फॉर्मिंग है, यू नो हमें ड्रग्स नहीं चाहिए क्योंकि ड्रग्स लेंगे तो हमें हैबिट हो जाएगी. ये दो मिथ हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये सही है या गलत है.
2: बहुत अच्छा, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास जाने में फायदा ही है. नहीं, और अच्छा साइकेट्रिस्ट आपको ऐसी दवाई नहीं देगा. इफ यू डोंट नीड ही विल टेल यू, क्योंकि आपकी स्टेज परफेक्ट, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये दो तीन और स्टेप्स अपनाइए है, और अगर आवश्यकता है तब ही वह देंगे. दूसरी बात, जो मेडिसिन है हैबिट फॉर्मिंग नहीं है. एक्चुअली दिक्कत कहां होती है पता है, कि भाई सचमुच जो न केवल डिप्रेशन और सारी की सारी साइकेट्रिक बीमारियों को आप देखो, तो अगर ठीक से इलाज किया जाए शुरू में तो 80% बिल्कुल ठीक हो जाते, लेकिन जो 80% ठीक हो गए वो किसी को नहीं बताएंगे कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया या मैं ठीक हुआ. ही विल नॉट टेल अ सिंगल पर्सन.
1: But why? Why? This is again.
2: That's like my sort of a stigma.
1: Belief system. हाँ.
2: और वो जो 20% जो सिर्फ ठीक नहीं हुए ना, उसी को हम बार बार देख रहे हैं. ये तो ठीक नहीं हुआ, देखो 6 साल से दवाई ले रहा है, 10 साल से ले रहा है, ठीक नहीं हुआ. इसलिए हमें लगता है कि साइकेट्रिक मेडिसिन आर हैबिट फॉर्म. अगर प्रॉपरली ली जाए एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत लंबा नहीं लो, 1 साल भी, 1.5 साल लेनी पड़ती है वास्तव में कई बार, उतना समय आप लो तो नो, इट्स नॉट एट ऑल हैबिट फॉर्म. इवन इन ओल्ड एज समटाइम आई से इवन इफ यू हैव टू टेक इट लॉन्गर डोंट वरी, क्योंकि और उसकी कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं है.
1: अच्छा, और यंग एज में भी? हाँ,
2: नहीं, यंगर वंस को हम कहेंगे वी टेक इट फॉर अ शॉर्ट वाइल, लंबा नहीं हो,
1: लेकिन लेना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम,
2: लेना ही चाहिए.
1: और ओवर इंटेलिजेंट लोगों के लिए, यू नो, एक चलते चलते हम ये बात करना चाहेंगे कि ओवर इंटेलिजेंट यूथ, ओवर इंटेलिजेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, वी कैन डू इट, वी कैन हैंडल एवरीथिंग, एंड देन वेन दे आर नॉट एबल टू हैंडल, जब नहीं हो पाता तब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता. हाउ टू?
0: दे आर नॉट बींग रियलिस्टिक, दे आर ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट, विच इज नॉट पॉसिबल. यू नो, हम एक एम रख सकते हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स.

0: द वे हम ये हम कई बार अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हमारे से गलती कैसे हो सकती है, हमें कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो ये मतलब यू नो टू मेक योर सेल्फ वेरी टाइट कि आई एम परफेक्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट विल ओनली मेक माई लाइफ डिफिकल्ट. अगर हमें परफेक्शन अचीव करनी है देन आई कैन बी परफेक्ट इन माई स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स पॉसिबल, क्योंकि उस पर कोई और सिचुएशन का कंट्रोल नहीं है. मेरे एम पर, मेरे जो गोल पर है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, माई फैमिली, माई सिचुएशन, माई ओन हेल्थ, बहुत सारी बातें, लेकिन मेरे स्टेट ऑफ माइंड इज दी ओनली थिंग जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. सो इफ आई रियली वॉन्ट टू एम फॉर परफेक्शन आई एम देयर, तो उससे क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर कोई भी गोल अचीव हो या नहीं हो, आई विल स्टिल बी हैप्पी एंड आई वॉज अचीविंग माई गोल ओनली टू बी हैप्पी. सो इफ आई कैन बी हैप्पी विदाउट रियली रीचिंग देयर,
1: okay.
0: Where's the damage done? I'm still happy.
1: Yes.
0: So the whole aim was to be happy.
1: Yeah.
0: But I thought I'll be happy only after reaching there. But I can be happy without reaching there. And I can be happy while going there.
1: In the process, so, actually, I'm happy. तो डॉक्टर साहब, एक जो हमारे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जितने भी लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, एक बात जो सामने आई यूथ के लिए जो थी कि अचीवमेंट की, दूसरा है मोहब्बत, प्यार, रिलेशनशिप्स. यू नो नेक्स्ट कड़ी में, नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर उस पर बात करेंगे कि मेजर डिप्रेशन का कारण जो यूथ में है वो एक है कि प्यार में धोखा या प्यार में अचीव ना कर पाना या फिर प्यार ना मिल पाना जो वो सोच रहे हैं, एंड व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ लव एक्चुअली, यू नो, एंड रिलेशनशिप्स. तो आज हमने अचीवर्स की बात की और ये बात सामने आई कि गोल रखा जाए, गोल एक बड़ा होना चाहिए सामने, लेकिन जो आज जिस सिचुएशन में है वो रियलिटी भी हमारे सामने होनी चाहिए, उसे रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. डिप्रेशन एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम और आप रूबरू होते हैं, लेकिन इस पूरे सफर में हम ये जान रहे हैं कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते. आज अचीवर्स की बात की, अचीवमेंट की बात की, अचीव करना चाहिए, एम्स होने चाहिए, बड़े गोल्स रखिए, लेकिन आज अपनी सच्चाई जो है उससे भी वाकिफ रहिए. हमने आपसे वादा किया अगली कड़ी में मोहब्बत को लेकर आएंगे कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से मोहब्बत को देखती है, किस तरह से प्यार के रिश्तों को देखती है और किस तरह से जब उनमें असफल हो जाती है तो डिप्रेशन की तरफ बढ़ सकती है, कैसे उससे निकल सकते हैं, इसके बारे में अगली कड़ी में बात करेंगे. लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर दूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत।
3: 90.4 FM रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, सुन कर के हम मुस्कुरा कैसे सकते हैं जब तक हमने किसी बात का अनुभव नहीं किया। लेकिन जब हम वो कहानियाँ सुनते हैं, वो किसे सुनते हैं जो किसी अनुभवी के जीवन की कहानियाँ होती हैं, तो सुनते हुए न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे होठों पे मुस्कान आ ही जाती है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूँ, और मुझे ये कहते हुए आज नाज हो रहा है कि मेरे सामने एक आज ऐसी हस्ती बैठी हुई है जिन्होंने देश के मानचित्र पे एक सुंदर कलाकृति इतने बेहतरीन और इतने लाजवाब रूप से

0: 90 समय से आकृत की है कि आज देश उन्हें पद्मश्री श्री राम किशोर की आज उन्हें देश पद्मश्री श्री राम किशोर छिपा डेरावाल जी के नाम से जानता है। राम किशोर जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: तो आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस व्यस्तता में आप माउंट आबू आए, हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए, इसके लिए तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के?
1: यहाँ पे मैं तो बगरू से आया हूँ, जो जयपुर के पास में है बगरू, और मेरा काम वहाँ पे है ब्लॉक पेंटिंग का काम है। और वहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ नेचुरल डाइस के ऊपर काम करते हैं, उसको भी हम पर्यावरण को बचा करके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हम लोग। कई लोग हैं जो नेचुरल डाइस के लिए कई प्रदेशों के अंदर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं है ऐसा। राजस्थान में वही होगा कि जो पर्यावरण के जो वेस्ट सामान है, जैसे फ्लोर है किसी की, जैसे आप हमारे राजस्थान में एक बम्बूल होता है, बम्बूल का जो छिलका होता है उसका रंग निकालते हैं, ऐसा कोई भी हम नुकसान नहीं पहुंचाते जिसको पेड़ को हानि हो,
0: प्रकृति को
1: नुकसान नहीं पहुंचाते हम लोग। और उस बिजनेस को ये हमारे पुरखों से चलता आ रहा है।
0: तो आपके पहले कितने लोगों ने आपके परिवार में ये किया है?
1: जब से मेरे सूरज संभाली था हमारे पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते हैं। आज भी हमारे पास जो ब्लॉक हैं वो करीब मेरा ख्याल है 400 साल पुराने ब्लॉक हैं हमारे पास।
0: तो ये जो 400 साल पुराने जो ब्लॉक है, जो ठप्पे हैं, ये न केवल डिजाइन है या कला है, लेकिन साथ में कहानी भी है इसमें।
1: सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊं कि हम हिंदू छिपा हैं, और हमारे परिवार में जो छिपा समाज जो है वो नामदेव जी को मानता है
0: जी,
1: भगवान नाम संत नामदेव।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: उसको मानते हुए हम लोगों की एक प्रथा चल रही है पहले से ही, हमारे बुजुर्गों से ही चल रही है, कि जो भी हम काम करते हैं जिस भी ब्लॉक से, उस ब्लॉक को हम बेचते नहीं कभी जिंदगी में।
0: क्या बात, इसके पीछे का भाव क्या है?
1: हम लोगों का कहना यह है हमारे बुजुर्गों का कि हम जिससे कमा के खाते हैं हम उसको कैसे सेल करें, कैसे बेचें इसको,
0: क्योंकि वो हम
1: जिससे हमारा जीवन दिया है इन्होंने,
0: अन्नदाता है
1: उसको हम नहीं बेच सकते। आज भी हमारे पास हमारे बुजुर्गों के करीब 400 साल पुराने ठप्पे आज भी स्टोर में है, और हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम भी आज तक उनको सबको स्टोर ही कर रहे हैं। जब भी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए प्रेरणा रहेगी तो वो चीज देख करके।
0: तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे किसान के लिए उसकी भूमि उसके सभी आर्थिक नियोजन का साधन है एकमात्र, ऐसे ही जो हमारे ठप्पा के कलाकार होते हैं, जो है ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, उनके लिए उनका ब्लॉक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
1: है
0: जी।
1: और एक ही बात कहते हैं वो तो, कि जिसने हमें अन्न दिया है, अन्नदाता है हमारा, हम उसको नहीं भूलेंगे, ना बेच सकते हैं। इसके अलावा एक काम और करते हैं हम लोग कि साल में दो दिन आते हैं हमारे, एक तो एकादशी आती है जो भी कार्तिक में आएगी, और एक आती है बसंत पंचमी
0: जी।
1: ये हमारे नामदेव जी का एक तो जन्मदिन है और एक
0: पर्यावरण दिन
1: वो है। दोनों दिन हम लोग जितने भी हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनको पूछते हैं,
0: बहुत सुंदर
1: पूजा करते हैं उनकी, पुरानों की नयों की सबकी, साल में दो बार होता है ये।
0: तो राम जी, मुझे ये जानने का मन कर रहा है कि जरूरी नहीं होता है कि जो पिता का व्यवसाय हो या जो काम हो वो बच्चे को भी अडॉप्ट करना है, कई बार इंस्पायर भी होते हैं बच्चे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसी लाइन को फॉलो करे। तो आपको इस छिपा उद्योग में जाने में आपके घर से कोई प्रेशर था या आपके दिल में आया कि नहीं मुझे भी यही करना, क्या कहानी क्या थी आपकी?
1: नहीं, प्रेशर कोई नहीं था परिवार का, और मैंने खुद चुन करके मैंने काम किया है, और अभी जो मेरा बेटा है वो भी इसी काम में लगा हुआ है
0: जी।
1: अभी पोते हैं दो, दोनों इसी काम में है।
0: क्या बात, बहुत बड़े।
1: जो पोता अभी पढ़ के गया है दिल्ली से इकोनॉमिक ऑनर्स, क्या बोलते हैं उसको, वो पढ़ के गया है, उसने यही तय किया कि बाबूजी मैं यही काम करूंगा ताकि ये आगे तक बढ़े। ये जरूर है कि हर समय चेंजिंग आती रहती है मार्केट की, ग्राहक की, तो ये ब्लॉक चेंज होते रहते हैं, तो ये सब चीजें चेंज हो करके हमारी थीम वही है।

0: उसी थीम के ऊपर हम नए ब्लॉक्स, नए डिजाइन। पहले हमारा जो मार्केट था वो देहात में था, आज हमारा मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट है। तो हमें जो तैयार करना पड़ेगा वो सब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। बाकी थीम हमारी वही है जो पहले थी।
1: तो जैसे आपके आपने अपने पूर्वजों को करते हुए देखा और आप भी करना शुरू किए ब्लॉक प्रिंटिंग का व्यवसाय, लेकिन शुरुआत में ये व्यवसाय नहीं रहा होगा आपके लिए। शुरुआत में ये केवल एक खेल या एंजॉयमेंट या इसमें से सुख लेने का, जैसे एक छोटे बच्चे को होता है, ऐसा रहा होगा?
0: नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे तो मेन रोजी रोटी ही यही थी
1: शुरू से ही यही थी। अच्छा,
0: किसी भी और काम के ऊपर, किसी नौकरी के ऊपर या किसी और बिजनेस के ऊपर हमारे बुजुर्ग ना तो कभी गए और ना कभी उन्होंने किया इस काम के अलावा। उन्हीं से हमने सीख करके इसको चालू रखा है पूरा।
1: ये बहुत गर्व की बात है कि जब कोई संस्कृति इस प्रकार से आसपास में अपने लोगों को संजो लेती है, जो संस्कृति को धरोहर की तरह संभाल के रखते हैं, तो वो संस्कृति सेफ रहती है और आगे भी बढ़ती है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कई कारीगर, वो हमेशा हमें ये हम सुनते हैं उनसे कि उनके परिवार में उनके बच्चे चाहते नहीं कि वो कारीगरी करे, चाहे काथा स्टिचिंग हो या समझिए जरदोजी का काम है जिसमें काफी मेहनत है, तो उनके बच्चे सोचते हैं कि भाई ये हमारे पूर्वजों ने किया, अब हम ये नहीं करेंगे, हमें कोई दूसरे प्रकार का जॉब करना है, या इसमें हमें वो रोजी रोटी नहीं दिखती या वो इसमें संपन्नता नहीं दिखती जिसकी वजह से हम इसमें टिके, और वो धीरे धीरे उस कला को, उस प्रथा को छोड़ के आगे निकल जाते हैं या कहीं दूसरे रास्ते चले जाते हैं। ऐसे में वो कला अकेली हो जाती है या
0: लुप्त
1: हो जाती है। लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग की जो प्रथा आपने संभाली हुई है, आपके पूर्वज और आपके आने, आपकी सारी पीढ़ियां, आपके बेटे आपने जैसा बताया और आपके पोते, ये सभी इस चीज को कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है ये कौन सी बात है जो हर एक को जोड़ के रखी हुई है? क्या वो आपका प्यार है या इस कला के प्रति उनका प्यार?
0: कला के प्रति है सारा
1: जी।
0: उन्होंने ये कह दिया कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम यही काम करेंगे और इसी को संभालेंगे। आपको एक मिसाल बताऊं, जब आपने बताया ना कि बच्चे आके दूसरे लाइन में चले जाते हैं, मैं आपको छोटी सी जयपुर की मिसाल बता रहा हूं। हमारे जयपुर के अंदर ब्लॉक में कर रहे थे, एक उनका एरिया था जयपुर में पुरानी बस्ती के नाम से, गोविंद राजू के रास्ता।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: उसके अंदर वो सारी फैमिलियां काम करती थी। आज ये स्थिति हो गई कि एक भी फैमिली वहां पे नहीं है और एक भी फैमिली वो काम नहीं कर रही है। जो अभी आपने बताया कि बच्चे सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं है तो दूसरी लाइन में निकल गए सारे। आज हमारे जयपुर में जयपुर के जो ब्लॉक मेकर थे वो तो ये काम कर नहीं रहे, और जितने भी जो बाहर से जो लोग आए हैं, फरुखाबाद से, यूपी से, जितने भी जो लोग इसके कारीगर थे वो सब आकर के जयपुर, संगानेर, बगरू, सब जगह ब्लॉक का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुझे इसलिए याद आ गई कि जब आपने कहा कि ये रोजगार के लिए आने वाले जो बच्चे हैं वो उनको अडॉप्ट नहीं किया,
1: तो इसका मतलब कोई निष्ठा से अगर पथ पे चलता रहे तो रोशनी उसके सामने आई जाएगी।
0: बिल्कुल, आदमी अगर एक लाइन से और ईमानदारी से अगर चलता है तो उसको दुनिया कोई रोक ही नहीं सकती,
1: जैसे आपको नहीं रोक पाए, क्योंकि आज भारत देश ने आपको पद्मश्री से नवाजा है। इसका मतलब न केवल आपकी कला को लेकिन आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा को भी नवाजा।
0: निष्ठा और ईमानदारी
1: को जी।
0: सबसे पहले ये देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से
1: जी
0: कि जब भी हम किसी ग्राहक को हम सामान देते हैं या उससे उसको देते कसदत बना के देते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ग्राहक से हम बेईमानी करेंगे तो आप सोच, हम ये सोचते हैं कि हम भगवान से हम धोखा कर रहे हैं। है तो एक भगवान है हमारा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
1: और बेईमानी करना मतलब खुद से भी तो धोखा करना है।
0: भगवान हमारे भगवान से धोखा कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये काम मैंने तो जिंदगी में सीखा नहीं और ना मैंने किया, ना मैं जीवित हूँ तब तक करूंगा।
1: तो ये जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है अंदर में सत्य पथ पे चलने की, ईमानदारी से कार्य को करते रहने की, ये आपका जीवन काल आपने बहुत लंबे समय से देखा है, बहुत आप अनुभवी भी हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ईमानदारी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, ऐसा लोगों के मन में आ ही जाता है, और लोग कहते हैं ईमानदारी से नहीं होता है, ऐसे भी डायलॉग सुनने को मिलता है।
0: करते हैं।
1: तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि आपने एक अनुभवी जीवन आपका है, आपने उस अनुभव के

0: ईमानदारी के दम पे आज देश में आपने अपने कला का नाम रोशन किया है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी आदमी जिस क्षेत्र में है, चाहे वो आर्ट क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आईटी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर ईमानदारी से काम करेगा तो वो सफल रहेगा, दुनिया में कोई उसको रोक नहीं सकता। और जहाँ भी उसने ये सोच लिया मन के अंदर कि मैं इसमें कुछ गड़बड़ करके फिर मैं पैसा कमाऊंगा, तो उसको भगवान भी साथ नहीं देता उस आदमी की। कुछ समय मान लो आप लंबे समय तक नहीं चल सकता वो आदमी, कोई भी किसी भी क्षेत्र का।
0: जी, तो रामकृष्ण जी, आपको कितना समय हो गया छप्पा छिपा इस ब्लॉक प्रिंटिंग के सेवा में? मैं तो सेवा कहूंगा क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे इसके द्वारा।
1: सबसे पहली बात ये बताऊं कि हमें तो सबसे सीखने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। जब भी हम हमारी जो फैमिली में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके खिलौने हमारे ब्लॉक हैं।
0: अच्छा, वो तो बचपन से फिर
1: बचपन से ही ब्लॉक से खेलते हैं वो
0: जी,
1: और उन्हीं से जैसे हम सफाई करते हैं वैसे वो सीखते हैं, मिट्टी में लगा लगा के सीखते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ट्रेनिंग की तो हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर कोई नया काम करेगा तो उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसको अनुभव की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें तो जब पैदा हुए थे तब से ट्रेनिंग चालू हो जाती है हमारी, हमारी फैमिली में, तो ताकि हम कहीं उसमें खा ही नहीं सकते धोखा कहीं, और ना हमें धोखा दे सकता
0: जी।
1: आते हैं लोग देने के लिए, कई धोखा भी देने के लिए आते हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं सारी चीजें।
0: तो जैसे बचपन से लेकर के जब कोई इस रास्ते पे चलता है तो वो तो पक्का ही हो जाता है, एकदम मंज जाता है।
1: बिल्कुल मंज।
0: लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति समझो इंटरेस्ट से आता है आपके पास कि भाई मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग में या ठप्पा छपाई में कुछ करना है, तो आप उसको क्या राय देते, कहाँ से शुरुआत करें?
1: नहीं, उसको क्या करना है, एक तो खरीद के बेचता है, एक बंदे तो वो आते हैं जो हमारे ग्राहक बन के आते हैं। सीखने के लिए कोई नहीं आता, सीखने के लिए जैसे निफ्ट है बच्चों को सिखाने के लिए
0: जी,
1: लेडी यूनियन कॉलेज है दिल्ली, और भी कई लुधियाना कॉलेज है, ये सब जो बच्चे आते हैं वो देखते हैं सीखते हैं
0: जी।
1: सीखने से एक ही लाभ है हम लोगों को जो हाथ से काम करने वाले हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करने वाले हैं, कि आगे चल करके जो बच्चे आज उस चीज को देख रहे हैं वो हमारे ग्राहक हो जाते हैं
0: जी। ये तो बहुत अच्छा होगा,
1: वो हमारे ग्राहक होंगे पक्का। अगर 100 बच्चे देखते हैं तो 10 तो 100% हमारे ग्राहक होंगे, वो भले मेरे से नहीं खरीदे, आपसे खरीदे या और किसी से खरीदे,
0: लेकिन
1: उस कला के वो प्रेमी
0: हो जाते हैं। बिल्कुल, उस कला के वो प्रेमी
1: हो जाएंगे, तो इससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और यही काम हो रहा है
0: जी।
1: आज भी जो हमारे पास जो निफ्ट से बच्चे आते हैं, कई ने अपनी दुकानें खोल ली है, कई ब्यूटी खोल रखी है, वो सब आती है, हम आपके आके गए थे और हम देख के गए थे, आज मैंने ये शॉप खोल ली, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब चीजें चाहिए, और वो भी आप ही की चाहिए मुझे।
0: तो इसका मतलब कोई भी कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, चाहे वो सीख करके शुरू करे, चाहे वो इसके मार्केटिंग चेन में कहीं पर अपना रोल देखे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रिंटिंग, जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, जिसमें हाथों के द्वारा जो भाई बहने हैं वो हाथों के द्वारा किसी ठप्पे के डिजाइन को छापते हैं कपड़े पे
1: जी
0: जी, और इसके द्वारा फिर उस कपड़े को चाहे वो बेडशीट हो या साड़ी हो या कुर्ता हो या जिस भी तरीके के
1: एक्सपोर्ट भी करते हैं
0: ये बनाते हैं। बाकी इसमें जनरली जो मोटिव्स आप यूज करते हैं, जो डिजाइन यूज करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं?
1: डिजाइन कुछ तो हमारे ट्रेडिशनल है,
0: जैसे कि
1: जिनके नाम भी आज भी परमानेंट ही है, जैसे हमारी 9-10 बूटियां हैं जो पहले देहात में चलती थी, वो सारा घाघरा पहनती थी, और शायद आप देखा
0: जी,
1: देखा
0: जी,
1: मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो घाघरा पहनती थी पहले, हमारा मार्केट सिर्फ देहात के लिए था, तो उसमें जो बूटियां वो लिमिटेड होती थी, वो भी कास्ट वाइज,
0: मतलब वो बूटे और उस कपड़े पे छपे बूटों को देख के
1: कलर और बूटी
0: जी
1: दोनों कास्ट वाइज छपाई करते थे हम लोग। तो आज भारत सरकार ने जो बना रखा है, ये SC है, ये OBC है, ये ST है, ये जनरल है
0: जी।
1: उसी हिसाब से पहले हम लोग, हमारे चार रंग थे पहले,
0: कौन कौन से?
1: एक तो हरा धनिया
0: जी,
1: एक तो आसमानी जो ब्लू रंग जिसको बोलते हैं इंडिगो,
0: तो वो नील से निकालते थे,
1: नील से,
0: और हरा धनिया हरे धनिया से ही निकालते थे,
1: इंडिगो और हल्दी से।
0: अच्छा,
1: हरा हो जाता
0: है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल,
1: दोनों को मिक्स करते हरा हो जाता
0: है,
1: तो उसको बोलते थे हमारे।

0: अलग दोनों।
1: तो आज भी वैसा करते हैं या कुछ अलग हो गया है अभी?
0: आज वो ग्राहक भी नहीं है हमारे पास, और बनाते तो है लेकिन उसके अब यूज दूसरा हो गया
1: जी।
0: कुर्तियां बनाने लग गए, पैंट बनाने लग गए लोग।
1: तो जैसे आपने बताया कि 9-10 फुटिया ये एक पुराना कास्ट है आपका, मोटिफ है, ऐसे और कुछ कुछ नाम बता सकते हैं?
0: हाँ, बूटियों का नाम मैं बता दूंगा सारा। देखो, एक तो केड़ा, एक पतासी, एक बेवड़ा।
1: अच्छा, बेवड़ा क्या है?
0: एक बुधोली।
1: बुधोली क्या है? तो ये सारे नाम ही इतने इंटरेस्टिंग है, मैं समझता हूँ हमारे श्रोता जो है वो जरूर ब्लॉक प्रिंटिंग के कपड़े पहनते भी होंगे या फर्निशिंग होम फर्निशिंग में यूज भी करते होंगे, लेकिन हो सकता है उनको इनका नाम ही नहीं पता।
0: बूटियों का नाम पता नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारे जो ग्राहक भी आते हैं, वो जो होलसेलर भी जो आते हैं, वो कभी बूटियों का नाम नहीं पूछते। वो सिर्फ डिजाइन नंबर लिखते हैं अपने और उसी हिसाब से माल खरीदते।
1: तो कोई ऐसा किस्सा आपके जहन में है जहाँ पर किसी व्यक्ति को आपके डिजाइन से प्यार हो गया और डिजाइन को वो उस नाम से जानता हो या याद करता हो? आपके जहन में ऐसा कोई व्यक्ति है?
0: पहले थे।
1: अच्छा,
0: अभी नहीं है। पहले हम जो देहात में बेचने जाते थे तो हमारे वो कपड़े के दलाल रहते थे बेचने वाले, वो ग्राहक उनके पास आते थे, वो हमसे हाथ के हाथ खरीद के उनको देते थे
1: जी।
0: तो वो सब जानते थे ये बुदोली की चाहिए या जमरदी में चाहिए या बेवड़े में चाहिए या केड़ की चाहिए या पतासी चाहिए। एक पत्ती की और आती है, मिट्टी की आती है, एक गोभी की आती है, एक आकड़ा आता है, ऐसे 9-10 बूटियां हैं। वो लोग सब जानते थे, खरीदने वाले भी जानते थे और हमारे जो बीच के दलाल थे वो भी जानते थे। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज पूरा ही पैटर्न बदल गया।
1: लेकिन फिर भी आप जब कह रहे हैं तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है ये सुनने में। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको मास्टर क्लास लेना चाहिए या कुछ करना चाहिए जिससे ये प्रथा भी रहे, ताकि हमको हमारा धरोहर थोड़ा याद रहे। इसमें इतना इंटरेस्ट है, इतनी अनोखी अनोखी बातें हैं कि ये सुनते रहो तो ऐसा लगता है समय कहाँ चला जाए, पता ही नहीं। लेकिन ये चीजें
0: नहीं, इसको संस्थाएं जो बड़ी बड़ी है जो काम कर रही है उनको एक सब्जेक्ट इसका भी रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: जिससे दो काम होगा, एक तो देखो रोजगार मिलेगा लोग, सबसे पहले बात जो हमारे देश में सबसे बड़ी एक समस्या जो बनी हुई है
1: जी,
0: उसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं सरकार की। दूसरी बात मार्केटिंग की, मार्केटिंग होगी उनको रोजगार मिलेगा।
1: ये कितनी जबरदस्त बात है कि आप कहने को आपका लाइफ सेटल है लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे अच्छे रोजगार के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, समझा रहे हैं जिससे दूसरों को का लाइफ सेटल हो सके, ये आपके उदार दिल का प्रतीक है।
0: जी, रोजगार तो भारत को चाहिए। भारत में आज कितनी बेरोजगारी फैली हुई है, लोग कह रहे हैं, देख भी रहे हैं हम लोग, लेकिन इससे जितनी भी बड़ी जो संस्थाएं हैं, चाहे सरकार के संबंधी हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, उनको एक सब्जेक्ट इसका रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: चाहे 2 दिन का रखे या 4 दिन का रखे, या तो सेमिनार रखे या उसको बाई डेमो के हिसाब से रखे
1: और
0: लोगों को देखे।
1: जी, और मैं तो समझता हूँ कि मार्केटिंग में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग जिस चीज को खरीद रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जाने।
0: बिल्कुल।
1: किसने बनाया, ये क्या चीज है, ये मैं क्या ले रहा हूँ, व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इन, ये उनको पता होना चाहिए।
0: ये सारी संस्थाएं कर सकती है। हम लोग कारीगर हैं, कारीगर हम लोग इतना
1: आपके पास समय भी नहीं होता होगा, ये
0: पैसा भी नहीं लगा सकते। देखो ना, आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा भी नहीं लगा सकते, सरकार मदद भी करती है लेकिन सरकार एक अपने उसमें दायरे में
1: जी,
0: दायरे से ऊपर जा नहीं सकती सरकार। प्राइवेट जितने भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो अगर सही ढंग से तरीके से इसको करना चाहे तो मैं कह रहा हूँ कि खेती के बाद में, एग्रीकल्चर के बाद में दूसरा नंबर हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का आएगा।
1: भाई साहब, मुझे यहाँ पर एक चीज जानना था कि जैसे चमक दमक की दुनिया है, ठीक है, लोग डिजिटल प्रिंटिंग, केमिकल प्रिंटिंग, उसके कलर्स, उसके चकाचौंध, उसकी ब्राइटनेस, इन चीजों की वजह से लोग बहुत जल्दी उसको ले लेते हैं, प्लस वो सस्ते भी पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग चाहते तो हैं कि भाई वो ब्लॉक प्रिंटिंग के प्राकृतिक रंग से निकले हुए चीजों को खरीदें, लेकिन दाम और ये कलर्स का जो ब्राइटनेस है, ये सब में कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे तो करे क्या करे।
0: पिछले 20 साल से
1: जी
0: लोगों का मेंटेलिटी ये बन गई है, यूज एंड थ्रू,
1: बस इस्तेमाल करो और फेंक दो,
0: इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो इसके लिए

0: ब्लॉक पेंटिंग नहीं जा सकती उसमें
1: जी।
0: जैसे डिजिटल पेंटिंग है, स्क्रीन पेंटिंग है, वो बहुत सस्ती पड़ती है और हमारे भारत में महंगा खरीदने वाले बहुत कम है।
1: इस मानसिकता को कैसे बदला जाए कि यूज करके फेंकना नहीं है, इस्तेमाल करके फेंकना नहीं है, क्योंकि ये मानसिकता जो भाई साहब मैंने देखा है कि सबने देखा होगा, हमारे रिश्तों में भी आ गया है कि हम रिश्तों में भी किसी से कुछ लेते हैं और फिर उसको किनारे कर देते हैं, और ये चीज हम हमारे जीवन में लाइफस्टाइल में खरीदारी में भी कर रहे हैं, हम वो चीज खरीदते हैं, यूज करते फेंक देते हैं, इस मानसिकता को कैसे बदला जाए?
0: नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन गई यूज एंड थ्रो। जैसे आज किसी ने ब्लॉक पेंटिंग के अंदर 100 रूपये खर्च कर दिए
1: जी,
0: तो वो 100 रूपये में 4 लेगा अभी और हर वक्त वो नया पहनेगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि ये डिजिटल है, अंदर कौन सा है, मेरा शरीर को हानि पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा, ये उसको पता नहीं है। वो तो एक बार पहनना है और उसको फेंकना है, ये मेंटेलिटी। और हमारे विदेशों से काफी मेंटेलिटी आ गई लोगों में अभी, अगर हमारी ये मेंटेलिटी थी हो मेरा ख्याल है काफी इसमें रोजगार की व्यवस्था हो सकती है।
1: तो
0: दूसरी बात एक और बताऊं आपको कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सारे तो पैसे वाले नहीं है,
1: हर प्रकार के लोग
0: हैं
1: जी।
0: अब मैं 500 रूपये रोजगार कमाता हूँ तो मैं 5,000 की बेडशीट नहीं खरीद सकता, मैं 100-150 रूपये वाली बेडशीट ही खरीदूंगा, क्योंकि उसको बेडशीट चाहिए शाम को बिछाने के लिए। 5,000 का वही खरीदेगा जिसके 1,00,000 रूपये रोज की कमाई है, वो 5,000 की बेडशीट खरीद लेगा। तो हमारे भारत के अंदर सब तरह के लोग हैं और सब तरह की पेंटिंग होती है, जो इसको जानने वाले हैं वो तो इसी को खरीदते हैं, कई की मजबूरी है, पैसे नहीं है, ये भी सब बड़ी समस्या आती है ये भी। तो डिजिटल आजकल चल रहा है तो उनके पीछे चल रहा है डिजिटल आज, जिनको जेब अलाउ नहीं करती। अब मैं रोज ही 500 रूपये कमाता हूँ, मुझे बेडशीट तो शाम को सोने के लिए चाहिए ना,
1: बिल्कुल
0: कहाँ से आएगी।
1: तो कई बार ऐसा होता है कि चाहना है कि इस चीज को आगे बढ़ाए लेकिन मजबूरी की वजह से
0: जी, मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से कर दूंगा 1,000 रूपये की बेडशीट।
1: जी,
0: 500 रूपये तो रोज कमाता हूँ, उसमें मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है, उनको सबको रोटी चाहिए
1: जी,
0: दोनों टाइम चाहिए रोटी, कहाँ से लाएगा वो।
1: और जो डिजिटल या जो फैक्ट्री से जो डिजाइन निकलते हैं वो इतने फास्ट निकल जाते हैं, जो कि एक टाइम सप्लाई चेन का होता है उसमें उनको जल्दी मिल रहा, तो वो ले लेते हैं,
0: जल्दी मिल जाता है, उसके बाद भी बहुत सस्ता मिल जाता है। तो अभी जो शहरों में ये कि रिवाज नया आ गया यूज एंड थ्रो वाला, जैसे अमेरिका में पहले किसी जमाने में था एक बार भी यूज करो फेंक दो, अब हिंदुस्तान में भी आ गया है एक बार यूज करो उसके बाद फेंक दो।
1: लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में ये कभी नहीं था,
0: भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं था कभी, ना हमने किताबों में पढ़ा है,
1: ना हमारे
0: सुना है, ना हमारे बुजुर्गों ने कहा
1: है। जी जी, तो ये आने का कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है आपके मायने में?
0: मेरे मायने में तो एक ही लगता है कि हम लोग आबादी हमारी जो है इस पे कंट्रोल होना चाहिए।
1: बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त बात कही आपने कि आबादी जहाँ ज्यादा होगी वहाँ पर संसाधन कम होंगे,
0: संसाधन कम होंगे
1: के पीछे फिर आइडियाज लोगों के जाने लगेंगे, फिर ये यूज एंड थ्रो वाली जो
0: ये समस्या खत्म हो जाएगी
1: वो हमने ले ली।
0: तो इस पे अगर कंट्रोल आप और हम तो कर नहीं सकते, सरकार को ही करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि जब तक आबादी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि अभी 2 खुद हैं उसके 4 बच्चे हो गए ये मान के चलिए आप, चारों को पढ़ाई के लिए जगह चाहिए, काम करने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, कमाने वाला एक है, कैसे चलेगा। तो इस पे अगर कंट्रोल हो जाए बेरोजगारी पे कंट्रोल हो जाएगा, ये मेरा मानना है।
1: मुझे इसमें एक चीज आपको पूछना था, जैसे आपने अभी ये चीज बात कही कि ये जो कुछ कुछ अभी हम देख रहे हैं हमारे आज के भारतीय समाज में जो बदलाव आया है वो कभी था नहीं यहाँ पर, कहीं और से आया है, और आपका काम आपकी कला आपको केवल भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी आपको लेके जाती है। तो जब आप भारत में भी घूमते हैं और जब बाहर भी आप जाते हैं, दोनों जगह में जब आप लोगों से मिलते हैं, दोनों अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं से आप रूबरू होते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है आपको लगता है जो भारत को भारत बनाती है?
0: भारत का कल्चर जो है दुनिया में कहीं नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड के अंदर भारत का जो कल्चर है सबसे बढ़िया लगा मुझे।
1: किस कारण से कुछ बता सकते हैं?
0: सभी चीजों में, रहना में, खाने में, मतलब व्यवहार में, हर चीज के अंदर

0: हमारे हर चीज की एक सभ्यता की बात है। हम भगवान को मानते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। हम ईश्वर को जाते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, मंदिर दोग दिखाते हैं, उनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सभ्यता है वो थोड़ा वो आध्यात्म और सभ्यता की वजह से संस्कृति जो है भारत की वो थोड़ी अलग है।
0: अलग है
1: जी,
0: वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं भास्कर ने मुझे भेजा है इसके डेमोस के लिए, उसमें मैं गया था, क्या नाम अपने जो है एक्सपोर्ट, क्या नाम होते एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ आदमी
1: लेकिन आप ज्ञानी है, ज्ञानी का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता।
0: पढ़ा नहीं हूँ बिल्कुल भी, चार क्लास पढ़ी है मेरे पिताजी ने, इसके अलावा मुझे फिर मैंने ही छोड़ दिया
1: जी। अनुभवी और ज्ञानी को पढ़ाई के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। आप
0: वहाँ भी जब यूनिवर्सिटी वगैरह में लेक्चर वगैरह जो रखते थे तो मैं तो हिंदी में ही बात करता था, क्यों मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मारवाड़ी आती है खाली।
1: तो उन लोगों को जब आप भारत की ये सभ्यता और ये कला सिखाते हैं,
0: तालियां बजा के रह जाते हैं।
1: अच्छा,
0: वो इसके अलावा कुछ नहीं करते, वो अपनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है उनको,
1: मेहनत है इसमें बहुत।
0: हाँ, वो तालियां बजा के खूब शाबाशी देके चले जाते हैं, ताकि वो उसकी गहराई में तक कब जाते कि नहीं जाते वो जाने।
1: तो ये जब भारत की सभ्यता कला को आपके द्वारा वो जो प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप उस समय आईना है भारत की कला का, और जब वो उस चीज को सुनने देखने के बाद तालियां बजाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है?
0: फील तो होता है कि अच्छा है हमारा काम, लेकिन वो उसको यूज करे तब ना। किसी की शक्ल देख के मैंने तालियां बजा दी, ठीक है, लेकिन उससे हमारा वो रोजगार तो नहीं बढ़ा ना
1: जी।
0: रोजगार तो तब बढ़ेगा अगर जब वो हमारा सामान खरीदे ताली बजा के, तब उसको रोजगार मिलेगा पीछे
1: जी।
0: तालियां बज जाती है, तालियां बज के वो हलो सलो हो जाती है, जैसे आराम होते हैं।
1: ये बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे एक और सवाल इसमें पूछना था कि आपने बताया पहले चार रंग यूज होते थे, अभी भी आप प्राकृतिक कलर ही यूज करते हैं?
0: प्राकृतिक कलर भी यूज कर रहे हैं, पूरे हमारी थीम वही है काम करने की
1: जी,
0: लेकिन अब नए रंग और आ गए।
1: तो वो नए रंग भी आप प्रकृति से लेते हैं?
0: जो फ्री है, एजो फ्री वाले रंग है
1: जी,
0: जो हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए।
1: अच्छा जी,
0: वो दो तीन रंग यूज करते हैं हम, बाकी हमारा 80% नेचुरल ही है, हमारी शुरुआत ही नेचुरल से होती है
1: जी।
0: जब हम ब्लॉक पेंटिंग शुरू करेंगे तो उससे सबसे पहले उसमें हर्डे लगती है, हर्डे नाम सुना होगा?
1: हाँ जी, हर्डे
0: हर्डे की डाई होती है, उसपे ही हमारा काम चालू होगा, ये चालू होता ही नहीं।
1: अच्छा, इसमें एक और चीज जानना है, मैं बड़ा उत्सुक हूँ और मैं समझता हूँ बाकी श्रोता साथियों को भी सुनने का मन करता होगा कि कई जैसे भारत के राज्यों में भी अलग अलग प्रकार का ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, जैसे दक्षिण भारत में अलग प्रकार का ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, बंगाल साइड में अलग प्रकार का ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, फिर भारत के ही कनेक्शन में जैसे इंडोनेशिया आदि हैं, वहाँ पर अलग प्रकार का ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग आप मतलब आपका जो छिपा समाज है वो कर रहा है, वो उसमें क्या खासियत है, कौन सी अलग बात है जो बाकी छिपा से वो उसको अलग बनाती है?
0: देखिए, जो ब्लॉक प्रिंटिंग का जो काम है पूरे भारत में जहाँ भी हो रहा है, वो सबसे पहले तो इसको पानी चाहिए। आप कभी भी आप सर्वे कर लेना कि जो छपाई का काम करने वाले, चाहे वो हिंदू छिपा हो चाहे मुसलमान छिपा हो, वो सब नदी के किनारे बसे हुए हैं
1: जी।
0: पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाकर देख लो, मछलीपट्टनम में होता है, नदी के किनारे है, बाग है मध्य प्रदेश में, वहाँ छपाई होती है, वो नदी के किनारे है, हम लोग नदी के किनारे हैं, जयपुर जो छपाई होती थी वो नदी के किनारे होती थी, जहाँ भी छोटे गांवों में भी अगर छपाई होती थी वो सब नदी के किनारे होती थी। अब नदियाँ नहीं रही, नदियाँ सब सूख गई, पानी नहीं है, राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी कमी है
1: जी।
0: तो इसलिए हमारा जो छपाई का जो उद्योग है ये भी काफी चपेट आया हुआ है इस समय पानी की वजह से।
1: इसका कारण ये भी हो सकता है कि एक तो पानी की कमी भी है, दूसरा छपाई करने के बाद कपड़ों को धोने से जो वो कलर्स निकलते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करते हैं उस वाटर बॉडी को।
0: नहीं, ऐसा नहीं है, हम जो हमारे जो कलर धुलाई का जो निकलता है उसमें, उससे खेती होती है।
1: अच्छा,
0: एग्रीकल्चर होती है, उसको तो खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती उसको।
1: तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि जो कलर्स आप यूज कर रहे हैं, जो प्राकृतिक रंग आप यूज कर रहे हैं, उससे जमीन को बल मिल रहा है, खेती करने में मदद हो रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कई छपाई के उद्योग अगर सुन रहे हैं इसको और समझ रहे हैं, तो उनको भी ये चीज को समझना चाहिए कि भाई हम

0: कलर्स में वैरायटी लाएं, चेंज करें
1: और नेचुरल से आती है सारी चीजें
0: जी।
1: सब चीज भगवान की दी हुई है। सोच आपका बदलना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए।
0: ये जबरदस्त बात कही आपने कि हर चीज हमारे सामने है, बस सोच होनी चाहिए।
1: सोच होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए
0: जी।
1: सब सजा हुआ है बाजार, अब ये आपको सोचना है या मुझे सोचना है कि मुझे चाहिए क्या।
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही रामकिशोर जी की, सोचते ही दुनिया बनती है,
1: बदलती है,
0: बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बनती भी और बदलती भी
1: जाती है।
0: बहुत अच्छा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: उनको तो मैं एक ही मैसेज दूंगा कि वो हमारे जो ब्लॉक प्रिंटिंग का है वो कपड़ा खरीदे ताकि लोगों को रोजगार मिले। और सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इस रोजगार को आगे बढ़ाए हमारे धंधे को, और इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। बगरू में इस रोजगार में करीब 40,000 लोग लगे हुए हैं।
0: बहुत बड़ी संख्या है,
1: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में
0: जी।
1: तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी आप ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम लेते हो, चाहे बाका हो, चाहे मछलीपट्टनम का हो, चाहे गुजरात का हो, कहीं का भी हो, लेकिन खरीदे ठप्पा छपाई वाला ही। डिजिटल तो बहुत हो गया, डिजिटल तो ठीक नहीं है।
0: तो साथियों, आपने सुना रामकिशोर जी की, आप सबसे ये आग्रह था और सबके प्रति ये मैसेज भी था कि जीवन में कम से कम एक ऐसा कपड़ा, एक वस्त्र या एक छोटा सा कपड़ा भी आप ब्लॉक प्रिंटिंग का जरूर खरीदें, क्योंकि इससे न केवल आप अपने आसपास के लोगों में उस कला के प्रति जागृति ला रहे हैं, लेकिन आप अपने इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से किसी की लाइफ को बहुत बड़ी शक्ति दे रहे हैं और साथ ही साथ देश की धरोहर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये समय है सोचने का कि आपका नेक्स्ट कपड़ा जो आप खरीदने वाले हैं क्या वो ब्लॉक प्रिंटिंग का है, और जरा ध्यान से इस पे विचार कीजिएगा, थोड़ा स्टडी कीजिएगा। आज गूगल है आपके पास, और नहीं तो रेडियो मधुबन के थ्रू हम आपको कुछ न कुछ ऐसी जानकारियां देते ही रहते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस चीज में मैं अपना पैसा, अपना इंटरेस्ट लगाता हूँ, अगर वो किसी के लाइफ को अच्छा बना सकती है तो वो बहुत श्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट है। तो इसी नोट पे रामकिशोर जी, मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा, जिसमें मैं आपको सवाल पूछूंगा और उसको आपको एक शब्द में या एक लाइन में जवाब देना है। ठीक है, आप शुरू करें। शांति क्या है आपके लिए?
1: शांति परमात्मा से शांति मिलती है मुझे।
0: बहुत सुंदर। सेवा क्या है?
1: सेवा जो मैं कर रहा हूँ, देश की सेवा और मेरे परिवार की सेवा जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं उसको सेवा ही मानता हूँ।
0: मतलब जो कर्म है वही सेवा,
1: वही सेवा है।
0: बहुत बढ़िया। मतलब हर कोई जो जो कर्म कर रहा है अगर निष्ठा से करे तो
1: सेवा ही कर रहा है।
0: बहुत बढ़िया। देश क्या है आपके लिए?
1: देश,
0: हाँ जी,
1: देश तो जहाँ पैदा हुए वो हमारा देश है। इस देश में हम पैदा हुए हैं वो हमारा है।
0: अपनापन, देश मतलब अपनापन।
1: हम जब भी बाहर जाते हैं तो सब हमें ये लगता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर कब जाएंगे वापस।
0: हाँ, खींचता है देश।
1: जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उसी से अगर हम नहीं जा सकते कहीं और।
0: बहुत सुंदर।
1: उसी मिट्टी में हमें रहना है।
0: इस देश का आपने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देश मतलब जहाँ बार बार वापस आना ही है। भारत क्या है आपके लिए?
1: भारत एक बहुत अच्छी कंट्री है हमारी, जिसके अंदर कई विविधताएं हैं। वहाँ पे कई व्यापार है, कई हर क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, और हमारी जो संस्कृति है वो सबसे बड़ी एक मजबूती का है हमारा भारत।
0: क्या है? और ठप्पा छिपाई क्या है?
1: ठप्पा छिपाई तो एक रोजगार है जो एक कमेटी के करती है पूरा, उससे उनका घर का पालन पोषण होता है। ठप्पा छिपाई,
0: ठप्पा छिपाई मतलब एक अन्नदाता है।
1: अन्नदाता है हमारा, जैसे काश्तकार के लिए अन्न है वैसे हमारे लिए ये अन्न।
0: जी, आपका ठप्पा छिपाई में जितने भी ठप्पे आप यूज करते हैं डिजाइन के, आपका फेवरेट मोटिव कौन सा है?
1: हमारा फेवरेट मोटिव तो जो हमारी जो बूटियां हैं पुरानी वही है ज्यादातर।
0: तो इसमें भी फिर भी कोई एक ऐसी होगी जो आपके दिल के सबसे नजदीक है?
1: पताशी।
0: पताशी,
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया।
1: और पताशी की मैंने भी मेरे उसमें वेबसाइट पर डाल रखी है।
0: जी, आपका वेबसाइट बता सकते हैं?
1: दे दूंगा आपको। हाँ
0: जी, जी, तो आपके वेबसाइट पे जाकर के हम पताशी जरूर देखना चाहेंगे। और आखिरी सवाल, रामकिशोर छिपा डेरावाल कौन है?
1: ये एक ब्लॉक प्रिंटर है और बगरू में रहता है, और छिपा कम्युनिटी से बिलोंग करता है।
0: आपने बहुत सरल शब्दों में अपना परिचय दिया, लेकिन हमने आपसे बात करते हुए लोगों

0: को सुनते हुए लोगों ने आपके कार्य को देखते हुए समझा है कि राम किशोर छीपा डेरावाल केवल एक ब्लॉक प्रिंटर नहीं लेकिन देश को विश्व के मंच पे प्रिंट करने वाला एक कलाकार है।
1: देश का तो हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा ना
0: जी,
1: अगर देश के लिए नहीं सोचेंगे तो हम कहाँ रहेंगे फिर ये बताओ। इस देश में हम रह रहे हैं उसके लिए तो हर हालत में सोचना ही है
0: जी। इस देश को अपनी कला से पूरे विश्व पटल पे आपने जो छापा है इसके लिए पूरा देश आपका आभारी है। रेडियो मधुबन आपका आभारी है, ब्रह्मा कुमारी का परिवार आपका आभारी है और हम ये सदा याद रखेंगे कि आप देश को अपने हाथों से विश्व के वस्त्र पे छाप रहे हैं।
1: कोशिश पूरी मैं यही कर रहा हूँ
0: जी,
1: कोशिश मेरी पूरी यही है लेकिन होना क्या है आगे वो तो ईश्वर ही जाने।
0: आपका जो मेहनत है और हम सबकी दुआएं आपके साथ है, ये हमेशा आपके साथ ही रहेंगी और आप आगे से आगे बढ़ते
1: अभी तक
0: रहेंगे।
1: तो जितना भी हमने जो सोचा है उतना कोशिश करके पूरा किया है
0: जी,
1: लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो ईश्वर ही जानता है कि क्या करना है उसको
0: जी,
1: हमारे साथ
0: जी,
1: हमें उसके साथ क्या करना है
0: जी,
1: जैसे वो चलाएगा वैसे ही चलना पड़ेगा।
0: बहुत बढ़िया। तो श्रोता साथियों आपने सुना कि हमारे श्री राम किशोर छीपा जी जो कि पेशे से एक ब्लॉक प्रिंटर हैं, लेकिन केवल अपने ब्लॉक प्रिंटिंग की इस विधा को उन्होंने इतने दिल से इतने शिद्दत से निभाया कि भारत देश ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा और उनकी ये कला न केवल देश में नौजवानों को अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में प्रेरणा देती है लेकिन विदेशों में भी जाकर के भारत का नाम वो रोशन करते हैं, वहाँ वो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और जिसको सुनने के बाद विदेश में लोगों को समझ में आता है कि भारत की संस्कृति गांव में बसती है और गांव के लोग भारत को यशस्वी बनाने में एक कदम भी पीछे नहीं। ऐसे हमारे यशस्वी राम किशोर छीपा डेरावाल जी को आज हमने हमारे स्टूडियो में सुना। ऐसे ही एक नए हस्ती के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडियो मधुबन। यशस्वी भारत के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके नए नए लोगों से मिलना और उनसे प्रेरणा लेकर के भारत को यशस्वी बनाने में अपना योगदान जरूर निभाना, ये हमारी आप सबसे विनती रहेगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
2: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। मी स्मिता जयकर आनंदी रहा, आनंद वाटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थे बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए

0: हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार रेडियो श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुणेरी आवाज पर एक खास कार्यक्रम ज्ञान चिंतन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता। आज मैं आपसे सहयोग की शक्ति इस विषय के बारे में बात करना चाहती हूं। सहयोग यानी मिलकर काम करना एक ऐसी अद्भुत ताकत है जो हमें अकेले से कहीं ज्यादा हासिल करने में मदद करती है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता की कुंजी है। सोचिए, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है और आपको उसे पूरा करना है। अगर आप अकेले कोशिश करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा समय लगेगा और थक भी सकते हैं। लेकिन अगर कई लोग मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करें, अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करें, तो क्या होगा, काम आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा, वो भी बेहतर तरीके से। यही है सहयोग की शक्ति। सहयोग सिर्फ बड़े काम पूरे करने के लिए नहीं है बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत जरूरी है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का हाथ बटाते हैं तो घर का माहौल खुशनुमा रहता है और हर चुनौती का सामना आसानी से होता है। एक टीम के रूप में काम करने से नए विचार आते हैं, समस्याओं का बेहतर समाधान मिलता है और उत्पादकता बढ़ती है। हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषज्ञता होती है और जब ये विशेषज्ञताएं मिलती है तो असाधारण परिणाम मिलते हैं। समाज में सामुदायिक कार्यों में सहयोग से हम अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। सहयोग से न केवल बड़े काम पूरे होते हैं बल्कि इसके कई और भी फायदे हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं या कोई हमारी मदद करता है तो विश्वास और अपनापन बढ़ता है। सहयोग करते समय हम दूसरों के अनुभवों और ज्ञान से बहुत कुछ सीखते हैं, जिससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो किसी एक व्यक्ति पर काम का बोझ कम पड़ता है, जिससे तनाव भी कम होता है। इतिहास गवाह है कि महान उपलब्धियां हमेशा सहयोग से ही हासिल हुई है। बड़े बड़े आविष्कार, सामाजिक आंदोलन और राष्ट्रों का निर्माण, ये सब तभी संभव हुए जब लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया। याद रखिए, अकेले हम केवल एक बूंद है लेकिन मिलकर हम एक महासागर बन सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सहयोग की शक्ति को अपनाएं और एक बेहतर, अधिक एकजुट और सफल दुनिया का निर्माण करें। धन्यवाद। रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहे रेडियो पुणेरी आवाज। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
2: अश्विनी
1: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
3: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
1: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते, आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी इज विद अस। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति और आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि जैसे एक सपोजिंग मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं अपना टूटा हुआ हाथ लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर मुझे लेक्चर दे कि बारिश में गाड़ी क्यों चलाया, ऑयल गिरी होती है सड़क पर, इतनी रात को क्यों किया, मैं वो इरिटेट हो जाऊंगा कि भाई साहब आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर होंगे, मुझे आपके पास इलाज नहीं कराना है, मैं जा रहा हूं। तो हम लोग भी यही करते हैं कि बच्चा जब दर्द लेकर आता है उसको उसकी बात सुनने के बजाय उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं।
2: अब या तो है कि बच्चा अपना दर्द लेकर आता है, मतलब बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम में है, उससे कोई गलती हुई है, तो फिर उसकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, फियर में है, हर्ट में भी है, वो पेन लेकर आ रहा है और हम उस टाइम जजमेंटल हो जाते हैं। अब वॉट अगर बच्चा कोई पेन में नहीं है, वो सिंपली अपनी बात लेकर आया है और वो बात उसके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल राइट है, और अगर बच्चा अपनी राइट बात, और ये सिर्फ बच्चा नहीं, एनीबडी, मतलब कोई भी, इट कैन बी हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, बॉस, कोलीग, एनीबडी, जब कोई अपनी राइट बात हमारे सामने रखे और हम उसको रॉन्ग कहें तो कॉन्फ्लिक्ट हैज स्टार्टेड। वी हैव टू अंडरलाइन टुडे आज इस बात को कि अगर खुश रहना है और हम चाहते हैं कि दूसरे भी खुश रहे, तो ये राइट एंड रॉन्ग सारा दिन जो हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, बट हु इज राइट इन दिस, यू नो, कभी डिस्कशन में भी बैठते हैं बट फाइनली हु इज राइट, बिकॉज वी ऑलवेज फील कि एक राइट होना चाहिए ना फाइनली, तो वो एक राइट को ढूंढो कि वो एक राइट कौन सा है। आज मुझे अपनी सोच में और अपनी वोकैबुलरी में भी, शब्दों में भी एक लाइन को चेंज करना है, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग ये हटाकर अब हमें जो लाइन लानी है वो ये, वी आर डिफरेंट, हमारी सोच अलग है, आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन अलग है, आप भी राइट है,
1: अपनी साइड से
2: आप भी राइट है, मैं भी राइट, ये भी नहीं कि अच्छा ठीक है आप राइट मैं रॉन्ग, हर बात में हम एक नहीं रॉन्ग, कईयों को आदत पड़ जाती है, ठीक है आप राइट मैं रॉन्ग, जिनके अंदर हीन भावना होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो बहुत जल्दी कहेंगे दूसरा राइट मैं रॉन्ग, जिसके अंदर
1: मैं तो हूं ही गलत, मैं तो पैदा ही गलत हुई थी,
2: अंदर भी फील करते हैं कि मैं रॉन्ग, एंड ऑल द अदर वन, ठीक है आप रॉन्ग मैं राइट, ईच वन एवरी टाइम इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज ऑलवेज, ये तो मतलब आप कोई भी सिचुएशन में डाल दीजिए। जब काउंसलिंग के लिए दो लोग आते हैं तो काउंसलिंग के टेक्निक में क्या होगा, हम पहले एक की बात सुनेंगे, फिर एक को कहेंगे आप थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, हम दूसरे की भी बात सुन लेते हैं क्योंकि वो अकेले में अपनी बात अच्छी तरह से कहेंगे। पहले जब पहली बार ये करना शुरू किया तो जो व्हेन आई हर्ड द फर्स्ट पर्सन आई वाज लाइक तो बिल्कुल राइट बोल रही है, दिस वाइफ इज एब्सोल्युटली राइट, वो जो कह रही है, उसके हस्बैंड बहुत तंग करते हैं, हस्बैंड ऐसे हैं, उसको समझते नहीं, तो उनकी बात सुनने के बाद आई वुड प्रिपेयर माई माइंड कि शी इज एब्सोल्युटली राइट, अभी

0: जब दूसरे आएंगे अंदर, मुझे उनको बताना है कि उनको क्या क्या चेंज करना है अपने अंदर। लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति आके बैठे और वो अपनी बात बोलना शुरू करे कि लाइक ये भी तो बिल्कुल राइट है, तो व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट, वेयर इज द प्रॉब्लम? ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है, प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम ये, इनको उनका नजरिया नहीं दिखाई देता और इसको उसका नजरिया नहीं दिखाई देता। काउंसलर का रोल सिर्फ ये है कि इन दोनों को, जो ऐसे देख रहे हैं, जिनको सिर्फ अपना राइट दिखाई दे रहा है, इनको थोड़ा सा ऐसे करना है, इसका पर्सपेक्टिव, मतलब इसकी सोच उनको दिखानी है और उनकी सोच इनको दिखानी है, बाकी चीज वो करेंगे दोनों, विच मीन्स एम्पैथी। इसको हम कहते हैं एम्पैथी, जब हम कहते हैं अपनी पोजिशन से हट के अपने आप को दूसरे के पोजिशन में रख के फिर देखो कि उसको क्या दिखाई देता है। आप उस तरफ बैठे हैं, मैं इस तरफ बैठी हूँ, मेरे लिए जो राइट है वो एक कम्प्लीटली अलग सीन है, एंड फॉर मी दिस इज 100% राइट, 100% ट्रूथ, राइट भी नहीं, 100% ट्रूथ, एंड आपका ट्रूथ एक कम्प्लीटली अलग साइड है। अब हम इस चीज पर जीवन भर आर्ग्यू कर सकते हैं,
1: धूलती चेहरे पे और आईना साफ करते हैं।
0: अब करना क्या है इस रिश्ते में, कि दोनों में से एक अपनी पोजीशन से हटके
1: दूसरे
0: की पोजीशन में जाए और फिर देखे और फिर कहेगा अच्छा यू आर ऑल्सो राइट। अब कई बार ये होगा कि हम दूसरे की पोजीशन देख ही नहीं पाते हैं, मुझे क्योंकि इफ आई एम स्टक हियर एंड आई एम स्टक टू दिस चेयर एंड यू आर स्टक टू दिस चेयर, देयर इज नो वे आई कैन सी दिस।
1: अब मैं जो कैमरे से आपको देख रहा हूँ और आपके पीछे क्या है सिर्फ मैं देख सकता हूँ,
0: अब मेरे को क्या करना होगा, अब मुझे क्या करना होगा,
1: या तो
0: यहाँ आना पड़ेगा। अब कई बार मैं नहीं उठकर वहां आ सकती, विच मीन्स मुझे आपकी सोच समझ नहीं आती, आपको क्या दिखाई दे रहा है मुझे समझ ही नहीं आता। ये भी हो सकता है कि जीवन भर मुझे आपकी बात, वो बात किसी एक टॉपिक पे मुझे आपकी बात, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी ओपिनियन समझ ही नहीं आए और आपको मेरी समझ ना आए, विच मीन्स हम अपनी अपनी कुर्सी से कम्प्लीटली अटैच्ड हैं। ऐसे टाइम पर हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, सिर्फ एक, आई कैन नॉट सी व्हाट यू कैन सी, यू कैन नॉट सी व्हाट आई कैन सी, बट आई ट्रस्ट दैट व्हाट यू आर सेइंग इज द ट्रूथ, दैट्स ऑल। मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका, आपको नहीं समझ में आ रहा मेरा, इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो आपके लिए संपूर्ण सत्य है और संपूर्ण सही है। ये रिस्पेक्ट चाहिए। मुझे नहीं दिखाई दे रही आपकी बात, मैं कितना भी ट्राई करूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों, यू नो समटाइम्स वी ट्राई टू थिंक फ्रॉम द अदर पर्सन साइड, क्या सोचकर ऐसा किया होगा, उस टाइम ऐसा नहीं सोचा, अच्छा ऐसा सोचा, बट कैसे ऐसा सोचा, मतलब दूसरे की सोच नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आए,
1: कोई बात भी क्यों
0: सोचे दूसरे को समझने के लिए, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू,
1: ठीक है। दूसरे को समझने का भी एक, उसकी भी एक लिमिट होती है, दूसरे को समझने की,
0: वेरी इंटरेस्टिंग,
1: दूसरे को गलत समझने के लिए सोच रहे हैं।
0: ये अगर हम सारा दिन में ये भी करके देखें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कई बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, ट्राई टू गेट इन टू द अदर पर्सन माइंड।
1: अभी मैंने ऐसे उंगली की थी तो मैंने सोचा पीछे के कैमरे में मेरा शायद हाथ आए तो आपको कवर ना हो जाए, तो कैमरामैन ने ये सोचा कि मैंने बोला कि उसके भरोसे, भगवान के भरोसे,
0: तो
1: मैंने उंगली उठाई यूं
0: हाँ।
1: कि आवाज प्लेन जा रहा है, प्लेन की तुम्हें आवाज आ रही है के ऊपर, और मैं बार बार ऐसे दिखा रहा हूँ तो वो समझ रहे आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि भगवान के भरोसे, भगवान बता रहे हैं वो,
0: तो
1: कौन राइट है, कौन रॉन्ग है,
0: अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये सारा दिन में हम करके देख सकते हैं कि अपनी सोच से दूसरे को नहीं एनालाइज करें, दूसरे के मन में घुसकर देखने की कोशिश करें कि वो कैसा सोचता होगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम।
1: लेकिन मैं तो यहाँ हंस दिया
0: हाँ।
1: लेकिन फिर मैं ये भी सोच सकता था ना, मैं यूं यूं बता रहा हूँ तुमको सुनाई नहीं देता कि ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है, ये का मतलब क्या मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं तो एयरक्राफ्ट सुना रहा हूँ तुमको, मतलब झगड़ा शुरू हो सकता है किसी भी बात, और मैं हल्दी होने
0: हाँ, तो क्योंकि आपने कहा अच्छा आपको ये लगा, बट एक्चुअली तो मैं ये कह रहा था, सिंपल
1: नहीं, मुझे फनी लगा कि मैं एयरक्राफ्ट बता रहा हूँ वो भगवान बता रहे,
0: लेकिन वो सही है ना,

0: ये जो बात है ना संस्कारों वर्ष, उसमें सबसे अच्छी मुझे ये लगती है कि भाई पास्ट कार्मिक अकाउंट, जब इसकी एक लाइफ अलग है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरी बेटी ये करे, मेरा बेटा ये करे, मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है, मेरी बेटी उसको बुद्धि क्यों नहीं है, पूजाएं कराओ, फलाने के पास ले जाओ, इससे अब उसका भी एक कार्मिक अकाउंट है ना, उसकी उसका जीवन अलग है ना,
1: एंड अगर
0: मैं कैसे बना सकता हूँ उसके जीवन
1: बिल्कुल नहीं, पर मेरा रोल क्या है, मेरा रोल है अब उनको गाइड करके, उनको एम्पावर करके, एक उनके लिए जो सही दिशा है उस पर जाना। लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि इस क्षण वो जैसे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना। एंड एक्सेप्ट करना मींस उनकी सोच, उनके ओपिनियन पर क्रिटिकल नहीं होना। ये जो एनर्जी जाएगी, ये एनर्जी उनको, उनके संस्कार को, उनके कार्मिक अकाउंट को एक्सेप्ट करेगी और नेक्स्ट क्षण उनको एक अलग दिशा में लेके जाने के लिए गाइड भी करेगी, ये भी करेगी। अगर वी वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इफ वी वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट, वी विल हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट द प्रेजेंट। टिल आई रेजिस्ट द प्रेजेंट आई कैन नॉट चेंज द नेक्स्ट मिनट।
0: आप जरा ये समझाएंगी बात,
1: अगर मुझे आपके अंदर कोई बात अभी ठीक नहीं लग रही, सपोज, एंड मुझे आपको एज अ फ्रेंड गाइड करना है या एडवाइस देनी है कि नेक्स्ट क्षण हम ऐसे कर सकते हैं, यू नो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे करके देखें तो मे बी इट विल डू अ वंडर फॉर यू। लेकिन नेक्स्ट क्षण, नेक्स्ट मिनट में एक चेंज लाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, चेंज लाना है ना, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कैसी चाहिए? हार्मनी की, रिस्पेक्ट की, ट्रस्ट की, प्यार की, तब कुछ चेंज आएगा, वेदर इट्स चेंज फॉर माई सेल्फ और चेंज फॉर अनदर पर्सन। लेकिन वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए मेरा प्रेजेंट मोमेंट कैसा होना चाहिए? स्टेबल। अगर मैंने इस मिनट रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रिजेक्शन क्रिएट किया, तो प्यार, रिस्पेक्ट ये ब्लॉक हो गया। जैसे ये ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट मिनट में जो चेंज मुझे लाना है वो नहीं आएगा, दैट विल नॉट कम। तो फर्स्ट मिनट में, हर क्षण, मे बी नेक्स्ट मिनट ओनली वी हैव टू चेंज, लेकिन इस मिनट एक्सेप्टेंस मीन्स यहाँ पे स्थिरता, एक्सेप्टेंस मीन्स स्टेबिलिटी, मीन्स ऐसे ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, क्यों, क्या, कैसे, स्टेबल रहकर यूज दैट एनर्जी टू क्रिएट चेंज फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर अदर पीपल, फॉर योर सेल्फ।
0: फॉर योर सेल्फ
1: मीन्स अभी मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज होना है, आई रियलाइज्ड दिस इज नॉट द वे, दिस इज द वे। तो पहले मुझे इस मोमेंट को, इस गलती को, अपनी इस कमजोरी को पहले एक्सेप्ट करना होगा कि यस दिस इज इट, लेकिन उस क्षण मेरे लिए वो राइट था।
0: जैसे मुझे हर बात पे गुस्सा करने की आदत है तो क्या एक्सेप्ट करूं इसमें?
1: क्यों, मेरे संस्कार है, मैंने पास्ट कैरी फॉरवर्ड किया है, वो मेरा बहुत डीप रूटेड संस्कार है, आई अंडरस्टैंड इट नाउ। पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूं।
0: पनिशमेंट में ही बिलीव करता था कि आई एम गोइंग टू पनिश माइसेल्फ, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आज मैंने ये गलती कर दी।
1: नहीं चेंज होगा संस्कार, मीठा नहीं खाने से या खाना नहीं खाने से संस्कार नहीं चेंज होगा।
0: पनिश नहीं करना है अपने आप को,
1: पनिश विल नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज, पनिश नहीं करना, एक्सेप्ट मेरे अंदर ये संस्कार है एंड इट्स ओके।
0: बचपन से जब एनसीसी, एसीसी और मिलिट्री जो भी है हम लोग करते थे स्कूल में, 5 मिनट लेट आते थे 3 राउंड रन, और 10 मिनट लेट आए 5 राउंड रन रन रन। पनिशमेंट तो हर एक चीज की मिलती थी, स्टैंड अप ऑन द बेंच क्लास में बात किया ये, तो पनिश पनिश पनिश पनिश, फिर बाद में सुनते थे गॉड पनिशेज यू, तो पनिशमेंट की इतनी आदत पड़ी हुई ना।
1: पनिशमेंट का जो तरीका है, जो हम बच्चों के साथ भी करते हैं, होमवर्क नहीं किया बेंच पे खड़े हो जाओ, ऐसे कान पकड़ के क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, लेट मी आस्क माई सेल्फ व्हाट इज द इंटेंशन, लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं हम? चाहते हैं कि जो आज हुआ, जो इस बच्चे ने आज किया या जो मैंने आज किया, वो दूसरी बार फिर से नहीं होना चाहिए, यही चाहिए ना, लक्ष्य तो क्लियर है ना, व्हाट हैपेंड शुड नॉट हैपन अगेन। अब अगर वो छोटी बात है कि होमवर्क नहीं किया या कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसे कर दिया।

0: ऐसा क्या, हस्बैंड ऐसा, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बच्चे को हम ये कह रहे हैं कि जो तुम फील कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, तुम सही हो।
1: साथ ये भी सिखा रहे हो कि तुम बार बार एक चीज को बर्दाश्त करते जाओगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी तुम्हें बोलने की, कभी फाइट फॉर योर राइट।
0: तो ये हमने कौन सी एडवाइस देकर वापस भेज दिया,
1: और झगड़ा करो।
0: हमने एक्चुअली, हमें लगता है कि हमने पावरफुल बना के भेजा, बट एक्चुअली हमने कमजोर बनाकर वापस भेज दिया। हम अगर एडवाइस थोड़ी भी इधर से इधर हो जाए तो उसका रिजल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। हमें लगता है हम उसको पावरफुल बनाकर उसके घर भेज रहे हैं। पावर इज नॉट हियर कि वो जो बोलेगी जो करेगी, पावर इज हियर।
1: मदर मेरी साइड लेते हैं लेकिन डैडी मेरे हस्बैंड की साइड लेते हैं,
0: एंड वो अच्छे नहीं लगेंगे। जो हस्बैंड की साइड लेंगे या जो मदर इन लॉ की साइड लेंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसमें साइड लेने की भी बात नहीं है, क्योंकि साइड भी तब ली जाए जब हम कहें अच्छा बच्चे तुम रॉन्ग हो, तुम्हारी मदर इन लॉ राइट है, वो भी तो बात राइट नहीं है। सच क्या है, तुम भी राइट हो, तुम्हारी मदर इन लॉ भी राइट है, तुम भी राइट हो, तुम्हारे हस्बैंड भी राइट है, तुम भी राइट हो, तुम्हारा बच्चा भी राइट है। अब जो आपके पास एडवाइस लेने आया है, सपोज आपकी डॉटर आपके पास एडवाइस लेने आई है, तो आपका रोल है बात को सुन लेना। पूरी बात पहले सुनो, अगर सुनेंगे नहीं तो सामने वाला आपको सुनने के लिए रेडी नहीं है। पहले सब सुन ले, सारा सुन ले जब तक वो अपना खाली कर ले अंदर बात, और उसके बाद एडवाइस मीन्स आप बिल्कुल सही हो। व्हाट यू आर सेइंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको तकलीफ हो रही है ना उस घर में, आपको ये सब हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल राइट हो। लेकिन एक मिनट के लिए क्या हम उनका साइड देखें कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। एक मिनट उनका देखें दृष्टिकोण। पेरेंट का रोल है या जो फैसिलिटेटर काउंसलर है उसका रोल है इनको दूसरे का पर्सपेक्टिव दिखाना कि वो भी कैसे राइट है, फिर उनको दोनों को छोड़ देना। अब वो बात को वो लोग ठीक करेंगे, थर्ड पर्सन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट चेंज रिलेशनशिप्स, वी कैन नॉट चेंज कार्मिक अकाउंट्स, ये हमारा रोल नहीं है, क्योंकि वो दो आत्माओं का बात।
1: लास्ट का क्या था, दोनों को अपना अपना,
0: दोनों को जैसे बेटी है उसको आप मदर इन लॉ का पर्सपेक्टिव दिखा के फिर आपको छोड़ देना होगा।
1: यानी कि अगर आप उसकी एक गलती बताओगे मुझे, हाँ, तो उसकी लिस्ट में मांगो, हाँ, तो वो आपकी 10 बताएगी, तो दोनों के पास लिस्ट है।
0: है तो दोनों को ये दिखाना। सपोज बेटी कहे कि मैं सास के साथ इतना एडजस्ट कर रही हूँ, मैं ये भी एडजस्ट करती हूँ, मैं वो भी, तो फिर आप उसको बताओ आपको पता है आपकी सास आपके साथ कितना एडजस्ट करती है, वो आपकी इस बात के साथ भी एडजस्ट करती है, वो आपकी इस बात के साथ भी, उसने कितनी सारी बातें आपकी सहन की है। दिस ये दूसरा पर्सपेक्टिव, रादर देन से अच्छा तुम इतना एडजस्ट करती हो, तुम्हारे ऊपर इतना वहां पे टॉर्चर होता है, दिस इज दिस एम्पावरमेंट। अब दोनों को दिखाकर, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट उनका है, रिजोल्व भी उनको करना है, हम एक ही चीज तरफ कर सकते हैं, इनको उनका दृष्टिकोण दिखा दे और उनको ये सिखा दे कि आपके दोनों की एनर्जी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप अच्छे थॉट क्रिएट करो, वो भी वहां से अच्छे थॉट क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ये करके दोनों को छोड़ दो, द रेस्ट दे विल डू।
1: थैंक यू सो मच, लेट अस हैव गुड थॉट्स फॉर ईच अदर एंड फॉर द यूनिवर्स।
0: थैंक यू, ओम शांति।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
2: व्हेन द अदर पर्सन इज राइट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव and we feel they are wrong, conflict has begun. Two souls are different, not right or wrong. Each is always right from their perspective. Empathy means to detach your own perspective and see the situation from the perspective of the other person. This creates understanding and compassion. Even if we cannot understand the other person's perspective, let us always remember that what they are saying is the truth for them. This is the first step towards conflict resolution. Accept your negative sanskar or the sanskar of the other person. Acceptance means

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ ढोल।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी। आप आज 107.8 FM पर खाबो का सफर, मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा सा रेडियो प्रोग्राम जिसे आप सुनते हैं, जहां पर 50s और 60s के ओल्ड मेलोडीज को आप सुनते हैं। तो ये आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विद्या चौधरी भी हैं, जो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन गानों का लेकर हमारे साथ बैठी है। तो मैं चाहूंगा आप सभी की तरफ से विद्या का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगा विद्या चौधरी, सबसे पहला कौन सा गीत आज के शो में आप सुनाने वाली है, बताइए।
1: नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ अभी शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। तो मेरा पहला गाना है अभी आज डी अक्षर से, हम जैसे कि अभी गाने सुन रहे हैं, तो मेरा पहला गाना है वो है देवर फिल्म का, जो 1966 में आई थी, लता मंगेशकर जी की आवाज में है, आनंद बख्शी जी का संगीत है, जिसमें बहुत ही प्यारा एक बात कही गई है कि अगर मतलब इस दुनिया में सबका नसीब ऐसा नहीं होता कि सबके साथ अपने पिया के साथ हमेशा अपना प्यार हमारे साथ रहता है, ऐसा नसीब तो सबका नहीं होता। यही है ये गाना कि दुनिया में ऐसा कहा सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। तो आइए सुनते हैं डी अक्षर के ऊपर से हमारा ये अगला गाना।
0: ओके विद्या, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है शुरुआत में कार्यक्रम के, और 1966 का देवर फिल्म का ये गाना जो है उस समय बहुत पॉपुलर रहा, और ये कहीं न कहीं हमारे दिल के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दुनिया में ऐसा कहा सबको नसीब है, जो चाहते हैं वैसा प्यार उन्हें मिले।

तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को, उसके बाद फिर मिलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खामोखा सफर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और विद्या चौधरी ने बहुत ही प्यारा सा गीत हम सभी को सुनाया है और कहते हैं, करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे, रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियां इतनी कि टूट जाए उम्मीद मगर रिश्ते बरकरार रहे। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। तो विद्या, कौन सा एक और गीत आपके पास है अभी?
1: अभी हमारा अगला गाना जो है ना, वो मदर इंडिया फिल्म से है, 1957 में आई थी ये फिल्म। तो इस गाने के पहले दो लाइन में ही इसका पूरा अर्थ समाया हुआ है, पूरा मीनिंग है इस गाने को, कि दुनिया में अगर हम आए हैं तो इसको तो जीना ही पड़ेगा, और अगर ये जहर है जिंदगी तो ये पीना ही पड़ेगा। तो यही है ये गाना जो मदर इंडिया फिल्म से है, लता और उषा मंगेशकर जी के आवाज में है। थोड़ा सा इसको सुनाना चाहूंगी।

0: 01, 02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: विद्या, बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। मदर इंडिया का ये खूबसूरत गाना जो उस समय बहुत पॉपुलर था, 1960 से लेकर 80-90 तक ये गाना मशहूर हुआ था और लोग इसे जहां तहां सुना करते थे। और ऐसा लगता था जब भी बाजार में जाते हैं, अगर कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान होता तो उसमें भी यही गाना हम सुना करते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और गीत के बारे में। तो विद्या, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: तो अभी अगला गाना है उजाला फिल्म से, 1959 का है ये। जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं ना, तो ये दुनिया वाले उन पर बहुत ही जलते हैं। उनकी लव स्टोरी में कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो यही है गाना कि दुनिया वालों से दूर, इन जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर। ये गाना है ये, जब उनको लगता है कि इन दुनिया वालों से कहीं दूर भाग जाना चाहिए अभी, और दोनों कहीं दूर खुश रहना चाहिए। तो यही ये गाना है हमारा अगला गाना, माला सिन्हा और शम्मी कपूर के ऊपर पिक्चराइज है, शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक है। तो सुनते हैं हमारा डी अक्षर के ऊपर से ये अगला गाना।
1: ओके, 1959 का उजाला फिल्म का ये गाना शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ, बहुत ही प्यारा सा है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। जब हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो प्यार हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि कोई एक नई दुनिया में जाकर रहे और जहां सिर्फ प्यार ही प्यार हो। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर और गानों का बहुत ही खूबसूरत सिलसिला चल रहा है जो अक्षर डी से शुरू किया था हमने और उससे प्यारे प्यारे गीत 50s एंड 60s के सुन रहे हैं। तो विद्या, अब कौन सा गीत आपके पास है?
1: जब हमारा इस दुनिया पर फिर मतलब ऐसा मन नहीं लगता कभी, जब ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा दिल बस एक ही चीज की तरफ जाता है कि एक ही बात की तरफ जाता है, वो है भगवान के पास। बस ऐसा भगवान के चरणों में ही चले जाते हैं कि बाप रे अब तो हम नहीं रह सकते, अब यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बस तेरे चरणों में ही है हमारा जो कुछ भी है। तो यही हमारा अगला गाना है, बसंत बहार फिल्म का, 1956 का है ये गाना, मोहम्मद रफी जी की आवाज में है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, जमाने के क्लासिकल सॉन्ग तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, ये सेमी क्लासिकल सॉन्ग है। तो ये है भारत भूषण के ऊपर फिल्माया गया ये गाना, दुनिया ना भाई ना है अब तो बुला ले, चरणों में तेरे अब तो बुला ले, यही हमारा डी अक्षर के ऊपर से अगला गाना।
0: जी हाँ, ये क्लासिकल गाना आपने याद कराया, शंकर जयकिशन का, बसंत बहार फिल्म से शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ। जी हाँ, जब प्यार हो जाता है किसी एक से तो दुनिया अच्छी नहीं लगती, सिर्फ उसे देखने उसके साथ रहने की तमन्ना बन जाती है, तब कहा जाता है दिल से आवाज निकलती है, दुनिया न भाए मोहे अब तो। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को, आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: किडोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं और विद्या, कौन सा गीत आपके पास अब है?
2: अगला सॉन्ग बोलने से पहले एक शायरी सुनाना चाहती हूँ सर। मैं तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो अभी इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर। तो अभी सब लोग बस दिल थाम के बैठिए, जो मैं अगला गाना लेके आई हूँ ना, वो बहुत ही प्यारा सा गाना है, वो एक गजल है। जी हाँ, अब तो सुन के खुश हो गए होंगे, क्योंकि गजल एक अलग ही अंदर रहता है, गजल का एक अलग ही थीम रहता है कि जब वो सुनते हैं ना, बस उसमें खो जाते हैं, कुछ सोचता नहीं, आस पास कुछ दिखाई नहीं देता, बस उस गजल में, उसके गाने में पूरा, उसकी म्यूजिक में वो सब खो जाते हैं। और अगर वो गजल हमारे गजल सम्राट जगदीश सिंह जी की हो तो बात ही कुछ और है। तो हमारा अगला गाना यही एक गजल है जगदीश सिंह जी की और चित्रा सिंह की आवाज में है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। तो सुनते हैं हमारी दी अक्षर के ऊपर से ये प्यारी सी गजल सिर्फ आपके लिए।
1: तो चलिए, आपने ये मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारा सा गजल जो है आप याद किया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना। बहुत ही प्यारा सा जगदीश सिंह और चित्रा की आवाज में हम ये बहुत ही खूबसूरत गजल जो है अभी सुनेंगे। निदा फजली का लिखा और जगदीश सिंह का ही गाया संगीत से सवारा ये गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली। उसके बाद चंद नए गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

0: कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। आगे आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत नगमा हम सुनेंगे। विद्या चौधरी, बताइए कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को आप सुनाने वाले हैं?
1: तो हमारा अगला गाना है तीसरी कसम की फिल्म का, जो 1966 में आई थी। ये गाना उस जमाने में भी बहुत हिट था और अभी भी बहुत हिट है ये गाना। तो इसकी चंद लाइनें सुनाना चाहूंगी आपको।

वो जो महुआ घटवारन का घाट था ना, उसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारन लेकिन सौ सतपंथी में एक। उसका बाप दिन दिहाड़े ताड़ी पी के बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ थी साक्षात राक्षसनी। महुआ कुंवारी थी, हरी पूरी दुनिया में कोई ना था उसका।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, इरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद का चमकता चेहरा, तेरी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं मासी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं कराई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती थी, रात दिन कलप

जवान हो गई थी मंगला, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं कराई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती थी, रात दिन कलपता था बेचारी का मन। मन समझती है ना आप?

एक दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। मंगुआ को देखते ही उससे रीझ गया। नादान मंगुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने मंगुआ को एक सौदागर के हाथ देख दिया। रोती छटपटा की मंगुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। मंगुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाया। ये भी उस समय का 60s, 70s, 80s में बहुत पॉपुलर गाना रहा। हर जगह इस गीत को लोग पसंद किया करते थे और लोग सुना करते थे। मुकेश का ये दर्द भरा नगमा आपने सुना, हसरत जयपुरी साहब का लिखा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आई हैं, तो अब कौन सा गीत आपके जहन में है बताइए।
1: एक शायरी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये दुनिया एक छोटा सा ख्वाब है, जो अपनी जिंदगी ऐसे जैसे जी रहा गुलाब है। रहकर साथ आप कांटों के भी, मुस्कुराओ हमेशा जैसे मुस्कुराता गुलाब है। तो इसी के साथ अभी हमारे अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बहू बेगम फिल्म से। तो अभी जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनको तो एक दूसरे के सिवा कुछ सूझता नहीं, पर ये दुनिया जो है ना, उनको सब कुछ सूझता है। बस ये कौन है, क्या है, बस वो वही सवाल करते रहते हैं। तो यही ये गाना है कि अगर ये दुनिया वाले इतने सवाल करते हैं तो इनको हम आखिर जवाब दे तो क्या दे, क्या जवाब दे कि कौन है, क्या है, इतना तो कुछ सोचते नहीं ना। तो यही हमारा अगला गाना है बहू बेगम फिल्म से, जो 1967 में आई थी। लता मंगेशकर जी का आवाज है, आवाज में नहीं ये गाना, मीना कुमारी जी के ऊपर पिक्चराइज है। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे, तुम कौन हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे।
0: ओके जब चुपके चुपके प्यार हो जाता है तो दुनिया सवाल करता है, तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, बहू बेगम 1967 का, शाहिर लुधियानवी साहब का लिखा। चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं और लगता है कि सफर में कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ खाबो का ये सफर कुछ पता ही नहीं चला। विद्या चौधरी, बहुत ही प्यारा कलेक्शन आपके पास थे जिसके वजह से समय का कहीं भी पता नहीं चला और पूरा एक घंटा खत्म होने पर है। और चलिए अब आखिरी में कौन सा गीत आपके पास है बताइए।
1: जब दो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं तो उनकी तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है, मतलब उनके दिल के इतने टुकड़े हो जाते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अभी क्या करे क्या नहीं। तो यही हमारा हमारा अगला गाना है इसके ऊपर, जो बाबुल फिल्म से 1950 का दिलीप कुमार जी के ऊपर पिक्चराइज है ये गाना। दुनिया बदल गई मेरी, दुनिया बदल गई, टुकड़े हुए हैं जिगर के, छुरी दिल पे चल गई। यही है हमारा अगला गाना, एक सैड सॉन्ग है, प्यारा सा गाना है डी अक्षर के ऊपर से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
0: चलिए इस सैड सॉन्ग को हम लोग आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। शकील बदायूं साहब का लिखा बाबुल फिल्म का 1950 का, शमशाद बेगम और तनत महमूद का गाया हुआ ये खूबसूरत नगमा नौशाद जी का संगीत से सवारा हुआ आपके लिए। और इसी के साथ मैं कहूंगा, मैं और विद्या चौधरी चाहते हैं इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए गानों के साथ आपको हम मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, करियर

0: कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। तो आज मैं एक यूनिक जो है करियर के बारे में बात करूंगा, वैसे इसको एक परियोजना के बारे में बातें करूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में करियर कैसे आप बना सकते हैं। परियोजना प्रबंधक यानी प्रोजेक्ट मैनेजर, ये भी एक करियर का बहुत सुंदर विकल्प है। आज के दौर में एक अत्यंत बहुत ही पॉपुलर, चुनौतीपूर्ण और बहुआयामी करियर है। ये भूमिका न केवल संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि किसी भी परियोजना की सफलता का मूल आधार भी है। चाहे आईटी सेक्टर हो, निर्माण क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मीडिया हो, सामाजिक विकास हो, गैर सरकारी संगठन हो, एनजीओ जिसको कहा जाता है, प्रशासन हो, इवेंट मैनेजमेंट या सरकारी योजनाएं हो, हर जगह एक कुशल परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आज के समय में जब समय प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, टीम वर्क और परिणाम उन्मुख कार्यशैली की जो महत्ता बढ़ गई है, ऐसे में प्रोजेक्ट मैनेजर का करियर उन युवाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो नेतृत्व क्षमता वाले हैं, लीडर क्वालिटीज वाले हैं, योजना बनाने की कला और समस्या समाधान की सोच रखते हैं। उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत ही सुंदर विकल्प है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत होती है। और एक बार आपको पूरे चीजों के बारे में समझ में आ गया, हर एक चीज ना, एक टीम होती है, एक कंपनी है समझो, उसको पूरी तरह से लीड करना और रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें उनके साथ करना, ये बहुत बड़ी जो है कला है। तो अब इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग, तो आप सभी को बताएंगे एक प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे होता है और कैसे इस कला को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं।
1: चलिए, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के कुछ उदाहरण भी देता हूं। भारत में और विदेश में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर रहे हुए थे। जैसे कि दुनिया का सबसे 10 प्रसिद्ध प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम मैं बताऊं, तो पहला आता है होमर जे मुलर, जो नासा अपोलो प्रोग्राम के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। दूसरा है डॉक्टर वर्नन वॉन ब्राउन, ये शत्रुन वी रॉकेट परियोजना के प्रमुख, सबसे बड़ा सफल वैज्ञानिक प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर थे। जे इरविन मिलर, इंटरस्टेट हाईवे प्रोजेक्ट यूएसए, दुनिया की सबसे बड़ी सड़क परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। मेगन स्मिथ, ये भी गूगल एक्स और यूएस सीटीओ, बड़े नवाचार प्रोजेक्ट की प्रमुख प्रोजेक्ट मैनेजर रही। पांचवा है फ्रैंक गहरी, विश्व प्रसिद्ध वस्तुकार, बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर। छठवे की बात करें तो एलोन मस्क, जिन्हें आज सभी जन जानते हैं, ये स्पेस एक्स टेस्ला तकनीकी प्रोजेक्ट के में नेतृत्व शैली के कारण प्रसिद्ध है। सातवां सर जॉन आर्मिट, लंदन ओलंपिक्स 2012 के निर्माण प्रोजेक्ट के प्रमुख, समय के पहले पूरा किया। आठवां गैन चार्ट के जनक हेनरी गैन, आज हर प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाला टूल उनके नाम पर है। नौवां है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, सोशल प्रोजेक्ट मैनेजर, जर्मन बैंक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर, गरीबी हटाने पर नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। दसवां सुंदर पिचाई, गूगल क्रोम प्रोजेक्ट मैनेजर, क्रोम ब्राउजर 2008 में बनाने वाली टीम के वास्तविक नेतृत्वकर्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये हुए जो लोग विदेश में काम कर रहे थे उनके प्रसिद्ध नाम, और भारत में भी कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हुए हैं, जैसे कि ई श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट निर्धारित समय से पहले और बजट में पूरा किया इन्होंने। दूसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, SLV-3 और मिसाइल विकास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। तीसरा राकेश कुमार भटनागर, भारत के बड़े रक्षा और वैज्ञानिक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर। चौथा सतीश धवन, इसरो की मजबूत परियोजना संस्कृति के निर्माणकर्ता। पांचवा कर्नल सुनील कुमार शर्मा, बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट, मुश्किल इलाकों में सफल प्रोजेक्ट लीडर। तो ये थी कुछ खास बातें भारत के कुछ ऐसे नाम जो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में सफल हुए। तो आइए एक बहुत ही पॉपुलर जैसे कि होमर मुलर, इनकी जीवन कहानी से आपको जोड़ना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत बड़ा विजनरी होते हैं। तो आइए इनकी कहानी मैं आपको बताता हूं। होमर मुलर चंद्रमा पर इंसान पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आज भी जानते हैं। 1960 की बात है जब इस दशक में अमेरिका और रूस के बीच स्पेस रेस चल रही थी। अमेरिका की नासा ने मानव को चंद्रमा तक भेजने का लक्ष्य रखा था और इस महामिशन को व्यवस्थित रूप से पूरा करवाने की जिम्मेवारी दी गई थी होमर मुलर को। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बने जो अपोलो प्रोग्राम की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधक रहे। अच्छा, अपोलो मून मिशन में इनकी जो भूमिका रही वो मुख्य रही और चुनौतियां ये थी कि अपोलो मून मिशन इतिहास की सबसे जटिल परियोजना में से एक थी

शांत रहो, सही काम करो। अब बात आती है, समस्या आ गई जब रॉकेट में खतरनाक वाइब्रेशन हुआ। अपोलो रॉकेट लॉन्च टेस्ट में टेस्टिंग करते वक्त खतरनाक कंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, दिखाई दिया कि जिससे रॉकेट फट भी सकता। इंजीनियर इस समस्या का कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे, पर ऐसे में तभी मुलर ने एक सरल लेकिन बहुत ही अनूठा निर्णय लिया। उन्होंने हर विभाग को समस्या का माइंड मैप बनाकर आपसी डेटा मिलाने को कहा। बस फिर क्या था, सभी ने अपना काम किया और 24 घंटे में समस्या का मूल कारण मिला और समाधान तैयार हुआ। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचे और इस ऐतिहासिक मिशन के पीछे कई वैज्ञानिकों के साथ होमर मुलर जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की निर्णायक भूमिका थी। आज भी नासा में उनकी समस्या समाधान शैली को मुलर अप्रोच कहा जाता है। तो है ना कमाल की बात। तो ये थी एक विशेष प्रोजेक्ट मैनेजर की कहानी आपके लिए। तो आप भी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं या इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो इतना बड़ा विजन लेकर आप जरूर आगे चलिएगा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। और आज हम लोग बातें करेंगे करियर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, परियोजना प्रबंधक के बारे में। तो परियोजना प्रबंधन का परिचय अगर दूं तो परियोजना प्रबंधन वो व्यक्ति होता है जो किसी परियोजना को शुरू करने, योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने, निगरानी करने और तय सीमा में सफलतापूर्वक पूरा करने की जिम्मेवारी संभालता है। उसे कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, परियोजना प्रबंधक। उन कार्य केवल निर्देश देना नहीं होता यहाँ पर, बल्कि वे परियोजना के हर चरण में अपनी रणनीति, विश्लेषण और निर्णय क्षमता का उपयोग भी करते हैं। तो उस व्यक्ति को ही प्रबंधन कहते हैं। तो बात आती है यहाँ पर एक परियोजना प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। परियोजना की योजना बनाना, परियोजना का उद्देश्य निर्धारित करना, बजट तय करना, विभिन्न चरणों में कार्य का बंटवारा करना, समय सीमा तय करके संभावित खतरों यानी रिस्क का आकलन करते हुए उनसे बचाव, उनकी सेफ्टी सुरक्षा के बारे में जानना और बताना। दूसरी बात आती है टीम का गठन करना और उसको चलाना, विशेषज्ञों की पहचान। जैसे हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं होता, हर व्यक्ति किसी खास कार्य करने की क्षमता रखता है, तो ऐसे विशेषता उस व्यक्ति के अंदर की पहचान होना, टीम सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेवारी देना, टीम को प्रेरित रखना और संघर्ष होने पर समाधान खोजना, ये सारी चीजें टीम वर्क में आता है। तीसरी बात आता है संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन हो सकता है, तकनीकी संसाधन हो सकता है, वित्तीय संसाधन हो सकता है, सामग्री और उपकरण का संसाधन भी हो सकता है। इन सारी चीजों को एक साथ अलग अलग जगह पे कैटेगरी वाइज रखने का काम भी प्रबंधन का ही होता है। और संचार, कम्युनिकेशन प्रबंधन, कम्युनिकेशन ये भी बहुत बड़ा जो है कार्य करता है योजना को कंप्लीट करने में। क्लाइंट प्रबंधन और टीम के बीच स्पष्ट संवाद और रिपोर्टिंग, नियमित बैठक, अपडेट साझा करना, ये सारी चीजें भी इसमें आती है। और इसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही थोड़ी सी बातें बताई थी, भविष्य में आने वाली बाधाओं की पहचान, वैकल्पिक अल्टरनेटिव योजनाएं तैयार रखना, आपत्तकालीन स्थिति में तेजी से निर्णय लेकर समप करने की बात आती है यहाँ पर, या फिर सही तरीके से चीजों को आकलन करते हुए आपत्तकाल में स्थिति को संभालने की पूरी संभावनाएं अपने पास रखनी होती है। और एक और बात यहाँ पर आती है गुणवत्ता, गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी चेक। समय समय पर परियोजना की समीक्षा करना, तय मानकों के अनुसार काम की जांच करना, त्रुटियों की पहचान और फिर उसकी सुधार करना। आखिरी बात आती है यहाँ पर परियोजना को समय पर पूरा करना। सबसे बड़ा काम यही होता है कि समय सीमा पर लगातार नजर रखना, देरी होने पर कारण और समाधान ढूंढना, अंतिम रिपोर्ट तैयार करना, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का पूरा काम होता है। तो किस किस तरह की बातों पे ध्यान रखना है ये मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीजें बता दी है। अब इसमें से जो चीजें आप कर सकते हैं

तो लिखी हैं, जो नहीं कर पा रहे उसके लिए आप पढ़ना और अनुभव प्राप्त करने से वो भी चीजें आपके हाथ आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन एक अनुभव होता है, एक असिस्ट करके जब इन चीजों को करके आप ऊपर तक जाते हैं तो उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं आता, आपत्तकालीन समस्याएं नहीं आती है और वो चीजों से आप बच जाते हैं। क्योंकि इसमें बड़ी जो है रिस्क अगर बढ़ जाता है तो नुकसान योजना के लिए हो सकता है और वो योजना के लिए नुकसान बना आपके लिए भी नुकसान। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। आप सुनाए हैं रिमोट 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर की बातें हम लोग कर रहे हैं कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं और इस पद को पाने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है और किस किस तरह के कौशल आपके पास होने चाहिए। अब देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आवश्यक जो स्किल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक तो पहला, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, टीम को दिशा देना, प्रेरित करना और निर्णय लेना। दूसरा, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, सही समय पर काम पूरा करना और टीम के साथ समय का प्रबंधन करना। तीसरी बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक बहुत बड़ा कला है, स्किल है, जिसको आपको आना ही चाहिए। समस्या समाधान, तेजी से समस्याओं की पहचान करें और समाधान ढूंढने की क्षमता भी अपने अंदर हो। चौथा है संचार कौशल, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया, कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट, टीम और प्रबंधन से प्रभावी ढंग से बातचीत करना, संवाद करना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने क्लाइंट की पूरी बातें समझ में आ गई हो तो आप प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से उनके अनुरूप करेंगे और वो चीजें आप अपनी टीम को भी सही ढंग से बता पाएंगे। अगर आप क्लाइंट की बात को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर बाकी सारी चीजें जो है गड़बड़ा जाएंगे, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी, संवाद कला बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पांचवी बात आती है तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आईटी में प्रोजेक्ट मैनेजर को सॉफ्टवेयर और तकनीकी टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। निर्णय में इंजीनियरिंग समझ आवश्यक होती है। एनजीओ में सामाजिक क्षेत्र और फील्ड गतिविधियों का ज्ञान जरूरी है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं, चाहे एनजीओ से मिला हो या कंपनी का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो या फिर आईटी सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट हो, लेकिन सभी में आईटी और पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है सॉफ्टवेयर और टेक्निकल टूल्स की जानकारी तो चाहिए चाहिए और साथ ही साथ एक इंजीनियरिंग की समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग की समझ जो है हर बारीकी चीजों पर उसकी नजर रहती है, एक्यूरेसी पर नजर होती है, तो वो चीजें उसी ढंग से इन चीजों को कर पाता है। छठवीं बात है संगठन क्षमता, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जिसको कहते हैं, विभिन्न कार्यों को एक साथ व्यवस्थित रखना, को निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की क्वालिटी आपके अंदर है। उसके बाद आती है जोखिम विश्लेषण, रिस्क एनालिसिस अंग्रेजी में कहते हैं, से संभवतः चुनौतियों को पूर्व अनुमान लगाना, यानी जो चीजें पहले होने वाली उसके पहले उसकी भनक लग जाए आपको तो आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। आठवीं बात बजट प्रबंधन, यानी बजटिंग स्किल्स जिसको कहते हैं, परियोजना को बजट के भीतर पूरा करना, क्योंकि अगर बजट से बाहर हो जाएगा तो सारा जिम्मा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर पर आता है, इसीलिए अगर पहले

आपको परियोजना का पूरा बजट का पता हो और ये बजट आपको इस तरह से लेना है और इस तरह से ये बजट इतने में पूरा करके देना है। अगर इसकी पूरी जानकारी आपके पास हो और उसी अनुसार आप चीजों को करते हैं तो चीजें बेहतरीन हो सकती हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसमें चूक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन शुरू से अगर आप इन चीजों के लिए सतर्क रहते हैं और वहां पर मौजूद रहते हैं कार्यस्थल पर, तो ये चीजें संभल जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स होते हैं जहां पर किसी व्यक्ति को 10 रुपए की चीज 100 चीज मंगानी है, 100 आइटम 10 रुपए के मंगाने हैं, तो आप अगर वो आदमी वहां पर है और आप नहीं है और उन्होंने गलती से उसे 20 रुपए में लिया है तो फिर डबल हो गई बजट। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें जो हैं आपकी बजट को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वहां रहना और खुद ही जो है चीजों को मंगा के लोगों के हाथ में देना, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसी बारीकी से चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके चीजें संभल जाती है। और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की अब बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कौन कौन सी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो किसी भी विषय में, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, आईटी, सोशल वर्क या फिर किसी महत्वपूर्ण विकल्प का एक जो है डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। दूसरा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, MBA प्रोजेक्ट मैनेजर, MTech, MCA IT सेक्टर के लिए, MSW NGO सेक्टर के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पेशेवर प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जैसे कि ये कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजर की मांग बढ़ाते हैं, उनमें से कुछ कोर्सेस ऐसे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसके बाद आता है एक प्रिंस 2 सर्टिफिकेशन, एजिल स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन या लीन 6 सिग्मा, ये भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपको प्राप्त करने से आपके प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में या प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में आसानी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इन चीजों को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो आइए एक और बात मैं बताना चाहूंगा, करियर अपॉर्चुनिटीज लगभग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत सारी जगह पे खुले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आईटी सेक्टर में ये चीजें बहुत काम करती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशन में, साइबर सुरक्षा में, क्लाउड आधारित प्रोजेक्ट्स में ये आपको काम आता है। दूसरा, निर्माण या इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में आपको बहुत काम आता है, भवन निर्माण के क्षेत्र में, सड़क, पुल, जल परियोजनाएं बनाने पर या नगर विकास परियोजनाओं में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ तीसरा एक विकल्प आता है जहां पर एजुकेशन और रिसर्च में, शिक्षा और अनुसंधान के लिए इस प्रोजेक्ट में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे विश्वविद्यालय परियोजना बनाना, रिसर्च आधारित प्रोजेक्ट को बनाना। चौथी बात आती है जहां पर सरकारी योजनाओं को लागू करना होता है, जैसे कि जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, ग्रामीण विकास परियोजना है, महिला एवं बाल विकास परियोजना, ऐसे बहुत सारे योजनाएं सरकार की होती है, वहां पर एक PMNA प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत जरूरत होती है। पांचवी बात आती है NGO और सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य शिविर लगाना, आजीविका विकास करना, आपदा प्रबंधन करना, ट्राइबल आदिवासी विकास परियोजनाएं, इस तरह की चीजों में भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। छठवां आता है मीडिया या इवेंट मैनेजमेंट, कार्यक्रम योजना, फिल्म डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट बनाना या सोशल मीडिया कैंपेन चलाना, इसमें भी ई प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सारी चीजें आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहां पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप कितना कमा सकते हैं ये सारी बातें हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी रहते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेनिमॉल 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: राज बताए जमुरे घूम जा
1: घूम गया
0: हर तीन लोक में जाएगा
1: जाएगा।
0: अरे ज्ञान ज्ञान की कठिन बात समझाएगा
1: समझाएगा।
0: हाँ
1: परमात्मा से मिलन
0: कराऊंगा। बोले ये भाई कौन है, अरे नाम ये क्या और काम क्या। बोले ये भाई कौन है, नाम है क्या और काम क्या।
1: अभी बतलाऊंगा सुनो।

0: अरे जमुरे बोलो,
1: अरे आ जाओ,
0: अरे आ गया।
2: अरे किसको भी कोई युक्ति बता दे, आत्मा का दर्शन इसे करा दे,
0: बताऊंगा।
2: अरे इस

0: ये सच है बात जमूरे, ये सच है बात जमूरे। बच्चों तालियां बजा। जमूरे ये कौन खड़ा है?
1: खड़ा नहीं ये खड़ी है अकल में।

0: रचना
1: सच है पार्थ जमू रे सच है पार्थ जमू रे तो बच्चों
2: मानव कौन है भोला सा मानव कौन है
0: भोला नहीं ये।

हाँ ऐसी बात है। अरे इसका भी तू कर कल्याण, कैसे बने ये नेक इंसान। अरे इसका भी तू कर कल्याण, कैसे बने ये नेक इंसान।

जाना हर पल और रोको देना। हाँ ये सच बात, ये सच है बात जमूरे, ये सच है बात जमूरे, ये सच है बात जमूरे, ये सच है बात जमूरे। तो बच्चों, हाँ

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: फिर सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, परियोजना प्रबंधन प्रबंधक कैसे बन सकते हैं, इसके लिए बातें कर रहे हैं। तो चलिए, आपके पास डिग्री भी है, अनुभव भी है और आप किसी प्रोजेक्ट में सफलता पूर्वक अगर काम कर लेते हैं तो फ्रेशर प्रोजेक्ट मैनेजर को 25,000 से 40,000 तक एक महीने में पेमेंट मिलता है। और दूसरा, आपका अगर थोड़ा सा अनुभव हो जाता है तो इसको कहते हैं मिड लेवल पेमेंट, 40,000 से 1,00,000 तक हर महीने आपको मिलता है। फिर थोड़ा सा अगर आपकी और लेवल बढ़ जाती है तो फिर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो तो 1,00,000 से 3,00,000 रुपए महीना आपका पेमेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप और थोड़ा मेहनत करते हैं तो एनजीओ या फिर सोशल सेक्टर में आप प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं तो 75 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना आपको अनुभव के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद आपके अनुभव बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऑपरेशन हेड जैसे वरिष्ठ भूमिकाओं में भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपकी स्किल्स बढ़ते जाते रहे। तो आइए बात करते हैं परियोजना प्रबंधन का भविष्य क्या हो सकता है। तो डिजिटलाइजेशन, स्टार्टअप, सरकारी मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2025 से लेकर 2030 तक प्रोजेक्ट मैनेजर के क्षेत्र में लाखों नई नौकरियां भी बनने का अनुमान है। एआई, डाटा एनालिसिस और रिमोट वर्क के कारण प्रोजेक्ट मैनेजर का महत्व और बढ़ जाता है और आपको आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे विकल्प जुड़ जाएंगे। और बात करें क्यों चुने प्रोजेक्ट मैनेजर का करियर, है ना। कई बार सवाल आता है कि भाई आप तो रोज शनिवार को आते हैं, हर हफ्ते एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, हर एक हफ्ते एक नए स्किल के बारे में बताते हैं, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही क्यों बनना है, है ना। इस सवाल का जवाब ये है साथियों, आपके लिए नेतृत्व और सम्मानजनक भूमिका होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलता है, अच्छी आय और स्थिर करियर है, हर उद्योग में मांग है, निरंतर सीखने और उन्नति के अवसर मिलते हैं। समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा अवसर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में हो सकता है। और खास करके जब एनजीओ प्रोजेक्ट करते हैं या सरकारी मिशन वाले प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें सामाजिक समरसता के साथ साथ समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपका बड़ा रोल होता है, लोगों की दुआएं आपको मिलेगी। अगर आप किसी योजना को सरकार की बहुत ही उन्नत तरीके से आपने उसको लागू कर दिया और जितने भी किसान भाई बहन हैं जैसे उनको अगर उसका लाभ मिल जाता है, समाज के गरीब तबके के लोगों को अगर लाभ मिल जाता है तो निश्चित तौर पे आपको बहुत दुआएं मिल जाती हैं। इसीलिए भी प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए भी आप इस कार्य में

आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, ऐसे हर एक करियर का जो भी हम लोग बताते हैं वो इम्पोर्टेंट ही रहती है, लेकिन आखिरी में निष्कर्ष यही है कि एक परियोजना प्रबंधन के रूप में करियर चुनना उन लोगों के लिए उत्तम विकल्प है जो जिम्मेवारी उठाना जानते हैं, समन्वय, योजना, नेतृत्व और रचनात्मक कार्य करने में इंटरेस्ट रखते हैं, पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए काम बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट मैनेजर के बिना कोई भी परियोजना समय पर और सफलतापूर्वक पूरी नहीं हो सकती है। आज का समय कुशल प्रोजेक्ट मैनेजरों का है। यदि आप अपने कौशल को विकसित करके इस क्षेत्र में कदम रखते हैं तो ये करियर आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सम्मान के स्तर पर भी अत्यंत सफल बनाता है। तो साथियों, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस जगह पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आप पढ़ाई करना चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए, किस तरह के सर्टिफिकेट्स होना चाहिए और कौन कौन से कार्य आपको, स्किल्स आपको अंदर होनी चाहिए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9914154415 इस नंबर पे आप मैसेज करके करियर ऑप्शन लिखकर आप अपना मैसेज डाल देते हैं तो जरूर हम आपको और भी बातें सुनाएंगे। अगर कहीं आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल है और आपको काम नहीं मिल रहा तो भी जरूर बताइए हमें, तो हम आपको अपने स्तर पर, जो हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए काफी लोग आते हैं तो उनके इंटरव्यू हम करते रहते हैं, तो उन लोगों तक आपकी जो बात रखेंगे ताकि आपको काम मिलने में भी आसानी हो जाए या कोई प्रोजेक्ट मिलने में आपको आसानी हो जाए, तो इस तरह का जरिया भी आपको बता सकते हैं। तो हम आपके आपको मदद करने के लिए तैयार है और आप मदद लेने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बहुत अच्छा करियर बनाएं, ऐसी सुंदर भावना के साथ अपना और देश का नाम रोशन करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक और नए विकल्प के साथ करियर ऑप्शन का और जीवन कौशल का लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मस्कराते।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ मनाओ।

0: तुम मेरी मोमबत्ती बना ले मुझे पति, मैं हो गया माशरती तेरे बिना।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM।
1: खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट साहित्य संगीत गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना। बात पुरानी बड़ी सुहानी फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: मुझे काला है।
1: काला?
2: तुम्हारे ख्याल में कौन गा रहा है?
0: ये तो मेरा भोला है, वो देख सामने खड़ा।
2: नहीं, ये तो विद्यापति है।
0: विद्यापति? कौन विद्यापति?
2: मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत बड़ा कवैया है।
0: आई डोंट बिलीव इट, इम्पॉसिबल, आई हैव टू बिलीव इट। चलो मेरे साथ।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
2: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन. इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या. यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते. क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है. इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है. तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, आप सही.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कर गयो रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकता रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में हमने ये जाना कि हम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, रिलेशनशिप्स को एक नए नजरिए से देखा और फिर कई रोल्स जो हम हर रोज अदा करते हैं उनको कैसे हम हर बार चेंज कर सकते हैं वो हमारे अपने हाथ में है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और बात करते हैं रिसोर्सेज की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। हमने तीन पड़ाव तो तय कर लिए इस पूरी श्रृंखला में और एक नई नजर से जो है हम पूरे न सिर्फ स्व को बल्कि अब जब अपने आप को मैनेज करते हुए हमने अपने रिलेशनशिप्स में और बाहर देखा तो काफी सारे बदलाव दिखते हैं। आपने बात की थी कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है रिसोर्सेज यानी संसाधन, पर वो रिसोर्सेज क्या है?
1: बिकॉज ईच वन ऑफ अस, हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। यू नो, जो हम कई बार अपने आप को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और हम कहते हैं इनके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, वट एवर, एक्चुअली हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। अंतर किस में आ रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करते हैं, एंड दैट विल ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट इन माई लाइफ। कि मेरे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, लेकिन आपका उसको यूज करने का तरीका और मेरा उसको यूज करने का तरीका वो डिफरेंट हो जाएगा। अब हर एक के पास जो रिसोर्सेज हैं सेल्फ के, वो तीन लेवल पर होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। थ्री रिसोर्सेज जो हम सबके पास है। सो लेट्स से फिजिकल रिसोर्सेज। आज फिजिकल वेलबींग की जितनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, मतलब शायद पहले इतनी नहीं, तो देन डजंट दैट मीन आई एम नॉट यूजिंग द फिजिकल एनर्जी इन द राइट वे। आज ये शरीर मेरे थिंकिंग पैटर्न की वजह से अगर इसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां, कभी जॉइंट पेन है, किसी को डायबिटीज है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज माय फिजिकल रिसोर्स बट देन आई एम नॉट एबल टू यूज इट इन द राइट वे बिकॉज इट इज इल। अगर कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है, व्हीकल ठीक नहीं है, तो जीवन की यात्रा में कुछ कुछ तो रुकावट आएगी। सो माय थिंकिंग पैटर्न इज क्रिएटिंग द इलनेस एंड माय चेंज ऑफ थिंकिंग पैटर्न विल हेल्प इन द क्योर ऑफ द इलनेस। वो बहुत बड़ी मदद करता है।
0: वेरी ट्रू।
1: हमारे यहाँ आई वुड लाइक टू शेयर, एट द ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स में एक प्रोजेक्ट चल रहा है इन कोऑर्डिनेशन विद DRDO एंड द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। के जो हार्ट की आर्टरी डिजीज की जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है उसको मेडिटेशन, मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो आप लेते रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन और राइट लाइफस्टाइल से किस तरह से हम वो आर्टरी की ब्लॉकेजेस को यू नो ओपन कर सकते हैं। सो एंड द एक्सपेरिमेंट शोज वंडरफुल रिजल्ट्स। इट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड ओवर द बॉडी। कि राइट थिंकिंग से हम जो बीमारी जिसको हमने समझ लिया था कि

0: ये बीमारी तो चलनी ही है, वो बीमारी पर हम ओवर पावर कर लेते हैं एंड फिर हमारा ये फिजिकल रिसोर्स, मतलब ऐसे भाई बहने वहां आ रहे हैं जो पहले चार कदम भी ठीक से नहीं चल पाते थे, दे वुड यू नो गेट ब्रेथलेस, वो दो फ्लोर तीन फ्लोर सीढ़ियां आज चल के जाते हैं, तो फिजिकल रिसोर्स है ना।
1: तो फिजिकल रिसोर्स का हमने सही इस्तेमाल फिर किया, उसका एटलीस्ट उसको हमने सेव तो किया, और व्हाई नॉट वी वांट टू सेव,
0: ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हाई वी सेड फिजिकल कॉस्ट्यूम सबको मिला है, रिसोर्स सबको मिला है, लेकिन कौन उसको किस तरह से यूज करता है वो फिर हर एक के अपने अपने तरीके।
1: एक बार अगर हमने अपने आप को फिजिकल रिसोर्स को हमने सेव कर लिया, अब उसका सही इस्तेमाल जो है वो कुछ और अलग होगा, मतलब हाउ डू आई यूज, या इसका मैनेजमेंट कैसे हो
0: ऑफ द बॉडी। बॉडी का तो ध्यान हम रख ही रहे हैं, सी विद आर डाइट आर एक्सरसाइज, दैट्स व्हाट वी डिडंट डिस्कस दैट बिकॉज उसकी तो ऑलरेडी कितनी डिस्कशन है कि डाइट हो एक्सरसाइज हो आपकी यू नो गुड क्लीनलीनेस हैबिट्स हैं, ये सारी चीजें तो बॉडी का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन जहां हमने ये कनेक्शन नहीं जोड़ा था कि द माइंड हैज एन इफेक्ट ऑन द बॉडी, तब हमने ये नहीं पता चल रहा था कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती है, यू नो आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, फिर भी कहीं ये दर्द, कहीं ये कुछ ना कुछ, बिकॉज साइकोसोमैटिक इलनेस है, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, अब वो रहता है लाइफ लॉन्ग, वाय जब तक आप अपने थिंकिंग पैटर्न को नहीं चेंज करेंगे। सो एनी डिजीज विच इज साइकोसोमैटिक आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट एट द लेवल ऑफ द माइंड एट द लेवल ऑफ द साइकी। तो थॉट पैटर्न चेंज करें, लाइफ स्टाइल चेंज, यस अभी देखो हार्टरी ब्लॉकेज भी होती है तो लोग लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, लेकिन थिंकिंग पैटर्न
1: उस पर तो कोई सोचता ही नहीं कि वो इफेक्ट डाल सकता है।
0: तो डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन थिंकिंग पैटर्न, तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस एंग्जाइटी एंगर ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे ये ब्लॉकेजेस के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करना पड़ेगा ना, तब वो ब्लॉकेज फिर जाता है। सो हिटिंग एट द रूट ऑफ द डिजीज, That is very fundamental. That will be important.
1: तो ये तो हुआ हमारा फिजिकल रिसोर्स की बात, आगे आपने कहा था कि
0: मेंटल रिसोर्स, तो मेरे को लगता है हम इस पूरे प्रोग्राम में बार बार इसको डिस्कस ही कर रहे हैं कि माइंड इतनी पावरफुल एक शक्ति है जो हमें मिली है, अब इसका हर दिन हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से उपयोग करते हैं, हमने पहले भी ये देखा लेकिन लेट्स टेक इट अप अगेन टुडे दैट ऑन एन एवरेज एवरी मिनट वी क्रिएट अबाउट 25 to 30 थॉट्स on an average. तो रिसर्च जो साइंटिफिक रिसर्च आज दिखाती है कि इन अ डे 24 घंटे के अंदर वी आर क्रिएटिंग अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 thoughts is what there is. अब ये मेरा रिसोर्स है, आई एम क्रिएटिंग 50 to 60,000 thoughts in a day. Quality? Quality क्या है? एक thought. अब कितनी सारा दिन में
1: किस तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ईच थॉट इज क्रिएटिंग एन एनर्जी ए वाइब्रेशन, और जो की बात करते हैं
0: इट्स बींग यूज इन दैट वे, आप जिस तरह की थॉट क्रिएट करेंगे फिर उस तरह की फीलिंग, उस तरह की फिर पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। सो वेन आई एम क्रिएटिंग 50,000 थॉट्स अप्रोक्सीमेटली इन अ डे, शुडंट आई बी अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ दोज थॉट्स? इट्स लाइक यू नो दिस इज माई कंपनी इन साइड एंड दिस इज द प्रोडक्शन हाउस, एंड प्रोडक्शन कितनी है 50,000, क्वालिटी कितनी है?
1: वो किस तरफ जा रही है वो? ओ ये
0: तो एक फैक्ट्री में भी आप देखो, अगर इतना प्रोडक्ट निकल रहा है तो कुछ एक परसेंटेज रिजेक्ट होता है एंड कुछ एक यूजफुल प्रोडक्ट में जाता है,
1: तो रहे कुछ ये।
0: लेकिन यहाँ कितना रिजेक्ट होता है सारा दिन, बिकॉज एवरीथिंग दैट्स नेगेटिव, एवरीथिंग दैट्स वेस्ट, दिस इज ऑल गोइंग। तो ये अगर हम एक दिन भी अवेयरनेस से चलें कि मेरी थॉट्स की क्वालिटी क्या है, तो माइंड मन जो है, तो मन आत्मा की, जिसको हम कहते हैं कि मैं आत्मा जब सोचती हूँ तो उसको मन, तो माइंड इज अ पार्ट ऑफ द सेल्फ, लेकिन ये माइंड की जो पावर है दैट इज टू थिंक, हम यहाँ पे सोचते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस कि वी आर थिंकिंग इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, किसी के लिए ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है, किसी के लिए नंबर्स के फॉर्म में होता है, यू नो वी थिंक एज नंबर्स, और वो यहाँ एक इमेज जैसे बनता जाता है, एंड जैसे जैसे हम वो थॉट क्रिएट करते हैं फिर वो वाइब्रेशन एनवायरमेंट में जाता है, पहले वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी को मिलता है और फिर वो वाइब्रेशन एनवायरमेंट में जाता है। सो एवरी थॉट आई एम क्रिएटिंग डज नॉट जस्ट स्टे हियर, इट बिकम्स
1: लाइक मूविंग, यस,
0: and it goes,
1: it's doing a lot of work,
0: yeah, it goes into the environment, and similarly auron ke jo thoughts hain
1: wo hum tak pahunch rahe
0: hain, auron ke thoughts ko hum lete hain, yahan par on the screen of my mind I create that image and then I take that thought and I make it your thought, jo hum kehte hain na unhone aisa

0: सोचा या उन्होंने ऐसा किया और उसकी वजह से मैंने भी ऐसा करने लग गया, तो उन्होंने नहीं किया मुझे, लेकिन मैंने उनकी थॉट्स को लिया और फिर उनको यहाँ क्रिएट करके मैंने आपकी थॉट्स को अपना बना लिया, एंड देन दे बिकम माय थॉट्स। सो नाउ आई हैव टू मूव विद अवेयरनेस इन द होल डे कि मेरा मन सारा दिन में जो इतनी सारी थॉट्स क्रिएट कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट, बिकॉज इट्स अ रिसोर्स, हाउ एम आई यूजिंग दिस पावर ऑफ द माइंड। आजकल बहुत इस पर लिटरेचर रिसर्च है कि इट्स द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन द वर्ल्ड बट मोस्ट अंडर यूज्ड, उसका राइट उपयोग नहीं हो रहा। अगर हम इसकी शक्ति को पूरी तरह से यूज करें तो what all can we do? So let me be very conscious of every thought that I create. Aajkal vigyan bhi isko prove kar raha hai ki power of thought on objects. Kyunki hum ek ek vibration jo dete hain wo hamara environment create karti hai. Mandir mein jao, environment different hai. You know, any holy place aap jao, environment different hai. Theater mein jao, restaurant mein jao, shopping mall mein jao, environment different hai. लोग मोर और लेस वही है,
1: एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री वी फील।
0: या सो हु इज क्रिएटिंग दैट एनर्जी, बिकॉज मोर और लेस लोग तो वही है ना। एक सपोज सिंपल एग्जांपल है, आप कोई एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देख लो, उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक क्लब हाउस भी है और उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर भी है, तो वही सोसाइटी के लोग जाते होंगे ना दोनों जगहों पर।
1: वी गो विद अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, ओ यस, विद डिफरेंट थॉट।
0: So, जिस थॉट्स के साथ हम उस स्थान में जाते हैं तो वो जो होली प्लेस है वहां का जो स्थान है जहां हम जाते हैं वो स्थान की वाइब्रेशन कैसी होती है, तो वो वाइब्रेशन किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की, इसका मतलब आई हैव द पावर टू क्रिएट इट, नाउ आई कैन यूज दैट पावर टू क्रिएट इट
1: एनीवेयर।
0: इसलिए कहते हैं घर को मंदिर बना लो,
1: क्योंकि आई क्रिएट इट।
0: देखो ना, आप देखो आपकी सोसाइटी बनी जहां आप रह रहे हो, जैसे जैसे आपके अपार्टमेंट्स बने वैसे ही एक वहां यू नो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है वो भी बना, लेकिन वो वाइब्रेशन कैसे क्रिएट हुआ?
1: सुकून, हाँ।
0: जब एक एक उस स्थान पर गया विद वेरी प्योर थॉट्स, यू नो विद वेरी क्लीन फोकस्ड थॉट्स, तो उस स्थान का वाइब्रेशन बना। कंस्ट्रक्ट तो वो भी ऐसे ही हुआ था ना, जैसे पूरी बिल्डिंग हो रही थी, जैसे उस सोसाइटी का एक एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, लेकिन वो एक एक फ्लैट की वाइब्रेशन देखो जाके अब एंड उस मंदिर की वाइब्रेशन देखो,
1: उस फ्लैट की वाइब्रेशन से झगड़ा
0: अलग अलग होगा ना। अगेन सी, एवरी फ्लैट विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन। आप लोगों के घर में जाओ, एवरी हाउस विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन बेस्ड ऑन people staying in that house. So when I understand ke ye meri creation hai, ye environment maine create kiya hai, now I can create that environment
1: anywhere,
0: everywhere,
1: and I can create a good environment.
0: Yeah.
1: I don't have to depend on things, you know, mujhe wo dhoop nahi jalana, mujhe wo kuch nahi karna, mujhe aroma nahi karne ki zarurat, I can do it.
0: See, wo sare again wo cheeze jo hum sare kar rahe hain, those are external aids which I use to be able to create good thoughts, which is okay. I mean, but as long as just remember that you are the creator. आप क्रिएट कर रहे हैं thoughts, आपके अंदर पावर है, कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप जो thought क्रिएट करना चाहो। लेकिन अगर हम उस
1: कई जगह पे हम बहुत oppressive फील करते हैं, ऐसा लगता है कि घुटन हो रही है, दिमाग जो है ना वो उसमें, तो वो अगेन यू नो एंड यस हमारे थॉट्स वो क्रिएट होने लगते हैं फिर,
0: बिकॉज वातावरण का। आप मंदिर में जाएंगे तो अपने थॉट्स देखो, इट वर्क्स एज अ साइकिल, पहले हम उस स्थान के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और स्थान भी, स्थान के वाइब्रेशन हम पे भी इन्फ्लुएंस करता है, सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो हमने मंदिर का वाइब्रेशन बनाया और फिर मंदिर के वाइब्रेशन में जब हम जाते हैं तो हमें शांति अनुभव होती है। सेम थिंग एट होम, हम ही पहले अपसेट रहकर, नाराज होकर, यू नो ये सब आपस में झगड़ा करके हम घर का वातावरण बनाते हैं टेंशन का। फिर हम ही जब शाम को ऑफिस से घर आते हैं तो कहते हैं घर आते ही वातावरण कैसा है,
1: क्रिएट
0: है। लेकिन ये हमने ही क्रिएट किया है, और अगर हम उसको साथ कंफर्टेबल नहीं है और हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कौन करेगा? हम ही कर सकते,
1: कभी भी कर सकते,
0: कभी भी कर सकते हैं। यस, एक्सटर्नल एड्स, आज बहुत सारे एक्सटर्नल एड्स प्रमोट किए जा रहे हैं कि आप ये करो तो आपके घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, व्हिच इज ऑल ओके, बट हु इज द मास्टर फाइनली?
1: ये अब ये सारे एड्स से हम ही, हमारे थॉट प्रोसेस ही चेंज होगा बेसिकली।
0: एब्सोल्युटली, थिंकिंग फैकल्टी जो मेरी है, जब मुझे रियलाइज हो जाएगा मैं मास्टर हूं एंड आई क्रिएट दिस, इट्स अ न्यू।
1: एक्चुअली मैं किसी भी सिचुएशन में हूं, ये थॉट आते ही

0: कि आई एम क्रिएटिंग इट, आई कैन क्रिएट इट, आई कैन फिनिश दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड आई क्रिएट अ न्यू पैटर्न.
1: सो नाउ, लेकिन सारा दिन में अपने घर में, अपने ऑफिस में, ऑफिस का आपका एनवायरमेंट कैसा है? कई ऑफिस में जाओ इट्स अ वेरी लाइट एनवायरमेंट, कई ऑफिस में जाओ इट्स अ वेरी हैवी एनवायरमेंट. व्हाई? एनर्जी फ्लो ऑफ द पीपल. सो जबकि हमें ही उस घर में रहना है, हमें ही उस ऑफिस में काम करना है, तो वो एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. तो इज़न्ट दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वहाँ क्या एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं. लेकिन हम कितना इजिली बैठे बैठे जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, फिर एनवायरमेंट कैसे बिल्डअप होगा? दैट बिकम्स अ वेरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन फूड, क्योंकि जबकि मन की स्थिति, मन के वाइब्रेशंस का इफेक्ट हर चीज पर हो रहा है, एनवायरमेंट पर हो रहा है, भोजन पर हो रहा है, पानी पर हो रहा है. हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि जापान के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इमोटो, उन्होंने रिसर्च ये की है इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन वाटर ना, और ऑफकोर्स वो ऑन गोइंग रिसर्च बहुत अभी भी चल रही है. क्या पानी के सैंपल्स उन्होंने लिए एंड अलग अलग सैंपल्स को विद पावर ऑफ माइंड आपने अलग अलग वाइब्रेशंस दिए हैं एंड फिर वो जैसे किसी को दिया आई लव यू, आई थैंक यू, किसी को आई हेट यू, तो फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी किसी के लिए पॉजिटिविटी, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड, किसी के लिए लव एंड फिर वो पानी के सैंपल्स को जब देखा गया तो द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल वो अलग प्रकार का था. तो जिस पानी के सैंपल्स को पॉजिटिव एनर्जी मिली है, बहुत पावरफुल, वो स्ट्रक्चर बहुत फाइन डिफाइंड है, बहुत शार्प और डिफाइंड है. और लेकिन जिनको दूसरे प्रकार की एनर्जी मिली है वो स्ट्रक्चर ही ठीक से नहीं बना है, क्रिस्टल ही शेप नहीं हुआ,
0: क्रिएट ही नहीं हो पाता,
1: वो क्रिस्टल कोलैप्स हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनता.
0: बिकॉज हेट्रेड कैन बी सो डैमेजिंग. ओ यस.
1: नाउ वंस आई अंडरस्टैंड,
0: ओ माय गॉड, हाउ मच एट टाइम्स यू नो, जब हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है या हमें नफरत हो रही होती है, हम हमारे जो वो वाइब्रेशन है वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो डैमेज कर सकते हैं.
1: अब इसका सेकेंड पार्ट जो हमें समझ में आएगा, बॉडी इज मेड सो मच ऑफ वाटर.
0: और वो मुझसे होके ही तो जा रही है, तो मुझे कितना डैमेज कर रही है.
1: तो ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन आती है. वी कुड एक्चुअली आस्क द होल फैमिली जो हमारे साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर जाकर ये वेबसाइट देख सकते हैं डॉक्टर इमोटो की, क्योंकि उसमें फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, क्रिस्टल्स की बहुत सारी फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, उनकी बुक्स भी हैं वाटर, हीलिंग विद वाटर के, तो उसपे ये क्रिस्टल्स की फोटोग्राफ्स दी हैं. ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखने से हमें पावर ऑफ माइंड ऑन वाटर जो उन्होंने यू नो प्रूफ किया है, वी नीड टू सी दैट, बिकॉज वाटर इज समथिंग व्हिच इज एवरीवेयर,
0: सो मच
1: इन द बॉडी. तो अगर हमें वो यू नो समझ में आता है कि वो क्रिस्टल्स ठीक से फॉर्म नहीं होते हैं, तो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? कितने थॉट्स चल रहे हैं सारा दिन, हेट्रेड के, नफरत के, हर्ट के, पेन के, तो उसका शरीर पे असर ऑटोमेटिकली.
0: और पता है हमें बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कई बार कि हम कितनी बार सजा शिवानी कहते हैं उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ वो कहीं ना कहीं मुझसे
1: नहीं. वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे सोचने से उसको कुछ नहीं होने वाला है.
0: और सबसे बड़ी बात,
1: सबसे पहले मुझे होने वाला, सी बिकॉज दी अदर पर्सन वो उनकी पावर पर डिपेंड करता है कि वो आपकी वाइब्रेशन को कितना इन्फ्लुएंस करने. लेट्स से कि आप मुझे बार बार नेगेटिव भेज रहे हैं, बट समवेयर मेरे पास भी तो एक पावर है कि हाउ मच आई एम गोइंग टू लेट यू ओवर पावर मी. लेकिन जब आप भेज रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले मिल रहा है. और इसलिए जब हम कहते हैं, जब हम नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं या पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे को मिले या नहीं मिले पता नहीं, लेकिन मुझे definitely मिलता है. So this is something which we have to experiment with. के and that's why at the Brahma Kumaris एक बहुत important चीज है जिस पर हम बहुत emphasis डालते हैं, and that is जब आप भोजन बना रहे हैं तो आपकी मन की स्थिति क्या है. हमने बहुत बचपन से ये सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न, वो भी तो फिर ट्रू हुआ ना. अन्न अगर सात्विक है तो मन सात्विक होगा, ये कहा जाता था. लेकिन मन सात्विक होगा तब तो सात्विक अन्न बनेगा.
0: क्योंकि अन्न सात्विक कैसे बन जाएगा? अन्न अपने आप थोड़ा सात्विक हो जाएगा.
1: अभी तक हमें कहा जाता था कि सात्विक अन्न मतलब वेजिटेरियन फूड. वेजिटेरियन फूड तो है, लेकिन वेजिटेरियन फूड को किस स्थिति में बनाया गया? अगर आप अपसेट हैं, गुस्से में हैं, और उससे आप वो वेजिटेरियन

0: लेकिन फूड तो बना रहे हैं, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन एनर्जी कुक करने के टाइम कौन सी जा रही है? तो अगर वो भोजन जो मेरे सामने आए, अगर उसके अंदर वाइब्रेशंस गुस्से की, चिंता की है, कैन आई कॉल दैट सात्विक फूड इज अ क्वेश्चन आई हैव टू थिंक अगेन. फूड इज मेड सो मच ऑफ वॉटर, सो मच ऑफ हर सब्जी, हर फल, इसका बेसिक इंग्रेडिएंट तो पानी है कितना सारा, और वो क्रिस्टल हमने देखा कि कैसे फॉर्म होता है. तो फूड की क्या स्टेट होगी, हम किस स्थिति में बना रहे हैं? तो इसलिए बहुत ध्यान रखें, भोजन बनाते समय बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग भोजन बनाते हैं, कि आपको अगर किसी बात की चिंता है, टेंशन है, सिट विद योर सेल्फ 2 मिनट्स, सॉर्ट इट आउट विद योर सेल्फ, गो बैक टू योर कुकिंग. ऐसे ही यू नो, ऐसे ही गुस्से में, दर्द में भोजन नहीं बनाना, क्योंकि आप सिर्फ भोजन नहीं परोसेंगे, फिर साथ साथ वाइब्रेशन भी ट्रांसमिट होगी. सो इट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल. आजकल स्पोर्ट्स में भी पावर ऑफ द माइंड को बहुत यूज किया जा रहा है, कि अगर माइंड उसको क्रिएट कर ले, उस पिक्चर को विजुअलाइज कर ले आप, यू नो, एंड इफ यू हैव इट हियर ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड, दैट वाज व्हाट योर रिजल्ट विल बी. जो हम पहले से कह रहे थे कि थॉट विल लीड टू डेस्टिनी, तो स्पोर्ट्स में या हम इसको अब कहीं भी यूज कर सकते हैं. हमें अपना गोल अचीव करना है, क्रिएट अ थॉट, विजुअलाइज इट हियर, एंड डू नॉट लेट अ सिंगल थॉट ऑफ डाउट कम बीच में.
1: डाउट एंड फियर,
0: वो इनसिक्योरिटी,
1: यू नो, कि व्हाट इफ इट विल नॉट हैपन, व्हाट इफ इट विल नॉट हैपन.
0: तो हमारा माइंड जो एनर्जी क्रिएट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, वो होने वाला है. We need to know that. तो हमें कौन सी thoughts create करनी चाहिए?
1: It's like it's going to happen.
0: अगर हम ही thought ये create करेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, तो फिर अब कई बार भाई बहने कहते हैं मैंने पॉजिटिव सोचा लेकिन वो नहीं हुआ. But then I need to be very clear, क्या सच में मैंने 100% सिर्फ पॉजिटिव सोचा? कहीं भी उसमें फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये भी तो thoughts है. See, it's not that ये thought work करेगी और ये thought work नहीं करेगी. हर thought work करेगी. तो पहले मैंने thought create किया कि I want to get this done. Next thought create किया, not too sure. तो वो वाले thought भी तो work करेगा. And then somewhere वो result वैसा नहीं आता जैसा मुझे चाहिए. तो ये resource है, इसको हम right direction में अगर channelize करें. अब सारा दिन में जो हम thoughts create करते हैं उसमें जो majority waste thoughts है वो है past और future को लेकर. पास्ट भी एक यू नो इट जस्ट होल्ड्स मी बैक. साइकाइट्रिस्ट जो है, मनोवैज्ञानिक, वो बताते ऑन एन एवरेज 80% ऑफ द टाइम वी आर इन द पास्ट, 80% एंड 15% समय वी आर इन द फ्यूचर, वेरी लिटिल. उसमें कई नेगेटिव भी होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव की परसेंटेज. तो पास्ट और फ्यूचर को हमें कहीं ना कहीं हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है. क्योंकि बोथ ऑफ देम, पास्ट एंड फ्यूचर, आर नॉट इन माई कंट्रोल, एंड मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ दोनों के बारे में सोचने के लिए. तो समवेयर पास्ट की जो भी बातें हैं, आई विल हैव टू लेट गो. ये लेट गो हमने बहुत बार बोला है, बहुत सारे भाई बहने कहते हैं हाँ समझ में आ गया लेट गो, लेकिन कैसे करना है लेट गो, कैसे करना होता है?
1: एक्चुअली मैं बताऊं कि जब कोई सिचुएशन आ जाती है ना, चैलेंज आता है, हमने लेट गो किया हुआ है, हमें याद नहीं है पास्ट, याद नहीं है सपोज, लेकिन कोई सिचुएशन आ जाती है जिसका कनेक्ट, या वो सिचुएशन इसलिए आई है कि और मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे मुश्किल आ रही है, तो मैं पास्ट में कहीं रिलेट करने लग जाता हूँ कि ये इस वजह से हुआ, एंड देन द होल
0: आई गो बैक टू दैट,
1: कम्स बैक. It means वो सॉल्व नहीं हुआ.
0: I didn't let it go. So somewhere past को, past मतलब कोई ग्रज पकड़ी हुई है, किसी के अगेंस्ट कोई बात पकड़ी हुई है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ कितनी वैल्यूबल एनर्जी वेस्ट हो रही है. एंड फ्यूचर के लिए भी एक फेथ कि जो होना है वो मेरे साथ अच्छा ही होना है, क्योंकि जो थॉट मैं क्रिएट करूंगी वो ही होने वाला है. सो व्हाई नॉट क्रिएट द थॉट दैट एवरीथिंग दैट विल हैपन विद मी विल ओनली हैपन द बेस्ट फॉर मी, क्योंकि वैसे भी वही होने वाला है. सो व्हाई नॉट, व्हाई क्रिएट दोज पेनफुल थॉट्स?
1: एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ट,
0: एवरीथिंग विल
1: बी. व्हेन चैलेंजेस एंड सिचुएशंस आर नॉट गोइंग टू टेक ओवर,
0: तो फिर सब चीज कैसे हो
1: जाएगी? एक्चुअली पूरा लर्न किया हमने लेसन की सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करनी है.
0: और जब हम प्रेजेंट में होंगे, ना पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, प्रेजेंट में होंगे, क्रिएटिव होंगे, वरी नहीं होगी, फियर नहीं होगा, तो अच्छा नहीं होगा. और अगर वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य
1: अच्छा ही
0: अच्छा होगा.
1: बार बार हमने ये बातें सुनी हुई थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली जब हम देख रहे जिंदगी एक्चुअली ये हुआ ये है आई थिंक कार्यक्रम के दौरान कि अभी तक स्पिरिचुअलिटी में ये सारी बातें, ये जो हम अंडरलाइन बातें करते हैं, ये हमने सुनी थी, अपने बड़ों से सुनी थी, कभी कहीं पाठ हो रहा होता था, कहीं सत्संग होता था, हम ये सब सुनते थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में कैसे यूज होंगे। आज ये सारी बातें मेरे अपने जीवन के अनुभव से निकल के आ रही।
0: वेरी मच, एब्सोल्युटली।
1: सो दैट वे दैट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव,
0: बिकॉज़ देन आई अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअलिटी इज प्रैक्टिकल, क्योंकि इट हैज टू बी फॉर माई लाइफ। प्रैक्टिकल मतलब मेरे जीवन से एप्लीकेबल होनी चाहिए, कोई चीज सारी दुनिया के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन जब तक वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं, देन इट्स नॉट यूजफुल टू मी। एब्सोल्युटली
1: वेरी ट्रू। तो आज जिस तरह से मेंटल रिसोर्सेज के बारे में आपने कहा कि सही तरह से उसे मैनेज करना, सबसे बड़ी बात तो है कि उसकी एनर्जी, उसकी ताकत को समझना। पहले मैंने स्व की ताकत को समझा, अब अपने जो थॉट प्रोसेस है उसकी ताकत को समझ के फिर मैंने किस तरह से उस रिसोर्स को यूज करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकती हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है मेरे पास, जैसे ये शरीर मेरा पावरफुल टूल है, वैसे ये मेंटल फैकल्टी मेरी
0: बहुत ज्यादा,
1: तो उसका सही इस्तेमाल करना भी मेरे अपने हाथ में है। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: बिल्कुल हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करें हम इसे, इस पूरे शरीर को, इसकी पूरी जो फैकल्टीज हैं, उसे एक फिजिकल रिसोर्स के बारे के रूप में देखें, और फिर उस रिसोर्स का सही मैनेज कैसे करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस रिसोर्स को कहीं डिप्लीट कर रही हैं, कहीं कमजोर कर रही हैं, कहीं बीमार कर रही हैं। दूसरी तरफ मेरी अपनी मेंटल फैकल्टीज, मेरा अपना थॉट प्रोसेस कितना बड़ा रिसोर्स है, किस तरह से मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं अपने इन्हीं थॉट्स को पावरफुल बनाकर, उनका सही इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन में। हर बार की तरह हमारे सामने ऑप्शंस हैं, चूज हमें करना है, वी हैव अ चॉइस, हमारे सामने है चॉइस, हम कितना उसे यूज करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। कोई सवाल, कोई मुश्किल आपको इस पूरी यात्रा पर चलते हुए आ रही है, आपका हम स्वागत करेंगे, आप हमसे फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में अभी कुछ बातें करना और बाकी है, आपसे मुलाकात करेंगे, विदा लेते हैं। ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे माँ मल्ली खान, अब उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो
1: खुशियाँ बांटो।
2: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में स्वागत है आप सबका। नमस्कार। इन दिनों जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो जुड़ा है हमारी जिंदगी से और वो है डिप्रेशन। क्या ये एक बीमारी है? क्या हम और आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? कैसे हमें पता चल सकता है कि हम डिप्रेशन में हैं? या फिर किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपनों से डील कर रहे हैं जो डिप्रेशन में हो? यही सारे मुद्दे हैं जिन पर हम अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं। कई बातें सामने आए हैं, कई आगे आने वाली कड़ियों में सामने आएंगी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो ये कि जब अचीवर्स या वो लोग जो बहुत एम्बिशियस होते हैं अपनी एम्बिशन को नहीं पा पाते, नहीं पहुंच पाते उस मुकाम तक, तब जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, और ऐसी कई और बातें हैं जो बातचीत के दौरान निकल कर आती हैं। तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका हार्दिक स्वागत।
3: नमस्कार।
2: और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में बता दें कि 7 किताबें आ चुकी हैं इनकी जो कि जिंदगी से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव जो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट कैसे होने चाहिए। 30 साल से ये जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि साइकोथेरेपी के क्षेत्र में इतना कुछ आप अचीव कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छी आप बातें हमारे साथ करते आए हैं, और हमारे साथ हर बार की तरह ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी है, आपका भी स्वागत करते हैं।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। डॉक्टर साहब, आज जो मुद्दा हमने लिया है, इतने ईमेल्स आए हैं, इतने कॉल्स आए हैं हमारे पास, पूरे जो हम डिप्रेशन की बात करते आ रहे हैं वो हम कॉल्स लेंगे, वो ईमेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन जो पहली बात हम करना चाहते हैं कि अचीवर्स जो होते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अचीव करते आए हैं, तब वो जब वहां पहुंचना चाहते हैं और नहीं पहुंच पाते, तब उस डिप्रेशन से या वो जो एक शॉक लगता है कि अरे मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे नहीं मिला, वो एक मेजर शॉक है, उसे कैसे फेस करना है ताकि वो डीप डिप्रेशन में ना जा पाए।
3: बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आप बता रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल सिंपल सॉल्यूशन भी बताता हूँ। पर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, परंतु ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि बहुत बड़ा एम रखिए, अपना गोल है वो बहुत बड़ा रखिए। ऐसा भी लगे कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरा गोल है, वह रखिए जरूर। परंतु आज आप जहां भी हैं वहां पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाइड फील करिए। कल कॉन्ट्राडिक्टिंग भी लग रहा है, परंतु पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि आपको बहुत बड़ी चीज अचीव करनी है तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, टाइम को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। वो कब होंगे? इफ यू आर सेटिस्फाइड। अगर आज मैं असंतुष्ट हूं, समझो मैंने सोचा मने मुझे 100 किताबें लिखनी है, इट मे बी एन इम्पॉसिबल गोल। अगर मैं वो सोचता ही रहूं तो कुछ भी आप 10 पेज भी नहीं लिख पाऊंगा। परंतु अगर आज भले मेरी 7 किताबें भी पब्लिश हुई, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, लेट मी डू हार्ड वर्क, आई
2: कैन वर्क स्टिल देयर,
3: या दैट गोल इज देयर, इफ आई एम सेटिस्फाइड आई माइट बी एबल टू वर्क 18 आवर्स अ डे, कुछ अच्छा स्टडी कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, और मे बी 100 पर नहीं पहुंचा, 50, 60, 70 पर तो पहुंच जाऊंगा। तो ये बैलेंस मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी।
2: बहुत आपने आज सुंदर बात ये कही कि गोल्स, कई बार क्योंकि कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या, एक और बात जो आती है कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ वो गोल अचीव करना, क्या मुझ में वो काबिलियत है कि मैं वो गोल तो रख लेता हूँ कि मैंने एक सपना तो देख लिया कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, क्या मुझ में काबिलियत है, ये भी एक सवाल उठता है।
3: तो सब में है, बिकॉज अवर ब्रेन इज सेम।
2: ओके,
3: आइंस्टाइन्स ब्रेन एंड ऑर्डिनरी पर्सन ब्रेन वॉज ऑल द सेम, उसमें कोई फर्क नहीं था। आइंस्टाइन का ब्रेन ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसा ही था। तो परमात्मा ने हम सबको एक जैसा दिमाग दिया है, उसमें तो फर्क नहीं है, सिर्फ अभी उसका उपयोग हम कैसे करें वह महत्वपूर्ण है, और वह हर व्यक्ति कर सकता है। तो काबिलियत सबके अंदर है, सिर्फ हमें प्रॉपरली प्लानिंग करनी है।
2: बहुत सुंदर बात सिस्टर शिवानी आ रही है सामने कि गोल हम कितना भी हाई रख सकते हैं, दैट्स लाइक स्काई इज द लिमिट जैसे हम बात करते हैं, लेकिन आज के वक्त में मैं सेटिस्फाइड रह के जहां पे भी मैं हूं, यहीं से मैं अपनी वो जर्नी शुरू करूं वहां तक पहुंचने की, तो उसमें मेरा इंटरनल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत मायने रखेगी।
4: हाँ,
2: यहां ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि ये पूरे सफर में भी रहे,
4: क्योंकि सफर करते हुए ऑब्स्टिकल्स आएंगे और हो भी सकता है कई

0: पर बीच में से लगे कि उधर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, बट लाइक वी शेयर्ड इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी. तो हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि एक लक्ष्य रख लें, बहुत ऊंचा लक्ष्य रख लें, लेकिन उसमें फर्मली बिलीव करें. यू नो मोस्टली ये हो जाता है कि लक्ष्य रख लेते हैं और पीछे ये थॉट लगती है कि ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं. कई बार आसपास के सभी लोग कहते हैं कि ये असंभव है, आप ये नहीं कर पाओगे, तब डिमोटिवेटेड हो जाते हैं. तो अपनी थॉट्स ही हमें उधर तक पहुंचने में जैसे एक रुकावट बन जाती है. जो चीज हम सोचेंगे फुल कन्विक्शन के साथ, उसमें फुल बिलीव करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं होगा. इम्पॉसिबल कैन हैपन बिकॉज सिचुएशंस, पीपल, एवरीबडी, वो बनती ऐसे जाएंगी कि आपकी थॉट ही जैसे सत्य होती जाएगी, प्रैक्टिकल आपके लिए होती जाएगी, प्रोवाइडेड इट इज 100% कन्विक्शन. एक भी नेगेटिव थॉट बीच में नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये होना है, ये हुआ ही पड़ा, ये मुझे करना है.
1: ये पर अचीव कर पाना कि एक भी थॉट नेगेटिव ना आए, इट्स लाइक अगेन अ बिग अचीवमेंट.
0: नो, बट देन फिर अगर वो नेगेटिव थॉट आ रहा है, देन आई हैवंट सेलेक्टेड माई गोल प्रॉपरली. यू सी, गोल मतलब वो चीज विच आई फर्मली बिलीव कि मैं अचीव कर सकती हूँ. तो अगर मैं ही रखूं कि मुझे 5 साल में ये बनना है और मैं ही उस 5 साल के दौरान सोचूं कि ये तो बहुत मुश्किल है, देन आई हैव नॉट सेलेक्टेड द राइट गोल. तो इसलिए गोल बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच के आप गोल को बनाइए, लेकिन फिर उसके ऊपर 100% कन्विक्शन कि इस पे चाहे कुछ पे हो जाए, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, आई एम गोइंग टू अचीव दिस. तो वी सी के इम्पॉसिबल हैपन, ऑब्स्टिकल्स जो है वो भी खत्म हो जाएंगे. लेकिन अगर मेरी अपनी नेगेटिविटी, इसी इट इज आर थॉट विच अट्रैक्ट्स, जो क्वालिटी ऑफ थॉट होगी वैसी सिचुएशन, वैसे लोग अट्रैक्ट मेरी तरफ होते जाएंगे. सो नेगेटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव. तो पॉजिटिव थॉट, फर्म बिलीफ and living in the present. कई बार हम वो बना के बस उसी में खोए रहते हैं, मुझे ये करना ही है, ये करना ही है, तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है
1: और आज को भूल जाते हैं. बिल्कुल.
0: एंड इट्स ऑल्सो वी लूज आर आइडेंटिटी इन दैट. इट्स नॉट कि मैं ये हूँ, मुझे वो बनना है, नहीं, मैं वो हूँ. यू नो, जैसे एक डॉक्टर बनने का एम्बिशन रखा, तो वो अपनी आइडेंटिटी ही उसमें समा देते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं. तो कई बार अगर बाय चांस नहीं बन पाते तो अपनी आइडेंटिटी ही फिर खत्म हुई दिखाई देती है, तब वो डिप्रेशन. अगर ये हो कि मैं एक यू नो इंडिविजुअल एंटिटी हूं, ये मैंने अपना रोल चूज किया है, अगर सिचुएशन डिड नॉट परमिट और मैंने वो रोल नहीं प्ले कर पाए, देन देर आर सो मेनी अदर रोल्स. लेकिन इफ आई डिड नॉट मेक इट अ रोल, आई मेड इट दिस इज आई, देन वो फिर बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे.
2: अच्छी बात इसमें शिवानी बेन ने बताई हुआ है, कहीं एक्सपर्ट्स है जो बहुत ही फेमस हुए, हाई अचीवर्स, उन्होंने भी कहा है कि एक दो मास पहले भी हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज को मैं अचीव कर पाऊंगा, लेकिन हम क्योंकि उसके पीछे लगे रहे, एफर्ट्स करते रहे, तो सचमुच अचानक ऐसी क्षण आई कि जब एक क्वांटम जंप हो गई और हम उस स्टेज को अटेन कर पाए. और बात यह भी है कि भी अगर हम कोशिश करते रहे ना तो वो होता है.
1: लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब, जो जितने भी आ रहे हैं हमारे पास मेल्स आए हैं, उसमें बात यही है, स्पेशली 10th, 12th एंड सिविल सर्विस. सिविल सर्विसेज का इतना ज्यादा है लोगों के साथ प्रॉब्लम कि वो वही करना चाहते हैं, उसको अचीव कर लेना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते, तो लगे रहते हैं जितने भी चांसेस आते हैं, उसके बाद देयर इज अ मेजर डिप्रेशन, कुछ और नहीं कर पाते, कुछ और करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, कुछ और नहीं करना चाहते और सब कुछ जितना पोटेंशियल था वो भी नहीं अचीव कर पाते. अगर मैंने वो गोल रखा है और मैं कांस्टेंट पॉजिटिव थॉट के साथ, मुझ में आपने कहा कि हर एक में कैपेबिलिटी है, तो मैं करता भी जा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नहीं अचीव कर पा रहे,
2: तब ये सोचना है. जैसे अभी ऐसी स्टेज हो गई, जैसे हमें सिविल सर्विस की बात है कि ये स्टेज हो ही गई, तो तब हमें यह सोचना है कि भी मेरी कैपेसिटी तो बढ़ी, इतनी जो पढ़ाई की उसके लिए जो प्रिपेरेशन किया उससे आपकी बुद्धि का विकास हुआ है ना, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ी और अब आप और शायद क्षेत्र आपको बदली करना पड़ेगा, मे बी यू विल डू MBA और यू विल डू समथिंग एल्स, और आपने क्या वहां वो काम में आएगा.
1: लेकिन उसमें पीयर प्रेशर इतना हो चुका होता है, यू नो लाइक सारा पूरा समाज हमारे साथ, जो हमारे अपने हैं उनका भी इतनी हमसे उम्मीदें बन चुकी होती हैं, हम शायद उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, क्योंकि वो उनका जो डाउन, उनको जो डिप्रेशन होता है, क्योंकि मैं हम

0: देखा यह गया है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, पूरा का पूरा घर डिप्रेस हो जाता है। सो वो ये मास डिप्रेशन का क्या किया जाए?
1: ना जैसे शिवानी बहन ने कहा वो ठीक है कि मैं वो रोल हूँ ऐसे नहीं कि मैं स्कूल अचीव कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हो गया ही नहीं, आई एम पुटिंग एफर्ट, शायद मैं डॉक्टर नहीं हुआ, मैं और कुछ बन सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वन बिल गेट्स को लीजिए, ही वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड, कहते उसकी माँ उसको साइकोथेरेपिस्ट के पास बहुत समय तक ले गई, माँ थक गई परंतु बच्चा नहीं सुधरा, परंतु जब उसने अपनी कंपनी शुरू की तो देन ही अ किलर इंस्टिंक्ट कि मुझे नंबर वन होना है, और सचमुच हो गया।
0: नहीं, बिगड़े हुए बच्चे तो सुधर जाए और बहुत अचीव कर जाए वो तो एक बहुत बड़ी बात लगती है, जो अचीवर्स होते हैं प्रॉब्लम वहां आती है कि जो फर्स्ट से लेकर टेंथ तक टॉपर रहे हैं वो जब टेंथ में परफॉर्म नहीं कर पाते या जितनी उम्मीद थी वहां तो नहीं कर पाती, तभी तो सुसाइड्स के केसेस होते हैं, या वो उस पूरे डिप्रेशन को वो कैसे हैंडल करे, फेलियर का हैंडलिंग जो है ना।
2: लेकिन सुसाइड का जो केस है इट इज मोर ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू फेस अदर पीपल आई फील। मोर के लोग क्या कहेंगे या उस टाइम स्टूडेंट्स में तो ये कहेंगे कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, इट्स मोर दैट फियर, वो फियर हमें सुसाइड की तरफ शायद अगर बच्चे को, क्योंकि बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, फेल तो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये इंटरनल अश्योरेंस है कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यू नो दैट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, जहां मुझे पता है कि मुझे रिजेक्शन मिलेगा, आई डोंट वांट टू फेस दैट रिजेक्शन।
0: इफ यू लुक बैक, एक पिछले साल के ही रिजल्ट्स में एक ऐसी बच्ची थी जिसका रीचेक जब किया गया तो उसके 95% आए, और उससे पहले ही वो सुसाइड कमिट कर चुकी थी क्योंकि उसकी परसेंटेज 80s में थी। तो ये इतनी बड़ी एक विडंबना है,
2: लेकिन वो रीचेक करके 95 हुआ, लेकिन अगर नहीं भी 95 होता तो भी क्या
0: क्या था।
1: मैं और एक बात बताता हूँ, आई हैव बीन शेयरिंग दिस प्रैक्टिकली, मतलब उसको पॉजिटिव ही लेना इस बात को, जैसे कहते हैं कि जो लोग भी ए ग्रेडर्स है ना, इवन इन मेडिसिन वी नो कि जो फर्स्ट हमारे पास जब MBBS करते गोल्ड मेडल्स जिनको आए थे, इनफैक्ट नो दे वर्क अंडर बी ग्रेड वालों के,
0: दे हैव टू
1: बी ग्रेड वाले शायद प्रोफेसर बन जाते हैं और उनके अंडर में वो काम करते हैं। कैसे सी ग्रेड वाले हैं ना, वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं और उसके ओनर्स बनते हैं, और कहते हैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ले रहा हूँ, कहते डी ग्रेड वाले हैं ना पॉलिटिशियन बनते हैं और सारे नेशन को रूल करते हैं। अल्टीमेटली नो इट्स नॉट द ग्रेड विच यू गेट, नो हाउ यू डेवलप अदर एस्पेक्ट्स क्वालिटीज इन योर लाइफ एंड यू कैन अचीव बेटर।
0: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो जो एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, कि एकेडमिक अचीवमेंट्स हाँ, बट कई बार भारत में तो हम ये देखा गया है कि उसको हम इतना फोकस बना के हम जब चल रहे हैं, खासकर स्कूल तक जो लेवल तक है, और जो एकेडमिकली अचीवर्स हैं वो कल्चरली भी अचीव कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो डिबेट्स में भी अच्छा कर रहे होते हैं, बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी होते हैं, लेकिन जहां उनको फेलियर आ जाता है, एनी टाइम कमिंग सेकेंड बिकम्स डिफिकल्ट, यू नो वो डिप्रेशन, क्योंकि काउंसलर से अगर आप बात करें तो दैट इज अ मेजर क्वेश्चन, यू नो लाइक एक तो वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा नहीं अचीव कर पा रहे, एक वो जो ज्यादा अच्छे अचीवर्स हैं उनके लिए सेकंड आना एक मेजर प्रॉब्लम है,
1: किंतु वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में नहीं ले,
0: तो उसको कैसे कर सकते हैं।
2: आई थिंक दे नीड टू टॉक टू देमसेल्फ्स,
0: यस
2: अगेन, बिकॉज आई नो समबडी हु वाज गोइंग थ्रू दिस थिंग एंड शी वाज कमिंग फर्स्ट थ्रू आउट, एंड वो बार बार फर्स्ट आने की एक एडिक्शन सी जैसी हो गई थी कि अब फर्स्ट ही आना है, और वो फर्स्ट आने के लिए वो इतना ज्यादा मतलब एफर्ट करती थी, लेकिन एफर्ट करने के दौरान टेंशन भी बहुत हो जाती थी, तो वो जो प्रेशर से जाती थी उस एग्जाम्स के दौरान, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल हर इज इट वर्थ इट कमिंग फर्स्ट लाइक दिस, मतलब अगर आप फर्स्ट आ भी जाते हैं इसके बाद, यू रियली हैवंट एंजॉयड योर ईयर, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर कॉलेज लाइफ, टॉक टू योर सेल्फ, क्या होगा अगर आप सेकेंड आएंगे तो,
0: और जो कॉन्स्टेंट इस जुगाड़ में भी रहते हैं कि दूसरे के कितने नंबर आए हैं, क्या मेरा आधा परसेंट भी उससे ज्यादा है, क्या वो उसका कम है कि नहीं है, यू नो इतना ज्यादा कंटिन्यूअस इस प्रोसेस में, और जहां उनका आधा परसेंट भी कम हुआ मेजर डिप होता है, लाइफ स्टेट मेजर डिप्रेशन में चली जाती है इतनी छोटी उम्र में। सो
1: दे शुड टेक इट एज अ चैलेंज,
0: हाँ
1: जैसे सेकेंड आया तो फर्स्ट वाले ने मेरे से ज्यादा एफर्ट की होगी, आप बोल रहे थे मुझे मेरा एग्जाम्पल याद आया, आई वॉज इन फैक्ट कहेंगे कि डल स्टूडेंट टिल सेवन स्टैंडर्ड, इवन टीचर्स डांटते थे, अरे तेरा भाई पढ़ता है तू नहीं पढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली एट्थ में ये आया कि भी बहुत पढ़ना चाहिए, अनलेस आई स्टडी आई डोंट हैव फ्यूचर, और फिर बहुत पढ़ने लगा, तो मे बी टेंथ में सेकेंड आई, इलेवंथ में फर्स्ट रैंक आई, तो जब मेरी फर्स्ट

0: तो जिसकी फर्स्ट हमेशा आती थी ही वॉज ऑन थ्रू आउट फर्स्ट दिन आई रिप्लेस दिन तो वो सेकेंड हो गया तो देन ही वेंट इन टू डिप्रेशन.
1: यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग.
0: सो नो देयर ही नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बंदे ने बहुत मेहनत की है तब ये मेरे आगे निकल गया थोड़ा तो लेट मी टेक इट एज अ चैलेंज. चलो एक साल तो ये आ गया बी नेक्स्ट ईयर आई विल पुट मोर एफर्ट देन हिम एंड आई विल बिकम फर्स्ट.
2: नो बट इट्स ऑल्सो दैट लाइक ही सेड ही वॉज somebody else was first, फिर ये first आ गए but that doesn't mean कि इस व्यक्ति की performance खराब हो गई. It just meant somebody else came and performed a little better. तो हम अपने आप को demean क्यों करना शुरू कर देते हैं ना कि मेरा अच्छा नहीं हुआ. And it's just that somebody worked a little harder. So I think the process should be कि आप उस year के दौरान आप अपना best effort करें लेकिन when the result comes then there should be acceptance. Because उस time turmoil नहीं होना चाहिए. Everything that we want to do, we do it during the year and usme bhi with enjoyment, you know, internal enjoyment.
3: कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम जो हमें ये स्टूडेंट्स को ये बताया जा सके. इनफैक्ट राइट नाउ आई हैव अ मेल, मैं इस पर जरूर बात करना चाहती हूँ. ये विनय हैं जो दिल्ली में ही पढ़ते हैं एंड दिस इज वॉट हिज प्रॉब्लम इज ऑल्सो कि 12th तक ही हैज बीन एन अचीवर. हर क्लास में मैं फर्स्ट आता रहा और IIT का एग्जाम मैंने दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें भी फर्स्ट 100 में था एंड आई वॉज एन अचीवर. अब फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते अभी उन्होंने IIT ज्वाइन किया है कि अभी आई फील दैट आई डोंट डू एनीथिंग. दैट्स व्हाट ही सेज कि मुझे लगता है कि सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. आई वॉन्ट टू रिनाउंस द वर्ल्ड, यू नो, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ. मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊँ ये बात क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. सडनली मुझे लग रहा है कि कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैंने इतना कुछ तो अचीव कर लिया, क्या हुआ. ये क्या है ये एक्चुअली ये विनय की नहीं, ये कई टॉपर्स की मैंने देखा है कि इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स के साथ ये एक वर्कशॉप हुआ था तब भी ये बात हुई थी. टॉपर्स के साथ ये भी आज के दौर में प्रॉब्लम आ रही है जो सडनली फील, यू नो, इतना अचीव करते करते एक इतनी छोटी उम्र में ही, अब कितने 16-17 साल के ही होंगे कि एक ऐसी वक्त आता है कि वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग. ये क्या है, दिस इज अगेन अ डिप्रेशन.
0: इट इज डेफिनेटली डिप्रेशन. और भी स्टडी करना चाहिए अगर सचमुच हमें उसे एनालिसिस करना हो तो, लेकिन फिर जो सिम्टम्स है उसके आधार से यही लग रहा है. अभी ऐसे केस में कॉज क्या है कि भी ऑल ऑफ अ सडन कुछ मैं ऐसा सोचने लगा कि भी मैं नहीं कर सकूंगा, मैंने एफर्ट की बट नो एट अ स्टेज पर्सन गिव सर.
3: नहीं, ही सेज कि हैव बीन अचीविंग. अभी IIT में भी फर्स्ट 100 में आया.
0: हाँ,
3: तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मैं अब छोड़ देना चाहता हूँ सब कुछ.
0: स्टिल इफ इज अचीविंग देन वन रीजन कैन बी दैट एंडोजिनस डिप्रेशन. इफ इट हैज हैपन ऑल ऑफ अ सडन देन दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. और बात ये भी संभव है कि भाई वो जो कॉम्पिटिशन उसको फेस नहीं कर पा रहे. कैपेसिटी है लेकिन कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पा रहे.
3: या फिर कहीं कभी ऐसा भी होता है कि ऊंचाई पे पहुंच के तो मैं अकेला हूँ, मेरे लेवल का तो कोई है ही नहीं. यू नो, कई बार ऐसा भी होता है कि
0: इस स्टेज पे नहीं होगा, ये और हायर स्टेज पे हो सकता है. नहीं, जैसे किसको नोबेल प्राइज मिल जाए तब कई बार ये स्टेज आती है कि सब कुछ पाना था पा लिया, नाउ देयर इज नथिंग, नो आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड
3: एंड आई फील अलोन.
0: हाँ,
3: यू नो, लाइक टॉप पे आप अकेले होते. ये एक बिलीफ एक और लेके चलते हैं हम कि हम जब चोटी पर होंगे तो हम अकेले होंगे. सो डज इट रियली हैपन.
2: आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज समवेयर आप मटेरियलिस्टिकली, चाहे एजुकेशन चाहे प्रोफेशनली, आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं लेकिन आप ये सब कुछ चाहते थे कि ये आपको खुशी दे, ये आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन दे. आपको बहुत सारी डिग्रीज मिल गई, बहुत सारा धन या सब कुछ मिल गया लेकिन वो नहीं मिला जिसको आप ढूंढ रहे थे. तब कहीं ना कहीं लगने लगता है इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ पा लिया लेकिन वो नहीं मिला जो ढूंढ रहे थे, तो इस सबको छोड़ दो, अब उसको ढूंढना शुरू कर दो. यू नो, यू जस्ट टेक द एक्सट्रीम पाथ. पहले आप सिर्फ भौतिकता की तरफ ही भाग रहे थे, अब आप सोचते हो इससे वो मिल नहीं रहा, अब इसको छोड़ दो, अब आप संन्यास या जैसे आपने कहा, यू नो, रिनाउंस द वर्ल्ड. बट इट्स नीदर ऑफ द टू, इट्स सपोज टू बी बोथ. दैट इज द बैलेंस, कि आप खुशी संतुष्टता से भी भरपूर होते जाएं और भौतिक जो आपको प्राप्तियां चाहिए उसको भी करते जाए. जब आप वो करते जाएंगे आई थिंक ये स्टेज कभी नहीं आएगी बिकॉज यू गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस. ये क्या हो रहा है, मे बी यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस. तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे सपोज हम यहां से बॉम्बे जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं द जर्नी इज एब्सोल्युटली मिजरेबल. यू नो, आप बिल्कुल जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप डेस्टिनेशन पहुंच के भी खुश नहीं होंगे. कहेंगे यू नो दैट होल जर्नी टेक्स इट्स टोल ऑन यू, सो यू डोंट एंजॉय वे यू हैव रीच्ड. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू एंजॉय थ्रू द प्रोसेस. एंड वो तभी होगा अगर आप हल्के रहकर पढ़ रहे हैं.

0: Sometimes with students, that is what is happening. कि वो इतना tightness to be first, इतनी anxiety, वो सब कुछ discharge कर रहा है उनको अंदर से.
1: वही कि वो मुझे पहुंचना, मुझे वो addiction ना.
0: बिल्कुल.
1: First आने की addiction.
0: वो first आना भी वो खुशी नहीं देगा जो उसे देनी थी, क्योंकि आपने पूरा साल enjoy नहीं किया. तो वो प्राप्ति भी बहुत ज्यादा सुख नहीं ले सकती. Enjoy. I think we need to learn to enjoy life. Enjoy in the sense internally, being very happy and accepting. एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी मतलब एक कला है जो हमें सीख लेनी चाहिए, और वो संपूर्ण विश्वास के साथ कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल सही हो रहा है. बिकॉज इट एक्चुअली हैपन्स लाइक दैट. अगर हम डिटैच्ड होकर देखें, हमारे साथ जो कुछ हर स्टेप पे हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट एंड बेनिफिशियल, जिसके लिए हम कहते हैं ड्रामा. ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है, दिस इज एक्यूरेट, परफेक्ट एंड बेनिफिशियल. इसमें कुछ भी चेंज होने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है. एंड व्हेन आई लुक एट इट लाइक दैट, आई रियलाइज एवरी सीन, इससे अच्छा सीन
1: और नहीं हो सकता,
0: नहीं हो सकता था.
1: तो विनय को आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे शिवानी ने तो यही कहा कि जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो जर्नी है, जो जर्नी हमने ली है, उसे दोनों तरफ का बैलेंस बना के, कि एक स्पिरिचुअलिटी का एक एस्पेक्ट तो है ही, कि एक हम इंटरनलाइज कर लें कि भाई मैं खुशी मेरे अंदर ही है, उसे ही अचीव करूं, और जरूरी नहीं है हर कदम पे ही फर्स्ट आना है, हर बार फर्स्ट आना है. आपने कहा कि वो सेकंड टाइप की ये हो सकती है, यू नो, सेकंड टाइप का डिप्रेशन हो सकता है जिसमें केमिकल चेंजेस की हमने बात की. एंड्रोजिनस जो है, तो उसमें इनको क्या सलाह देंगे?
2: एंड्रोजिनस डिप्रेशन में तो मेडिसिन की जरूरत है. नहीं, एक बार एक्सपर्ट है वो कोई प्रोफेशनल उसको जज कर पाएगा. अपने आप भी भले कोशिश करे और ये ट्राई करे कि भी कहां पर मेरे विचारों में गलती है. नहीं, वास्तव में यह प्रॉब्लम विचारों से, अगर स्टिल इफ इज अचीवर, वहां कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो फिर तो उसको एंजॉय करना सीखे. इफ ही फील्स कि भी शायद मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो इनसिक्योरिटी के थॉट्स भी हो सकते हैं.
1: इतना बड़ा अचीवर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा, ये भी एक मिथ है. ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं तो हम साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है. आई एम रियली थैंकफुल ही मेल्ड इट टू अस, अदरवाइज वी ऑलवेज फील वी आर वेरी इंटेलिजेंट कि हमें साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है. या एक और बात की, अगर हमें ड्रग्स लेते हैं तो वो हैबिट फॉर्मिंग है. यू नो, हमें ड्रग्स नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रग्स लेंगे तो हमें हैबिट हो जाएगी. ये दो मिथ हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये सही है या गलत है.
2: बहुत अच्छा, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास जाने में फायदा ही है. नहीं, और अच्छा साइकेट्रिस्ट आपको ऐसी दवाई नहीं देगा. इफ यू डोंट नीड, ही विल टेल यू. क्योंकि आपके स्टेज परफेक्ट है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये दो तीन और स्टेप्स अपनाई है, और अगर आवश्यकता है तब ही वह देंगे. दूसरी बात, जो मेडिसिन में हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, एक्चुअली दिक्कत कहां होती है पता है, कि भाई सचमुच जो साइकेट्रिक, केवल डिप्रेशन और सारी की सारी साइकेट्रिक बीमारियों को आप देखो, तो अगर ठीक से इलाज किया जाए शुरू में तो 80% बिल्कुल ठीक हो जाते. लेकिन जो 80% ठीक हो गए, वो किसी को नहीं बताएंगे कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया या मैं ठीक हुआ. ही विल नॉट टेल अ सिंगल पर्सन.
1: But why? This is again.
2: That's like my thought of a stigma.
1: Belief system.
2: और वो जो 20% जो सिर्फ ठीक नहीं हुए ना, उसी को हम बार बार देख रहे हैं. ये तो ठीक नहीं हो, देखो 6 साल से दवाई ले रहा है, 10 साल से ले रहा है, ठीक नहीं हुआ. इसलिए हमें लगता है कि साइकेट्रिक मेडिसिन आर हैबिट फॉर्म. अगर प्रॉपरली ली जाए एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत लंबा नहीं लो, 1 साल भी, 1.5 साल लेनी पड़ती है वास्तव में कई बार. उतना समय आप लो तो नो, इट्स नॉट एट ऑल हैबिट फॉर्मिंग.
1: जी,
2: इवन इन ओल्ड एज समटाइम आई से इवन इफ यू हैव टू टेक इट लॉन्गर डोंट वरी, क्योंकि और उसकी कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं है.
1: अच्छा, और इतनी यंग एज में भी? हाँ,
2: नहीं, यंगर वंस को हम कहेंगे वी टेक इट फॉर अ शॉर्ट वाइल, लंबा नहीं हो,
1: लेकिन लेना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
2: लेना ही चाहिए.
1: और ओवर इंटेलिजेंट लोगों के लिए, यू नो, लाइक चलते चलते हम ये बात करना चाहेंगे कि ओवर इंटेलिजेंट यूथ, ओवर इंटेलिजेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, वी कैन डू इट, वी कैन हैंडल एवरीथिंग. And then when they're not able to handle, जब नहीं हो पाता तब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है. How to?
0: They are not being realistic. They are trying to be perfectionist, which is not possible. You know, हम एक aim रख सकते हैं, but we have to accept everything that happens on the way. हम कई बार अपनी गलती को नहीं accept कर सकते कि हमारे से गलती कैसे हो सकती है, हमें कम marks कैसे मिल सकते हैं, ये possible ही नहीं है. So ये मतलब, you know, to make yourself very tight. Hey, I am perfect. This is not possible. It will only make my life difficult. Agar hume perfection achieve karni hai, then I can be perfect in my state of mind. That's

0: फ्लेक्सिबल, क्योंकि उस पर कोई और सिचुएशन का कंट्रोल नहीं है. मेरे एम पर, मेरे जो गोल पर है, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, माई फैमिली, माई सिचुएशंस, माई ओन हेल्थ, बहुत सारी बातें. लेकिन मेरी स्टेट ऑफ माइंड इज दी ओनली थिंग जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. सो इफ आई रियली वॉन्ट टू एम फॉर परफेक्शन, आई एम देयर. उससे क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर कोई भी गोल अचीव हो या नहीं हो, आई विल स्टिल बी हैप्पी. एंड आई वॉज अचीविंग माई गोल ओनली टू बी हैप्पी. सो इफ आई कैन बी हैप्पी विदाउट रियली रीचिंग देयर,
1: okay.
0: Where's the damage done? I'm still happy.
1: Yes.
0: So the whole aim was to be happy.
1: Yeah.
0: But I thought I'll be happy only after reaching there. But I can be happy without reaching there. And I can be happy while going there.
1: In the process, so, actually, I'm happy. तो डॉक्टर साहब, एक जो हमारे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जितने भी लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, एक बात जो सामने आई यूथ के लिए जो थी कि अचीवमेंट की, दूसरा है मोहब्बत, प्यार, रिलेशनशिप्स. यू नो, नेक्स्ट कड़ी में, नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर उस पर बात करेंगे कि मेजर डिप्रेशन का कारण जो यूथ में है वो एक है कि प्यार में धोखा, या प्यार में अचीव ना कर पाना, या फिर प्यार ना मिल पाना जो वो सोच रहे हैं. एंड व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ लव एक्चुअली, यू नो, एंड रिलेशनशिप्स. तो आज हमने अचीवर्स की बात की और ये बात सामने आई कि गोल रखा जाए, गोल एक बड़ा होना चाहिए सामने, लेकिन जो आज जिस सिचुएशन में है वो रियलिटी भी हमारे सामने होनी चाहिए, उसे रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. डिप्रेशन एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम और आप रूबरू होते हैं, लेकिन इस पूरे सफर में हम ये जान रहे हैं कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते. आज अचीवर्स की बात की, अचीवमेंट की बात की, अचीव करना चाहिए, एम्स होने चाहिए, बड़े गोल्स रखिए, लेकिन आज अपनी सच्चाई जो है उससे भी वाकिफ रहिए. हमने आपसे वादा किया अगली कड़ी में मोहब्बत को लेकर आएंगे कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से मोहब्बत को देखती है, किस तरह से प्यार के रिश्तों को देखती है, और किस तरह से जब उनमें असफल हो जाती है तो डिप्रेशन की तरफ बढ़ सकती है, कैसे उससे निकल सकते हैं, इसके बारे में अगली कड़ी में बात करेंगे. लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: मन का पंछी बन के कम कम डोलू रे।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

फिर कहाँ तक चले, हाय हाय फिर कहाँ तक चले। जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: श्री अरविंद स्कॉलर, आलोचक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, कवि, योगी और ऋषि, इन सभी का एक अलौकिक मिशन थे। वे भारतीय समाज को संस्कार और आध्यात्म का आधार देकर मजबूत करना चाहते थे। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो व्यक्तियों को उनके वास्तविक चित्त से जोड़ सके। उनकी प्रतिभाओं में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने के अद्वितीय साहस का समावेश भी था। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को हुआ था। दिन खास था क्योंकि 75 साल के बाद देश को इसी दिन आजादी मिली थी। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र को हिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। यदि वो ऐसा करने में समर्थ हो या इसे छोड़कर कोई और उपाय न बचा हो। उन्होंने अपने विचारों को वंदे मातरम और नवशक्ति अखबार का संपादन करते हुए लोगों तक पहुंचाया था। उनके उग्र विचारों ने गोरी सरकार की दमन नीति में बाधा डाली और उन्हें राजद्रोही बना दिया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ। पांडिचेरी में एकांतवास के दौरान उनका सार्वजनिक रूप से राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना छूट गया, पर गुप्त रूप से उन्होंने आंदोलन से संबंध बनाए रखा। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रबल होने पर भी उनका जोर इस बात पर रहा कि क्रांति की भावना जागृत रहे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को एक अभूतपूर्व बल प्रदान किया था।
2: अरे बाप रे, काका देखना।
3: अरे दिवाली की तैयारियां चल रही हैं भैया, बच्चे लोग पहले ही से फटाके फोड़ने लग गए।
4: दिवाली आने के पहले ही फटाके फूट रहे हैं।
2: तरतिया, आज रात तुम्हारा ढाबा ना बचेगा काका।
5: मेरा ढाबा क्या अंग्रेजी हुकूमत है।

0: बात करते हो?
1: अरे काका, हमने तो सुना है कि देश को आजाद करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े थे।
0: अरे तुम लोगों को तो सब आधा अधूरा पता है, और तुम लोग तो चट्टान तोड़ने वाले छोटे मोटे बमों से ही डर जाते हो, डरपोक कहके।
2: अरे विष्णु, तेरा टेप रिकॉर्डर बंद कर दे, पटर पटर कर रहा है कब से। मैं शांति अच्छी नहीं लगती क्या तेरे को?
3: हाँ काका,
0: पता है हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए ये बम और बंदूक तो खिलौने की तरह होती थी।
3: हाँ काका, ये बात तो है।
1: सही बात है।
0: अच्छा छोड़ो भाई, ये बताओ कि तुम लोग आ कहाँ से रहे हो और जा कहाँ रहे हो?
1: बता भाई।
2: अरे काका, वही चक्कर है, इधर से आओ उधर जाओ, उधर से आओ इधर जाओ।
4: अरे काका, मैं तो कई बार मार लेकर पांडिचेरी गया हूँ, और मैंने अरविंद आश्रम भी देखा है काका।
0: अरे वाह, पांडिचेरी, अरविंद आश्रम। अरे अरविंद घोष तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे।
2: अरे वाह काका, आपके ढाबे पे आने का यही तो मजा है, हर बार एक नए क्रांतिकारी के बारे में सुनने को मिलता है। आप तो सुनाओ काका।
1: हाँ सुनाओ काका।
2: लेकिन ध्यान रखना, इस बार हर बार की तरह रुलाना मत मेरे को।
1: तू भी यार।
0: नहीं बेटा, नहीं नहीं, वो तो हम इस बहाने याद कर लेते हैं, उन्हें प्रणाम कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। अरे वो तो तुम लोग आ जाते हो, मुझे छेड़छेड़ के सबरी बातें पूछ लेते हो, वरना कौन सुनता है।
2: अरे कोई सुने या ना सुने, अपने को क्या, हम तो सुनते हैं ना। अरे आपका ढाबा खींच ही लाता है हमें।
0: हाँ तो सुनो बेटा, अरविंद घोष बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इतने होशियार थे कि उनकी होशियारी से अंग्रेज भी चमत्कृत हो गए थे। उनके पिता तो उन्हें सरकारी अफसर बना देना चाहते थे।

0: एक होशियार बेटे से पिता की ये अपेक्षा उचित ही थी, पर बेटा जब अरविंद घोष हो तो इस अपेक्षा का पूरा होना कहां संभव था। भारत मां की गुलाम दशा हरदम अरविंद के मन को व्यथित किए रहती थी। भारत मां की इस कुशाग्र संतान के मन में क्रांति की लहरें उठने लगी थी।
1: अरविंद, मैं तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हूं और चाहता हूं कि तुम इंडियन सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठो। तुमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। अंग्रेजी के साथ साथ लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच भाषाओं पर भी तुम्हारा अच्छा अधिकार है। तुम्हारा चयन आसानी से हो जाएगा।
2: हाँ, जानता हूं, पर मैं अंग्रेजों की गुलामी के बंधन में नहीं बंधना चाहता।
1: गुलामी का बंधन? इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेजी राज की सबसे बड़ी नौकरी है। उसकी आन बान और ठाट बाट का कोई मुकाबला नहीं। राज करोगे राज।
2: माफी चाहता हूँ पिताजी, पर मैं ICS की परीक्षा में ना बैठूंगा। एक हिंदुस्तानी होकर अंग्रेज को हिंदुस्तान पर राज करने में मदद करूं, ये मुझसे ना हो सकेगा।
1: ये मेरा यानी तुम्हारे पिता का आदेश है। क्या पिता के आदेश की अवहेलना करोगे?
2: पिता के आदेश की अवहेलना भला मैं कैसे कर सकता हूँ।

0: धर्म संकट था अरविंद के सामने, एक तरफ देश और दूसरी ओर पिता। कहा करूं, कित जाऊं? परीक्षा के लिए आवेदन करने का समय कम बचा था। बुद्धिमान अरविंद बड़ी से बड़ी दुविधा से पार पाने में समर्थ थे। आवेदन कर दिया, सफलता में कोई संदेह न था।
1: अरे काका, अरविंद घोष अगर अंग्रेजी राज में अफसर बन गए थे तो अभी तो आपने कहा था कि वो क्रांतिकारी थे।
2: अरे सुनो तो सही, होशियार तो वो थे ही। पिता की बात रख ली, बहुत अच्छे नंबरों से आईसीएस का इम्तिहान पास किया, मगर घुड़सवारी का इम्तिहान भी पास करना बहुत जरूरी था। अरविंद जानबूझकर उस इम्तिहान के लिए देर से पहुंचे, नतीजा अंग्रेजों ने उन्हें फेल कर दिया।
3: अरविंद बेटे, आईसीएस तो बन नहीं पाए, अब क्या सोच रहे हो?
4: पिताजी, बड़ौदा के राजा मुझे अपना निजी सचिव नियुक्त करना चाहते हैं।
3: ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तुम्हारे जाने का शीघ्र इंतजाम कर

0: बड़े बड़े नेता लोग अंग्रेजों का विरोध कर तो रहे हैं।
1: प्रार्थनाओं और हाथ जोड़ने से भला कोई देश को आजाद करा सकता है? आजादी मिलती है बमों से, बंदूकों से, समझे?
0: खतरनाक रास्ता है भैया।
1: और उस पर तुम चल रहे हो।
0: क्या मतलब?
1: पगले, तुम्हारा बड़ा भाई होकर छोटे भाई के बारे में क्या इतना भी ना जानूंगा?
0: तो आप सब जानते हैं।
1: हाँ, कि तुम क्रांति के खतरनाक रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हो, पर क्या इसका परिणाम जानते हो?
2: मौत।

अरविंद और वारेंद्र दोनों भाई एक पिता की दो संतानें क्रांति पथ के पथिक बन चुके थे। पिता ने जिस उद्देश्य से दोनों पुत्रों को ऊंची शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी वो अब पूरा न हो सकता था। देश की आजादी के लिए बलिदान ही लक्ष्य था दोनों भाइयों का। पिताजी की उम्मीदों को लेकर भी उनमें बातें होती।

0: पिताजी के सपनों का क्या होगा?
1: मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भैया, जबकि मैं जानता हूँ कि आप खुद उसी रास्ते पर हैं।
2: अरे तो बड़े भाई की जासूसी करते हो?
1: आपका छोटा भाई हूँ आखिर।
2: पिताजी मुझसे नाराज होंगे कि छोटे भाई को भी बिगाड़ दिया।
1: नहीं भैया, उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनकी दो दो संतानें भारत माता की सेवा कर रही हैं।
3: अंग्रेज सरकार ने बंगाल को दो टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र रचा, जिसके खिलाफ सारा बंगाल सुलग उठा। अरविंद घोष राजा साहब की नौकरी छोड़ बंगाल लौट गए। कलकत्ता के निकट यादवपुर के राष्ट्रीय महाविद्यालय में अरविंद घोष प्राचार्य बन गए। साथ में वंदे मातरम नामक अखबार का संपादन भी करने लगे। पर ये बाहरी चेहरा था, असल में तो अरविंद घोष सशस्त्र क्रांति दल का न सिर्फ नेतृत्व कर रहे थे, वरन नौजवानों को भी इसके लिए प्रेरित और दीक्षित कर रहे थे।

0: साथियों, अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। इनसे प्यार से नहीं, मार से निपटा जा सकता है।
1: लेकिन दादा, मार के लिए हथियार चाहिए।
2: दादा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
1: दादा, ये हेमचंद्र दास है, हमारे ही पथ का राही।
0: स्वागत है। बोलो हेमचंद, क्या कहना चाहते हो?
2: हथियारों के लिए हमें आत्मनिर्भर होना होगा। यहाँ वहाँ से छुटपुट हथियार मंगा कर हम कब तक लड़ सकते हैं?
0: ठीक कहते हो। तुम्हारी राय में क्या करना चाहिए?
2: हमें खुद ही हथियार बनाना सीखना होगा।
0: पर हमें सिखाएगा कौन? फ्रांसीसी और रूसी विशेषज्ञ।
2: पर दादा, वो हमें क्यों सिखाएंगे?
0: उसकी चिंता मत करो। श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक सावरकर विदेश में ही हैं। वो फ्रांसीसी और रूसी विशेषज्ञों की व्यवस्था करेंगे। पर
2: क्या जाना?
0: इसके लिए बहुत से धन की आवश्यकता होगी। वो कहाँ से आएगा?
2: उसकी चिंता ना करो, वो मैं देख लूंगा।
3: हेमचंद्र ने पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा बेच दिया और इस तरह धन जुटाकर जा पहुंचा विदेश बम बनाने का प्रशिक्षण लेने।

0: हथियार बनाने में आत्मनिर्भर होना सशस्त्र क्रांति के लिए बेहद आवश्यक था। बाहर से हथियार मंगाना खर्चीला तो था ही, खतरनाक भी था, पर देश में हथियार बनाना सीखने वाला कोई नहीं था। देश से बाहर जाने की राह में कई कठिनाइयां थीं। सबसे बड़ी कठिनाई थी धन की, जो बहुत अधिक लगना था। फिर प्रशिक्षण के लिए कुशल व्यक्ति की तलाश।
1: हेमचंद, तुमने बम बनाने की पूरी ट्रेनिंग कर ली है
2: क्या दादा? कहिए तो आप पर ही बम चलाकर दिखा दूं।
1: अरे नहीं, डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं चलाने की नहीं, बम बनाने की बात कर रहा हूँ।
2: इतना जोरदार बम बनाऊंगा कि जब फटेगा तो वायसराय माय कुर्सी के सीधे इंग्लैंड की रानी पर गिरेगा।
1: बाखू,
0: हथियार बनाना तो सीख लिया, पर उन्हें बनाने के लिए जगह की तलाश थी, धन भी काफी लगना था। बिना इन दो चीजों के सारा प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाता। सभी साथी इन कामों में जुट गए। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। धन भी इकट्ठा हुआ और स्थान की तलाश भी पूरी हुई।
3: दादा, अब देखना होगा एक सुरक्षित स्थान जहां बम बनाए जा सके, यानी एक कारखाना।
1: सवाल फिर धन का है।
3: चिंता ना करें दादा, हमारे साथियों ने बहुत सा धन जुटा लिया है, अभी का काम चल जाएगा।
1: बात की देखी जाएगी।
2: तो दादा, स्थान की तलाश प्रारंभ करें?
1: तलाश कर ली है। मुरारी पुकुर का बगीचा।
0: कलकत्ता के मुरारी पुकुर बगीचे में बम कारखाना स्थापित हो गया। अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से प्रतिशोध लेने की योजनाएं बनने लगी और क्रियान्वित भी होने लगी।

कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने किंग्सफोर्ड के धोखे में एक अंग्रेज वकील कैनेडी के परिवार पर बमों से प्रहार कर दिया।

0: अफसोस है कि किंग्स फोर्ड बच गया।
1: हमारे दोनों साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
2: दादा, मुझे खबर मिली है कि पुलिस घर घर जाकर तलाशी ले रही
0: है। आप उन्हें बम से उड़ाओ और वो तलाशी भी ना ले। साथियों, हमारे लगातार हमलों ने पुलिस और सरकार की नींद हराम कर दी है। वो हमें जगह जगह सूंघते फिर रहे हैं। हेमचंद
3: जी, दादा,
0: अपने सभी साथियों से कह दो कि सतर्क रहें।
3: दादा, वो सभी सतर्क हैं।
1: और मेरा ख्याल है कि हमें हमले बढ़ा देने चाहिए।
0: रणनीति कहती है कि हमला तब करो जब दुश्मन गाफिल हो। कुछ समय के लिए हम सभी को भूमिगत होना पड़ेगा। जब वो हमें ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, निराश होने लगेंगे, तब हम दोबारा हमला करेंगे।
1: वाह दादा, बढ़िया प्लान है।

क्रांतिकारियों और पुलिस में लुका छिपी का खेल जारी था। मुखबिरों का जाल बिछा रखा था अंग्रेजी सरकार ने। रोज नई खबर और उस खबर पर रोज पुलिस नए छापे डालती। क्रांतिकारी पुलिस के हत्थे न चढ़ते, पर उनकी कार्रवाइयों की गति धीमी हो गई थी, जिससे क्रांतिकारियों में भी बेचैनी थी। अरविंद कुशल रणनीतिज्ञ थे, इसलिए खूब समझते थे कि चोट कब, कहां, किस पर और किस समय की जानी चाहिए।

शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पे कचार पे ये किया मुझे नहीं, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, देश पे समाज पे।

0: दादा, हमारा प्लान कामयाब रहा।
1: हमारे बमों ने अंग्रेज सरकार को झिंझोड़ दिया है।
0: हम एक हिंदुस्तानी की जान के बदले 100 अंग्रेजों की जान लेंगे, तभी इन्हें हमारी ताकत का एहसास होगा
2: और वो अधिक सतर्क हो जाएंगे, ये मत भूलना।
3: और अंग्रेज सरकार बेहद सतर्क हो गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पहले ही अंग्रेजों के हत्थे चढ़कर फांसी चढ़ा दिए गए थे। एक दिन अंग्रेज सरकार मुरारीपुर बगीचे में स्थित बम कारखाने का पता लगाने में सफल हो गई। अरविंद घोष अपने साथियों सहित पकड़ लिए गए और अब वे सभी जेल की सीखचों में बंद थे। सभी पर मुकदमा चला।
4: झूम बदलियां, झूम झूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही। झूम झूम बदलियां, झूम झूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, लड़ रहा

0: नरेंद्र, अंग्रेज बड़े होशियार हैं, फैसला पहले लिख लेते हैं और मुकदमा बाद में चलाते हैं।
1: तुम कारा इंडियन गोरा लोग पर बम फेंकता है।
2: और ये सुनिए दादा, हम तुमको फांसी पर लटका देगा, अंडरस्टैंड?
0: फर्मी लॉर्ड, अंग्रेज सरकार सारी दुनिया में खुद को इंसाफ पसंद कहता फिरता है।
3: ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम केस चलाता है।
2: तुम देखेगा हम कितना अच्छा नाटक खेलता है। अभी हम कोर्ट कोर्ट का खेल खेलता है, बाद में फांसी फांसी का खेल खेलेगा।
0: दादा सही है।

न्यायप्रिय दिखने के लिए सजा के पहले मुकदमे का नाटक जरूरी होता है। अंग्रेज सरकार इसमें माहिर थी। नाटक चल रहा था, ऐसा नाटक जिसके अंतिम सीन के डायलॉग पहले ही लिखे जा चुके थे। जेल में क्रांतिकारी उस नाटक का नाटक खेलते। जेल की सीखचों के पीछे ये बढ़िया मनोरंजन था जिसका आनंद ये मतवाले खूब उठाते।

पास है बबूल है हाथ के दुकूल है, पास है बबूल है हाथ के दुकूल है। भाई भी

0: मिलॉर्ड, अरविंद घोष एक खतरनाक मुजरिम है। ये अंग्रेजों का दुश्मन है और दूसरे नौजवानों को भी अंग्रेजों के खिलाफ भड़काता है।
1: मिलॉर्ड, मैं मिस्टर नॉर्टन से गुजारिश करूंगा कि बिना सबूत मेरे मुवक्किलों पर इल्जाम ना लगाएं।
0: वकील सफाई, मिस्टर चित्तरंजन दास को मालूम होना चाहिए कि मैं मिस्टर नॉर्टन सरकारी वकील हूँ,
1: इसलिए अदालत में बिना सबूत कुछ भी कहने को आजाद हूँ।
0: मैं सबूत के तौर पर एक पत्र अदालत के सामने पेश कर रहा हूँ।
1: ओ, मुझे लगा कोई पिस्तौल या बम पेश करेंगे।
0: ये पत्र अरविंद घोष के नाम उनके छोटे भाई वारिन घोष ने लिखा है।
2: मैं हिंदुस्तान के सारे छोटे भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि बड़े भाइयों को पत्र ना लिखे, वरना सरकार उन्हें खतरनाक मुजरिम मान सकती है।
0: मिस्टर चित्तरंजन दास, इस पत्र में वारिन ने लिखा है अभी मिठाइयाँ बांटने का समय है।
1: हो सकता है मिलॉर्ड, मिस्टर किंग्सफोर्ड की जान बचाने की खुशी में वारिंद्र ने ऐसा लिखा हो।
0: ये सभी खतरनाक मुजरिम हैं जो किंग्सफोर्ड की जान लेना चाहते थे। यहाँ मिठाइयाँ का मतलब है बम से।
3: क्या बात है, मिठाइयाँ और बम।

0: मिस्टर मार्टिन ने अरविंद घोष और उनके साथियों को सजा दिलवाने के लिए अनाप शनाप दलीलें दी। अरविंद घोष का बचाव कर रहे थे उस समय के प्रख्यात वकील चितरंजन दास। मिस्टर मार्टिन ने अपना पूरा जोर अरविंद को खतरनाक मुजरिम और हत्यारा साबित करने में लगा दिया। अरविंद के बचाव में चितरंजन दास ने बचाव करते हुए कहा,
1: मिलॉर्ड, मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि उस समय जब ये विवाद खामोशी में डूब जाएगा, उस समय जब ये व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाएगा, तो एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाएगा। इसकी वाणी न केवल भारतवर्ष में वरन सारे संसार के कोने कोने में ध्वनित और प्रतिध्वनित होती रहेगी।

0: और बहस के दौरान वकील सफाई का कहा एक एक शब्द कालांतर में सही साबित हुआ। अरविंद घोष पर कोई जुर्म साबित न हो सका और अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर उन्हें निर्दोष घोषित करना पड़ा। चितरंजन दास के कहे शब्द अरविंद के मस्तिष्क में गूंजते रहे और उन्हें मथते रहे।
1: ये देश निश्चित ही एक दिन गुलामी से मुक्त होगा। मुझे मानव कल्याण का पथ खोजना है। खोजना है वो पथ जहां जगत मात सुख शांति का अनुभव करे।
0: और अरविंद घोष ने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया जिसे आज हम अरविंद आश्रम के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1872 को इस धरती पर अवतरित हुई ये आत्मा 5 दिसंबर 1950 को धरती से विदा हो गई। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड में से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी इज विद अस। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति और आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि जैसे एक सपोजिंग मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं अपना टूटा हुआ हाथ लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर मुझे लेक्चर दे कि बारिश में गाड़ी क्यों चलाया, ऑयल गिरी होती है सड़क पर, इतनी रात को क्यों किया, मैं वो इरिटेट हो जाऊंगा कि भाई साहब आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर होंगे, मुझे आपके पास इलाज नहीं कराना है, मैं जा रहा हूं। तो हम लोग भी यही करते हैं कि बच्चा जब दर्द लेकर आता है उसको उसकी बात सुनने के बजाय उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं।
2: अब या तो है कि बच्चा अपना दर्द लेकर आता है, मतलब बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम में है, उससे कोई गलती हुई है, तो फिर उसकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, फियर में है, हर्ट में भी है, वो पेन लेकर आ रहा है और हम उस टाइम जजमेंटल हो जाते हैं। अब वॉट अगर बच्चा कोई पेन में नहीं है, वो सिंपली अपनी बात लेकर आया है और वो बात उसके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल राइट है, और अगर बच्चा अपनी राइट बात, और ये सिर्फ बच्चा नहीं, एनीबडी, मतलब कोई भी, इट कैन बी हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, बॉस, कोलीग, एनीबडी, जब कोई अपनी राइट बात हमारे सामने रखे और हम उसको रॉन्ग कहें, तो कॉन्फ्लिक्ट हैज स्टार्टेड। वी हैव टू अंडरलाइन टुडे आज इस बात को कि अगर खुश रहना है और हम चाहते हैं कि दूसरे भी खुश रहे, तो ये राइट एंड रॉन्ग सारा दिन जो हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, बट हु इज राइट इन दिस, यू नो, कभी डिस्कशन में भी बैठते हैं बट फाइनली हु इज राइट, बिकॉज वी ऑलवेज फील कि एक राइट होना चाहिए ना फाइनली, तो वो एक राइट को ढूंढो कि वो एक राइट कौन सा है। आज मुझे अपनी सोच में और अपनी वोकैबुलरी में भी, शब्दों में भी एक लाइन को चेंज करना है, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, ये हटाकर अब हमें जो लाइन लानी है वो ये, वी आर डिफरेंट, हमारी सोच अलग है, आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन अलग है, आप भी राइट है, अपनी तरफ से आप भी राइट है, मैं भी राइट, ये भी नहीं कि अच्छा ठीक है आप राइट मैं रॉन्ग, हर बात में हमें कईयों को आदत पड़ जाती है, ठीक है आप राइट मैं रॉन्ग, जिनके अंदर हीन भावना होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो बहुत जल्दी कहेंगे दूसरा राइट मैं रॉन्ग, जिसके अंदर
1: मैं तो हूं ही गलत, मैं तो पैदा ही गलत हुई थी,
2: अंदर भी फील करते हैं कि मैं रॉन्ग, एंड ऑल द अदर वन, ठीक है आप रॉन्ग मैं राइट, ईच वन एवरी टाइम इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज ऑलवेज, ये तो मतलब आप कोई भी सिचुएशन में डाल दीजिए। जब काउंसलिंग के लिए दो लोग आते हैं तो काउंसलिंग के टेक्निक में क्या होगा, हम पहले एक की बात सुनेंगे, फिर एक को कहेंगे आप थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, हम दूसरे की भी बात सुन लेते हैं क्योंकि वो अकेले में अपनी बात अच्छी तरह से कहेंगे। पहले जब पहली बार ये करना शुरू किया तो जो व्हेन आई हर्ड द फर्स्ट पर्सन आई वाज लाइक, तो बिल्कुल राइट बोल रही है, दिस वाइफ इज एब्सोल्युटली राइट, वो जो कह रही है, उसके हस्बैंड बहुत तंग करते हैं, हस्बैंड ऐसे हैं, उसको समझते नहीं, तो उनकी बात सुनने के बाद आई वुड प्रिपेयर माई माइंड कि शी इज एब्सोल्युटली राइट, अब ये जब दूसरे आएंगे अंदर मुझे उनको बताना है तो उनको क्या क्या चेंज करना है अपने अंदर। लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति आके बैठे और वो अपनी बात बोलना शुरू करे, तो लाइक ये भी तो बिल्कुल राइट है, तो व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट, वेयर इज द प्रॉब्लम, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है, प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम ये, इनको उनका नजरिया नहीं दिखाई देता और इसको उसका नजरिया नहीं दिखाई देता। काउंसलर का रोल सिर्फ ये है कि इन दोनों को जो ऐसे देख रहे हैं, जिनको सिर्फ अपना राइट दिखाई दे रहा है, इनको थोड़ा सा ऐसे करना है, इसका पर्सपेक्टिव, मतलब इसकी सोच उनको दिखानी है और उनकी सोच इनको दिखानी है, बाकी चीज वो करेंगे दोनों, विच मीन्स एम्पैथी, इसको हम कहते हैं एम्पैथी, जब हम कहते हैं अपनी पोजिशन से हटके अपने आप को दूसरे की पोजिशन में रख के फिर देखो कि उसको क्या दिखाई देता है। आप उस तरफ बैठे हैं, मैं इस तरफ बैठी हूँ, मेरे लिए जो राइट है वो एक कम्प्लीटली अलग सीन है, एंड फॉर मी दिस इज 100% राइट, 100% ट्रूथ, राइट भी नहीं, 100% ट्रूथ, एंड आपका ट्रुथ एक कम्प्लीटली अलग साइड है. अब हम इस चीज पर जीवन भर आर्ग्यू कर सकते हैं,
1: धूलती चेहरे पे और आईना साफ करते हैं.
2: बिल्कुल. अब करना क्या है इस रिश्ते में कि दोनों में से एक अपने पोजीशन से हटके
1: दूसरे की
2: पोजीशन में जाए और फिर देखे और फिर कहेगा अच्छा यू आर ऑल्सो राइट. अब कई बार ये होगा कि हम दूसरे की पोजीशन देख ही नहीं पाते हैं. मुझे क्योंकि इफ आई एम स्टक हियर एंड आई एम स्टक टू दिस चेयर एंड यू आर स्टक टू दिस चेयर देयर इज नो वे आई कैन सी दिस.
1: अब मैं जो कैमरे से आपको देख रहा हूँ और आपके पीछे क्या है सिर्फ मैं देख सकता हूँ.
2: अब मेरे को क्या करना होगा, अब मुझे क्या करना होगा,
1: या तो
2: यहाँ आना पड़ेगा. अब कई बार मैं नहीं उठकर वहां सकती, विच मीन्स मुझे आपकी सोच समझ नहीं आती, आपको क्या दिखाई दे रहा है मुझे समझ ही नहीं आता. ये भी हो सकता है कि जीवन भर मुझे आपकी बात, वो बात किसी एक टॉपिक पे मुझे आपकी बात, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी ओपिनियन समझ ही नहीं आए और आपको मेरी समझ ना आए, विच मीन्स हम अपनी अपनी कुर्सी से कम्प्लीटली अटैच्ड है. ऐसे टाइम पर हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, सिर्फ एक. आई कैन नॉट सी व्हाट यू कैन सी, यू कैन नॉट सी व्हाट आई कैन सी, बट आई ट्रस्ट दैट व्हाट यू आर सेइंग इज द ट्रूथ, दैट्स ऑल. मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका, आपको नहीं समझ में आ रहा मेरा, इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो आपके लिए संपूर्ण सत्य है और संपूर्ण सही है. ये रिस्पेक्ट चाहिए. मुझे नहीं दिखाई दे रही आपकी बात, मैं कितना भी ट्राई करूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों. यू नो समटाइम्स वी ट्राई टू थिंक फ्रॉम द अदर पर्सन साइड, क्या सोचकर ऐसा किया होगा, उस टाइम ऐसा नहीं सोचा, अच्छा ऐसा सोचा, बट कैसे ऐसा सोचा, मतलब दूसरे की सोच नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आए.
1: सोचे भी क्यों,
2: सोचे दूसरे को समझने के लिए, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू.
1: ठीक है, दूसरे को समझने का भी एक, उसकी भी एक लिमिट होती है, दूसरे को समझने की,
2: वेरी इंटरेस्टिंग,
1: दूसरे को गलत समझने के लिए सोच रहे हैं.
2: ये अगर हम सारा दिन में ये भी करके देखें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कई बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, ट्राई टू गेट इन टू द अदर पर्सन माइंड.
1: अभी मैंने ऐसे उंगली की थी तो मैंने सोचा पीछे के कैमरे में मेरा शायद हाथ आए तो आपको कवर ना हो जाए, तो कैमरामैन ने ये सोचा कि मैंने बोला कि उसके भरोसे, भगवान के भरोसे,
2: तो
1: मैंने उंगली उठाई यूं.
2: हाँ.
1: कि आवाज प्लेन जा रहा है, प्लेन की तुम्हें आवाज आ रही है के ऊपर, और मैं बार बार ऐसे दिखा रहा हूँ, तो वो समझ रहे आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि भगवान के भरोसे, भगवान बता रहे हैं वो.
2: तो
1: कौन राइट है, कौन रॉन्ग है,
2: अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन. तो ये सारा दिन में हम करके देख सकते हैं कि अपनी सोच से दूसरे को नहीं एनालाइज करें, दूसरे के मन में घुसकर देखने की कोशिश करें कि वो कैसा सोचता होगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम.
1: लेकिन मैं तो यहाँ हंस दिया.
2: हाँ.
1: लेकिन फिर मैं ये भी सोच सकता था ना, मैं यूं यूं बता रहा हूँ तुमको सुनाई नहीं देता कि ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है, ये का मतलब कि मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं तो एयरक्राफ्ट सुना रहा हूँ तुमको, मतलब झगड़ा शुरू हो सकता है किसी भी बात, और मैं हंस दिया.
2: क्योंकि आपने कहा अच्छा आपको ये लगा, बट एक्चुअली तो मैं ये कह रहा था, सिंपल.
1: नहीं, मुझे फनी लगा कि मैं एयरक्राफ्ट बता रहा हूँ, वो भगवान बता रहे.
2: लेकिन वो सही है ना, वो सही है ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व.

0: पनिशमेंट का जो तरीका है जो हम बच्चों के साथ भी करते हैं, होमवर्क नहीं किया बेंच पे खड़े हो जाओ, ऐसे कान पकड़ के क्लास के बाहर खड़े हो जाओ. लेट मी आस्क माई सेल्फ व्हाट इज द इंटेंशन, लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं हम? चाहते हैं कि जो आज हुआ, जो इस बच्चे ने आज किया या जो मैंने आज किया, वो दूसरी बार फिर से नहीं होना चाहिए. यही चाहिए ना, लक्ष्य तो क्लियर है ना. व्हाट हैपेंड शुड नॉट हैपन अगेन. अब अगर वो छोटी बात है कि होमवर्क नहीं किया या कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसे कर दिया, उसमें हमने मेथड कौन सा यूज किया? फियर, कि ये करोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा होगा. इसलिए इस डर से नहीं करो कि अगर होमवर्क नहीं करके आओगे तो बेंच पे खड़ा होना पड़ेगा एक घंटा. ये एक बार इनके साथ हो जाए तो इस डर से ये नेक्स्ट टाइम नहीं करके आएंगे. इवन उन चीजों में वो डर वाला मेथड यूज नहीं होता, क्योंकि आत्मा की ताकत, हम अपने आप को इमेजिन करें, अगर हम एक बहुत बड़े ग्रुप में बैठे हैं, एक मीटिंग चल रही है, हमने कुछ गलत बोल दिया और जो मीटिंग का लीडर है हमें कहे कान पकड़ के खड़े हो जाओ एक घंटा सबके सामने, या हॉल के बाहर जाकर आप खड़े हो जाइए, आप मीटिंग में आपस में कैसे बात कर सकते थे इस तरह से? दिस इज इनडिसिप्लिन. आपका मोबाइल बजा कैसे मीटिंग के अंदर? इनडिसिप्लिन. प्लीज गो एंड स्टैंड आउटसाइड फॉर 1 आवर. हाउ विल वी फील? बट हाउ विल वी फील अपने लिए, एक छोटे बच्चे के लिए नहीं. अगर हमारे साथ ये एक्शन लिया जाए, ये पनिशमेंट हो कि आप कान पकड़ के बाहर खड़े हो जाइए एक घंटे के लिए, व्हाट इज द फीलिंग, क्या फील होगा उस टाइम? इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, आत्मा की शक्ति, ऐसे मुझे कैसे सब लोग देख रहे हैं, व्हाट एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरीबडी, मैं खुद कितना ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा हूं. शक्ति डाउन एंड चाहते हैं परिवर्तन अप. परिवर्तन लाने के लिए शक्ति जहां थी
1: उससे ऊंची करनी चाहिए,
0: उससे बढ़ानी है. हम क्या कर रहे हैं? लो करके नाउ चेंज, लो करके नाउ चेंज. एंड फिर कहते हैं कितना भी पनिश करो, अब तो इसके ऊपर पनिशमेंट का भी असर नहीं होता है, डिलीट हो गया है.
1: क्या है, उसको डांट डूंट के और डिप्रेस कर दिया, अब बोलते डिप्रेशन से बाहर आओ,
0: तो नहीं होगा ना, नहीं होगा. किसी भी संस्कार को, किसी भी बात को एक्सेप्ट करके, स्पेशली संस्कारों के लिए, फिजिकल चीज होमवर्क नहीं किया, ये स्टिल इजियर कि आज नहीं किया कल से करेंगे, लेकिन ये कहना कि आज गुस्सा किया कल से नहीं करूंगा, इज नॉट दैट इजी, बिकॉज इट्स अ डीप ग्रूव, एक बहुत डीप पैटर्न है जिसको मैं लेकर आया. तो जितना मैं उसके प्रति, अपने संस्कार के प्रति क्रिटिकल, गिल्ट, पनिशमेंट, मैं अपनी शक्ति को यहां से यहां लेकर आ रहा हूं.
1: क्या करना
0: है? एक्सेप्ट दैट इट इज फाइन.
1: हाउ कैन इट बी फाइन?
0: एब्सोल्युटली इट्स फाइन. ये बिल्कुल
1: मेहनत कर रहा हूँ पिछले 20 साल से.
0: हाँ,
1: टू इम्प्रूव
0: दिस संस्कार इज ओके, क्योंकि ये मेरा बहुत डीप पैटर्न है जो मैंने कैरी किया है, और बहुत सारी चीजें और बातें हुई होंगी जिसकी वजह से ये बना, अब ये है एंड इट्स फाइन. विच मीन्स ये क्यों है, क्यों मैं ऐसा हूं, ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए, ये थॉट्स नहीं चलने, फुल स्टॉप.
1: तो इम्प्रूव कैसे करें?
0: नेक्स्ट मिनट है ना इम्प्रूवमेंट. तो इसके लिए अपने को कोसना नहीं है. दिस इज इम्पोर्टेंट. इट्स फाइन, ये है, इट्स ओके, ये है, क्यों है, कैसे है, मैं बुरा हूं, दूसरों में तो नहीं है, दूसरों को मेरे इस संस्कार से कितनी तकलीफ होती है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही खत्म हो जाऊंगा, मेरा नहीं चेंज, दिस इज नॉट नीडेड. ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे ये सारे? Only depletes energy.
1: अपने आप को बद्दुआ देते रहते हैं.
0: So in one line, it's okay. It's fine, I have this संस्कार. It's a little uncomfortable for me. ये मुझे तकलीफ देता है, but ये है. It's a part of me. It's fine. Yes, it's very important.
1: आज आपसे बात करते हुए मुझे अपनी वाइज मदर की बात याद आती है. जब भी मैं बोलता था ये बच्चा ऐसे कर रहा, भाई ऐसे कर, इट्स ओके, आप भी ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएंगे. मैं हमेशा कहता था तुम कमजोर हो, बहुत कमजोर है, ना डांटती है, ना गुस्सा करती है, ना कुछ, मारो दो थप्पड़ ठीक हो जाएगा. नहीं पुत्र, ठीक हो जाएगा. आठ भाई बहन सबको एक्सेप्ट करते थे.
0: मदर का एक्सेप्टेंस संस्कार सबसे हाईएस्ट होता है. लेकिन अब हम अपने मन की मदर है. वी सेड मन बच्चा है, तो हमें इस बच्चे के,
1: ये बड़ा अच्छा पॉइंट है.
0: हाँ, हम मदर,
1: मैं अपने मन का माँ बाप हूँ.
0: तो हमने कहा मन बच्चा है,
1: तो मैं मन बच्चा है इतना

0: सिस्टम लॉ ऐसी है तो उसको ऐसे बोलना, हस्बैंड ने ऐसा किया, हस्बैंड ऐसे, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बच्चे को हम ये कह रहे हैं कि जो तुम फील कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, तुम सही हो।
1: साथ ये भी सिखा रहे हो कि तुम बार बार एक चीज को बर्दाश्त करते जाओगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी तुमको बोलने की, कभी फाइट फॉर योर राइट।
0: तो ये हमने कौन सी एडवाइस देकर वापस भेज दिया,
1: और झगड़ा करो।
0: हमने एक्चुअली, हमें लगता है कि हमने पावरफुल बना के भेजा, बट एक्चुअली हमने कमजोर बनाकर वापस भेज दिया। हम अगर एडवाइस थोड़ी भी इधर से इधर हो जाए तो उसका रिजल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। हमें लगता है हम उसको पावरफुल बनाकर उसके घर भेज रहे हैं। पावर इज नॉट हियर कि वो जो बोलेगी जो करेगी, पावर इज हियर।
1: मदर मेरी साइड लेते हैं लेकिन डैडी मेरे हस्बैंड की साइड लेते हैं,
0: एंड वो अच्छे नहीं लगेंगे। जो हस्बैंड की साइड लेंगे या जो मदर इन लॉ की साइड लेंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसमें साइड लेने की भी बात नहीं है, क्योंकि साइड भी तब ली जाए जब हम कहें अच्छा बच्चे तुम रॉन्ग हो, तुम्हारी मदर इन लॉ राइट है, वो भी तो बात राइट नहीं है। सच क्या है, तुम भी राइट हो, तुम्हारी मदर इन लॉ भी राइट है, तुम भी राइट हो, तुम्हारे हस्बैंड भी राइट है, तुम भी राइट हो, तुम्हारा बच्चा भी राइट है। अब जो आपके पास एडवाइस लेने आए हैं, सपोज आपकी डॉटर आपके पास एडवाइस लेने आई है, तो आपका रोल है बात को सुन लेना। पूरी बात पहले सुनो, अगर सुनेंगे नहीं तो सामने वाला आपको सुनने के लिए रेडी नहीं है। पहले सब सुन ले, सारा सुन ले जब तक वो अपना खाली कर ले अंदर बात, और उसके बाद एडवाइस मीन्स आप बिल्कुल सही हो। व्हाट यू आर सेइंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको तकलीफ हो रही है ना उस घर में, आपको ये सब हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल राइट हो। लेकिन एक मिनट के लिए क्या हम उनका साइड देखें कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। एक मिनट उनका देखें दृष्टिकोण। पेरेंट का रोल है या जो फैसिलिटेटर काउंसलर है उसका रोल है इनको दूसरे का पर्सपेक्टिव दिखाना कि वो भी कैसे राइट है, फिर उनको दोनों को छोड़ देना। अब वो बात को वो लोग ठीक करेंगे, थर्ड पर्सन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट चेंज रिलेशनशिप्स, वी कैन नॉट चेंज कार्मिक अकाउंट्स, ये हमारा रोल नहीं है, क्योंकि वो दो आत्माओं
1: का बात। लास्ट का क्या था, दोनों को अपना अपना,
0: दोनों को जैसे बेटी है उसको आप मदर इन लॉ का पर्सपेक्टिव दिखा के फिर आपको छोड़ देना होगा।
1: यानी कि अगर आप उसकी एक गलती बताओगे मुझे, हाँ, तो उसकी लिस्ट में मांगो, हाँ, तो वो आपकी 10 बताएगी, तो दोनों के पास लिस्ट है।
0: है, तो दोनों को ये दिखाना। सपोज बेटी कहे कि मैं सास के साथ इतना एडजस्ट कर रही हूँ, मैं ये भी एडजस्ट करती हूँ, मैं वो भी, तो फिर आप उसको बताओ आपको पता है आपकी सास आपके साथ कितना एडजस्ट करती है, वो आपकी इस बात के साथ भी एडजस्ट करती है, वो आपकी इस बात के साथ भी, उसने कितनी सारी बातें आपकी सहन की है। ये दूसरा पर्सपेक्टिव, राधा देन से अच्छा तुम इतना एडजस्ट करते हो, तुम्हारे ऊपर इतना वहां पे टॉर्चर होता है, दिस इज दिस एम्पावरमेंट। अब दोनों को दिखाकर, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट उनका है, रिजॉल्व भी उनको करना है, हम एक ही चीज सिर्फ कर सकते हैं, इनको उनका दृष्टिकोण दिखा दे और उनको ये सिखा दे कि आपकी दोनों की एनर्जी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप अच्छी थॉट क्रिएट करो, वो भी वहां से अच्छी थॉट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ये करके दोनों को छोड़ दो, द रेस्ट दे विल डू।
1: थैंक यू सो मच, लेट अस हैव गुड थॉट्स फॉर ईच अदर एंड फॉर द यूनिवर्स।
0: थैंक यू, ओम शांति।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
2: व्हेन द अदर पर्सन इज राइट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव एंड वी फील दे आर रॉन्ग, कॉन्फ्लिक्ट हैज बिकम। Two souls are different, not right or wrong. Each is always right from their perspective. Empathy means to detach your own perspective and see the situation from the perspective of the other person. This creates understanding and compassion. Even if we cannot understand the other person's perspective, let us always remember that what they are saying is the truth for them. This is the first step towards conflict resolution. Accept your negative sanskar or the sanskar of the

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कोयल हंस के मस्त करे, जब अलाप से दिल के वलवले दब जाएंगे, तबले की था।
1: शामे पुर का सजल

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

تصویر ہٹائے ہوگی ہے.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेजेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्त, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति हूँ, एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं मौन के ऊपर। 100 सवालों का एक जवाब होता है, वो होता है मौन। ऐसे हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों पर आप अपनी शब्दों की शक्ति का जो है उसको आप व्यर्थ ही खर्च करते हैं, जो वास्तव में आपकी चुप्पी की ही बातें हैं। कभी कभी आपके सबसे शक्तिशाली शब्द आपका मौन ही है, अर्थात मौन कभी कभी वाचालता की प्रतिध्वनि बन जाती है। 100 सवालों का एक जवाब मौन होता है, परंतु 1000 सवालों से घिरे

0: का एक जवाब मौत है, जो सभी सवालों से मुक्त ही नहीं कर देती, बल्कि सवाल कर रही दुनिया को मौन कर देती है। जिसके मन में नित्य सवाल ही सवाल उमड़ते उमड़ते हैं, वो अति दुर्बल मन का होगा। मन की दुर्बलता शरीर की दुर्बलता का कारण बनती है और शरीर की दुर्बलता अकाली मौत का कारण बनती है। जो व्यक्ति सवालों में घिरा रहता है, वह जरूर अकर्मण्य है, क्योंकि कर्मण्यता प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करती है। कर्मण्यता दिखाती है कि वह संतुष्ट है, संपन्न है और बेफिक्र है। जैसे कि देखते हैं कि प्रश्न के उत्तर जो होते हैं वो भी कि उसकी भी कीमत 2 वर्षों का मान है। संत तिरुपा के बारे में कहा जाता है कि उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यह सुनकर मालूम पुत्र नाम का एक दार्शनिक उसके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आया। तिरुपा ने उसके सारे प्रश्न सुने और कहा कि सारे प्रश्नों के उत्तर देने को मैं तैयार हूँ, परंतु इसकी कीमत पहले अदा करनी होगी। मालूम ने सोचा कि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई दे नहीं पाया और यह व्यक्ति कीमत लेकर यदि उत्तर दे सकता है तो कीमत अदा करने में कोई नुकसान नहीं है, अतः उसने कीमत देना स्वीकार किया। संत ने कहा कि कीमत है 2 वर्ष का समय जो तुम्हें मेरे साथ रहकर बिताना होगा और इस दौरान तुम चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, चाहे कैसी भी कष्टदायक परिस्थिति क्यों न हो। मौलिक ने यह बात भी स्वीकार कर लिया। वह 2 साल तक संत के पास रुका रहा। इन 2 सालों में उसके चरित्र में, संस्कार में और उसकी सोच में काफी परिवर्तन आया। उसे अब सुख मिलने लगा और वह यह भूल ही गया कि कितना समय गुजर गया और उसके क्या प्रश्न थे। परंतु एक दिन संत ने उससे कहा कि आज 2 साल पूरे हो गए, तुम अपने प्रश्न पूछो। मालूम ने कहा कि मुझे सारे उत्तर अनुभव हो गए, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा मालूम ने क्या किया। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया,

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं फिर से आपको स्वागत करती हूँ और हम चर्चा अपनी जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सत्यता जो होती है, सत्यता शोर नहीं मचाती। सत्य के अन्वेषकों के लिए मौन सर्वाधिक मददगार है। मौन से उन अति सूक्ष्म आवाजों व तरंगों का वो सुना जा सकता है, वो उसको पकड़ा जा सकता है जो निरंतर आत्मा को गहन गहराई से उच्चारित या संप्रेषित हो रही है। अंदर आत्मा की आवाज मौन में अस्पष्ट सुनाई देती है। आत्मा का स्वरूप शांति व शक्ति का है और शांति में टिक कर ही सत्यता की शक्ति का अनुभव व प्रयोग किया जा सकता है। सत्य की खोज में लगा पुरुषार्थी पहले स्वयं के स्वरूप का ही अनुभव कर ले, अन्यथा कस्तूरी मृग की तरह वह भटकता ही रहेगा। सत्यता व मौन में करीबी रिश्ता है, क्योंकि सत्यता शोर नहीं मचाती, लेकिन जब इसे बोलना पड़े तो यह सर चढ़कर बोलती है। सत्यता अद्वैत है, निर्विकल्प है। हाँ, संशय जो है इनके बीच संशय और भेदभाव रहित भी है। सत्यता का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु, अर्थात माया अविद्या या फरीब का आवरण हटते ही मन बुद्धि सत्यता से जो है आलोकित तो हो सकते हैं, परंतु ऐसे आलोकित मन बुद्धि पुनः अज्ञानता के अंधकार में नहीं डूब सकते। किसी की दैहिक मृत्यु होने पर परिजन राम नाम सत्य है का उद्घोष करते हैं, अर्थात यह स्वीकार करते हैं कि एक ईश्वर का जो नाम है राम का नाम, वही सत्य और वह स्मरण की ही आत्मा की गति सत्यति कर सकती है। यह गति अर्थात मुक्ति यानी कि मोक्ष एवं सदगति अर्थात जीवन मुक्ति ही आत्मा का असली मुकाम है और इस सत्य को जीवन जीते हुए यदि मनुष्य जो है मनुष्य आत्मा समझ ले तो उसके कर्म विकर्म ना बने, वह सदकर्मों की खेती करता हुआ पुण्यों की पूंजी जो है वो साथ ले जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्यवादी जो होता है अस्पष्टवादी होता है। यदि कभी मौन व्रत धारण किया हो तो अंदर से कभी यह नहीं बोलते रहना चाहिए कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। मौन एक सहज स्थिति हो न कि आयोजित हट। मौन का भाव अंदर से बना रहे, अन्यथा बलपूर्वक रखे गए मौन से आत्मा की सहज स्वरूप एवं हट स्वरूप में झगड़ा होता रहता है। यदि मन को सत्य में निवास कराया जाए तो मौन रखना नहीं पड़ता, बल्कि मौन स्वतः आ जाता है, क्योंकि मन को विकल्पों की खुराक मिलनी बंद हो जाती है। सत्य में निवास करने से विकल्प नहीं उठते, सत्य में निवास करने से हम फिजूल के कितने ही रिश्ते संबंध व संबंधों का जो ताना सिमटने लगता है और केवल सच्चे मित्र संबंधी ही संबंध बनाए रखते हैं। सत्यवादी अस्पष्टवादी होता है और वह वाद विवादों में कभी नहीं उलझता। यहाँ पर हम देखते हैं कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, ये कहावत है एक चुप और 100 सुख। अर्थात चुप रहने वाला बहुत से विवाद फसाद आदि से बचा रहता है
और सुख का अनुभव करता रहता है। यह भी कहावत है कि एक चूक 100 को हरावे, अर्थात यदि एक सच्चे इंसान के पीछे 100 झूठे पड़ जाए, सच्चे को झूठा साबित करने के लिए दलीलें दे हो और जो होता है हो हल्ला मचाए, तो सच्चे का मौन उन सबको शांत करने के लिए काफी है। यदि सच्चा व्यक्ति अपनी सफाई तर्क व समझाने प्रस्तुत करे तो झूठे उस पर भारी पड़ते हैं। सच्चे का साथ समय देता है, परंतु सत्य का सही समय आने पर ही प्रत्यक्ष होती है, और तब तक सच्चे को गलत बातों को सहन करना पड़ता है। कहावत है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। महान जो मनुष्यों के बोल उनके गुजर जाने के बाद भी दोहराए जाते हैं, उनका स्मरण किया जाता है, परंतु झूठे मनुष्य के बोल तो इशार दिए जाते हैं कि झूठे वक्ता के धुआंधार भाषण पर एक बार तालियां तो बज जाती है, परंतु श्रोताओं के द्वारा उन बातों को याद नहीं रखा जाता, अतः उनका लाभ भी नहीं लिया जाता। इसके विपरीत मंच से श्रोताओं को मौन दृष्टि देते हुए उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना व प्रेम के प्रकंपन देना उन्हें विस्मरणीय शांति की अनुभूति कराता है। ऐसे वक्ता की सुनी चुनी शक्ति श्रोताओं पर अनेक छाप छोड़ते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। हम मौन जो कर हम बातें कर रहे थे, देखते हैं हम कि गर्भ में पिछले जन्म का मौन अभ्यास का काम आता है। मृत्यु एक सत्य है, आत्मा का मृदा या मिट्टी से बनी देह को त्यागना ही मृत्यु है। मृत्यु आत्मा का

नौ जीवन में जाना है, परंतु अज्ञानी इससे भयभीत होते हैं। मृत्यु के उपरांत आत्मा मौन यात्रा पर निकलती है। यदि जीवित रहते उसने समय समय पर मौन धारण कर आत्मा और लोकन किया होता है तो मृत्यु परांत गर्भधारण तक की उसकी यात्रा मौन व शांति से पूरी होती है, अन्यथा आत्मा को घोर यातना का अनुभव होता है। आत्मा जब गर्भ में लगभग 3 माह के भ्रूण में प्रवेश करती है तो उसे 6 माह मौन में पूरे करने होते हैं और पिछले जन्म का मौन अभ्यास उसके काम आता है। इस दौरान उसके मन में पिछले जन्म की बातें घूमती रहती हैं। गर्भस्थ शिशु और उसकी माता 6 माह शरीर से जुड़ी रहकर मौन वार्ता करते रहते हैं। दोनों को एक दूसरे की हलचल, संकल्प व भावनाओं का आभास होता रहता है। नवजात शिशु अपनी बात रोककर, मुस्कुराकर या मौन में रहकर अभिव्यक्त करता है, परंतु माता को सब समझ में आ जाता है। पालने में लेटा शिशु जब रोता है तो माँ काम छोड़कर आती है और कोई गीत या लोरी गुनगुनाकर उसे दुलारती है। शिशु को लोरी का अर्थ नहीं पता होता, उसे तो माँ की वात्सल्य भावना चुप कराती है। रात्रि विश्राम करती माता की मौन उपस्थिति शिशु को वैसे ही बेफिक्र बनाती है जैसे कि शिव की याद एक पुरुषार्थी को बेफिक्र बादशाह बनाती है। एक तरफ हम देखते हैं यहाँ पर कि संगीत शोर को मौन में और मौन को शांति में बदल देने की शक्ति है। मारीना दिया ब्रिज अंग्रेजी में फ्रांसीसी फिल्मों की प्रख्यात पार्श्व गायिका थी। वह एक बार वह अपना जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने पेरिस गई तो पेरिस में उसने देखा एक बड़े हॉल में मंच पर उसका स्वागत किया गया और संक्षिप्त भूमिका के बाद मारीलीना ने गाना शुरू किया। तभी हॉल के सामने की लाइन में बैठी एक महिला की गोद की बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। श्रोताओं व आयोजकों की बड़ी झुंझलाहट हुई और स्वयं मारीलीना ने भी गाना रोक दिया। बच्चे की मां ने उसे चुप कराने का असफल प्रयास किया और फिर शर्मिंदगी के साथ उठकर हॉल के बाहर जाने लगी। तभी माइक पर मारीलीना की मधुर आवाज गूंजी, बहन बाहर मत जाइए, बच्चे को रोने दीजिए। वह महिला वापस आकर बैठ गई। बच्चे के शोर में मारीलीना ने एक भावपूर्ण मीठी लोरी गाई जिसे सुनकर बच्चा चुप हो गया और जल्दी ही सो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि गहन मौन छाते ही मारीलीना ने फिर तय गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो संगीत में वह शक्ति है जो शोर को मौन में और मौन को शांति में बदल दे। यदि आपके मन में किसी घटना से उथल पुथल मची हो तो आप एकांत में संगीत सुनें। मन मौन होकर शांति में टिक जाएगा। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर जो ज्ञानमय गीत बजाए जाते हैं वह मन को मौन में और फिर शांति में लाकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराते हैं। इससे फिर सुख व शांति के साधन

手机啊，你已经啊阿三不晓得。यदि एक बार मन को मौन की देव पड़ गई तो जीवन में अलौकिकता व सहजता छा जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से आपसे आकर मिलते हैं और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो आज हम मौन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे परम धाम जो है आत्माओं व परमात्मा का मूल निवास स्थान है, जहाँ अखंड मौन का वातावरण होता है। वहाँ आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा शिव का साथ मिलता है, जिससे आत्माओं की जन्म पुनर्जन्म से आई थकान दूर होती है। जिस प्रकार एक सर्जन शरीर को अचेत करके ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार परम धाम में शिव का सानिध्य ही उपचार है। परंतु इससे वो सतयोगी प्रारब्ध नहीं बनती जो संगम युग पर साकार में ईश्वरीय सानिध्य से बनती है। साकार में जब पुरुषार्थी आत्मिक स्थिति में मौन धारण कर शिव से योग युक्त होता है, तो वह निरोगी व पावन होता है। महाविनाश के बाद प्रकृति व बचे हुए जीव जंतु मौन व शांत हो जाते हैं, क्योंकि मौन उपचारात्मक होता है। गंभीर बीमारी के बाद मरीज जितना मौन व शांति में रहता है, उतना ही शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले पाता है। यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि क्षमा प्रीति से हृदय में मौन व शांति का वास होता है। मौन और शांति में काफी समानता है, परंतु दोनों में अलग अलग। मौन में रहते हुए व्यक्ति अंदर से अशांत हो सकता है, और अशांत वातावरण में रहते हुए भी व्यक्ति शांति के अनुभव में रह सकता है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति है मौन। मौन में रहते हुए शांति का अनुभव करना, इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अशांत वातावरण में रहते हुए भी मौन व शांति दोनों अखंडित रख सकता है। आज मनुष्यों को छोटी छोटी बातों पर चिखना चिल्लाना और अशांति फैलाना घर घर में देखने में आ रहा है। जो बच्चे ऐसे माहौल में पले बड़े हुए हों और ऐसे उपद्रवी संस्कार से ग्रसित हों, वह अपने जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं? हाँ, ऐसे बच्चे या बालिक जब ब्रह्मा कुमारियों के संपर्क में आते हैं, तो उनके लिए अशांति के जो जन्मजात संस्कार को छोड़ना आसान हो जाता है। यदि शांति चाहिए तो मतभेद, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, नाराजगी आदि के संकल्पों से मौन अर्थात दूर रहना होना पड़ेगा, और क्षमा प्रीति को विकसित करना होगा।

हृदय से क्षमावृत्ति का वास है। हाँ, जिस हृदय में जो होता है क्षमावृत्ति का वास है, उसमें मौन व शांति का वास सहजता से होगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। हाँ, नमस्कार, ओम शांति।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कुपोषण को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकताहेत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ब्रेक नंतर

0: नमस्कार, आप नहीं कटाई रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल

निकली थी मैंने कलम बगिया से खून, निकली थी मैंने कलम बगिया से खून, बातों बातों में तेरी

लता जी जो कहते हैं कि तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती है, तुम्हें प्यार करती है, ये सब मैं समझती हूँ, उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज दी है, इन उनको उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उनके कर्म है।

इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

perdón.

0: बसंत की पाया खोली।
1: किसने?
0: मैंने।
1: नहीं तो?

तितली मेरे घर में आजा, मेरे घर से उड़ कर नहा जा।

अरे दिल है परिचय मेरी अली दे दे दिल तू मुझे अरे दिल है परिचय ला

0: अच्छा
1: गुड मॉर्निंग
0: छोड़ हाथ
1: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
0: अरे 1 2 3 4 वाला हाथ मैं कैसे 1 4
1: अरे 1 2 3 4 1 2 3 4
0: तुम भी थप्पड़ रखे
1: आवर के गावर
0: डाबर गावर अरे की नाम बड़ा है अंग्रेजी बोलने वाला
2: कॉफी दस फट वाटर हैंड राइट हैंड बंदूक बैंड तीन फटे